मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं हर रोज गुनाह करता हूं, तू हर रोज माफ कर देता है। मैं आदत से मजबूर हूं, तू रहमत से मशहूर है।

इंग्लैंड का पादरी जोसेफ करुणा के आध्यात्मिक शक्ति में अटूट विश्वास रखता था। दीन हीन और बेसहारा लोगों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। एक बार की बात है, एक दिन एक बहुत ही कुख्यात अपराधी पुलिस की निगाहों से बचता हुआ पादरी के घर पहुंच गया। पादरी ने उसे शरण दी, भोजन कराया और रात को आराम करने की भी स्वीकृति दी। अपराधी ने देखा कि पादरी की मेज पर चांदी के दो दीपदान रखे हुए हैं। पादरी सो गया तो उसने दीपदान उठाकर जेब में रखे और वहां से भाग निकला। वो कुछ ही दूर जा पाया था कि पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसने पुलिस को बता दिया कि वो दीपदान उसने पादरी के घर से चुराए हैं। पुलिस उसे पादरी के पास लेकर आई। पादरी को दीपदानों की चोरी का पता लग गया था। उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इसे छोड़ दीजिए, ये दीपदान तो मैंने अपनी इच्छा से इसको दिए थे। पादरी के शब्द सुनकर चोर पानी पानी हो गया। उसने उसी समय प्रभु में अपना दिल लगाने का निश्चय किया और भविष्य में अपराध न करने का संकल्प लिया। अब वो पादरी जोसेफ के शिष्य के रूप में दीन हीनों की सेवा का कार्य करने लगा।

कन्नौज राज की एक विधवा ब्राह्मणी बहुत ही गरीबी के बावजूद अपने 5 पुत्रों को गुरुकुल में अच्छी शिक्षा दिला रही थी। वो रोज चरखे पर सूत कातकर अपना और पुत्रों का जीवन यापन करती थी। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उसने। कन्नौज के एक धार्मिक सेठ ने ब्राह्मणी के गरीबी में दिन गुजारने की बात सुनी तो वो उसके पास गए। बड़ी ही विनम्रता से उन्होंने कहा, क्या मैं आपकी कुछ आर्थिक मदद करके अपने को धन्य कर सकता हूं? ब्राह्मणी ने कहा, सेठ जी, मैं गरीब बिल्कुल नहीं हूं। मेरे पास तो 5 अमूल्य रत्न हैं। आपकी सहानुभूति के प्रति मैं कृतज्ञ हूं। सेठ जी ने कहा, मुझे अपने अमूल्य रत्न तो दिखाइए। कुछ देर बाद उसके 5 बेटे गुरुजी के आश्रम से वापस लौटे। आते ही उन्होंने मां के चरणों को स्पर्श किया। उसके बाद सामने बैठे हुए सेठ जी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ब्राह्मणी ने संस्कृत में कहा, पश्यमय पंच रत्नानी, और सेठ उन 5 रत्नों को देखकर कह उठे, वास्तव में माताजी, आपके इन अनूठे मातृभक्त संस्कारी 5 रत्नों के होते हुए आपको दरिद्र समझना मेरी भारी भूल थी। जिसकी संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और योग्य हो, उससे बड़ा धनवान कौन होगा।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, जो तुम चल सको तो चलो। इधर उधर हैं कई मंजिलें, इधर उधर हैं कई मंजिलें, जो तुम चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे, जो तुम ढल सको हाँ तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है जिंदगी, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहां कोई किसी को नहीं देता रास्ता, जो मुझे गिरा कर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो।

दोस्तों प्रार्थना करो न केवल इसलिए कि आपको कुछ जरूरत है, पर इसलिए कि आप शुक्रगुजार हैं जो कुछ भी आपके पास है। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूं।

एक बार कुछ शिक्षक आचार्य महाप्रज्ञ के सत्संग में पहुंचे। महाविद्यालय के एक प्राचार्य ने कहा, आचार्य जी, अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी अवमूल्यन होते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज तो बिजनेस बनते जा रहे हैं, आपकी नजर में इस पतन के क्या कारण हो सकते हैं? आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा, ज्ञान का तो सार है आचार। दूध में मक्खन ना निकले तो दूध को सारोहीन मानना पड़ेगा। अगर दूध से मक्खन ना निकले तो दूध बेकार है। नैतिकता पर ध्यान नहीं देने के कारण ही आज शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट दिखाई दे रही है। जब से शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना और नौकरी करने के लिए सीमित हो गया है, तब से यही गड़बड़ी शुरू हो गई। गुरुदेव आचार्य तुलसी ने भी कहा है, शिक्षा केंद्रों से ऐसे छात्र निकलने चाहिए जिनका आदर्श जीवन हो और वो जिस क्षेत्र में जाएं वहां नैतिकता का आदर्श स्थापित करें। लेकिन आज तो डिग्री पाने के लिए और फिर उसके बाद धन कमाने की होड़ चल पड़ी है। कोरे बौद्धिक विकास से न तो राष्ट्र का भला होगा न ही समाज का। बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास भी जरूरी है। जब तक नैतिक मूल्य सदाचार की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उसे उद्देश्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक देश और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। आप कुछ भी कर लें।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ।

भक्तिमय दिव्य दर्शन में आज इतना ही। कल हम फिर नए भजनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready. Dil ready. मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर आपकी आरजे तनुषा। लेकर आई हूं एक और नया सीजन आप ही के बातें इधर की उधर की का। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत जैसे कि हम जानते हैं हमेशा गणपति से होती है, गजानना से होती है। तो आज की ये शुरुआत भी हम शुरू करेंगे वहां से जहां पे जयपुर का मोती और गणपति बप्पा का दरबार है। गणपति बप्पा मोरया, एक सवाल से शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स एक सवाल से ही तो शुरू करते हैं हम। चलिए आज का ये नया सीजन भी सवाल से शुरू करते हैं। अगर जयपुर की सड़कों से अचानक सारी भीड़ हटा दी जाए, हॉर्न्स बंद हो जाएं और शहर बिल्कुल शांत हो जाए, तो आप जयपुर में सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे? हवा महल, जल महल, आमेर फोर्ट या फिर मोती डूंगरी के गणेश जी के दरबार में ढोक देने? बताइए, सोच के बताइए। दोस्तों आज की बातें इधर की उधर की में हम बात करते हैं जयपुर की एक ऐसी जगह की जहां आस्था भी है, इतिहास भी है और एक छोटी सी पहाड़ी के साथ जुड़ी हुई एक बहुत खूबसूरत कहानी है। नाम है मोती डूंगरी। वैसे नाम सुनते ही एक सवाल तो बनता है, मोती डूंगरी में मोती कहाँ है? किसी ने कभी देखा है? अगर देखा हो तो मुझे भी बताना, मैंने तो नहीं देखा इतने सालों में। दरअसल मोती का मतलब है पर्ल, यानी मोती, और डूंगरी का मतलब है छोटी सी पहाड़ी, यानी मोती डूंगरी का मतलब है मोती जैसी पहाड़ी। और इस पहाड़ी का आकार भी कुछ ऐसा बताया जाता है जैसे कोई मोती की बूंद हो। जयपुर के बीचों बीच खड़ी हुई ये छोटी सी पहाड़ी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। लेकिन मोती डोंगरी की कहानी सिर्फ पहाड़ी की कहानी नहीं है। यहाँ श्री गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है मोती डोंगरी। इस मंदिर को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प लोक कहानी है, चलिए सुनते हैं। कहा जाता है कि मेवाड़ के राजा एक बहुत बड़ी गणेश जी की प्रतिमा लेकर अपने महल की तरफ जा रहे थे। अब जरा तस्वीर सोच के देखिए, एक बैलगाड़ी, उसमें गणेश जी की प्रतिमा और साथ में एक पूरा सफर। लेकिन रास्ते में एक जगह ऐसी आती है जहां बैलगाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। राजा के दरबारियों ने भी बहुत कोशिश की, चलो भाई चलो आगे तो बढ़ो। बैलगाड़ी ने कहा होगा, नहीं जी, हम तो आज यहीं रुकेंगे। कहा जाता है कि वही जगह मोती डूंगरी की पहाड़ी के पास थी और इसी को गणेश जी के यहाँ स्थापित होने से जोड़ा जाता है। यानी कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी मंजिल खुद चुनेंगे, लेकिन कहानी कुछ और ही होती है। मंजिल कभी कभी हमें खुद रोक लेती है और ये बात जिंदगी पे कितनी फिट बैठती है ये जानते ही होंगे आप। कितनी बार हम अपने रास्ते खुद चुनने के लिए जोर लगाते हैं, लगाते ही जाते हैं, खूब कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता आगे ही नहीं बढ़ता और बाद में पता चलता है कि शायद हमें वहीं रुकना था, वही मंजिल थी। मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी सेठ जयराम पालीवाल को दी गई और महंत शिव नरेन जी की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण लगभग 4 महीने में पूरा हुआ और आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर की उन जगहों में से है जहां आस्था के साथ लोगों की अपनी अपनी कहानियां जुड़ी हैं। मेरी भी एक है, बट वो अभी नहीं बताऊंगी, कभी और किसी और बातें इधर की उधर की में। कोई नई गाड़ी जब लेकर आता है, कोई शादी के बाद जब पहली बार दर्शन करने जाता है,
कोई अपनी परेशानियां लेकर जाता है और कोई कोई बस इतना सा कहने जाता है कि बप्पा सब ठीक करना, मेरे सब विघ्नों को हर लेना। मंदिर में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा सिंदूर के रंग में है और उनके सामने बड़े आकार के मूषक स्थापित हैं। गणेश जी को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और मंगल देवता माना जाता है। एक और दिलचस्प बात बताऊं, आप नहीं भी कहेंगे तो भी बता दूंगी। बुधवार को गणेश जी का दिन माना जाता है, बुद्धि के देवता बुधवार को। इसी वजह से मोती डोंगरी मंदिर में बुधवार को विशेष भीड़ और मेला देखा जाता है। तो अगर आप जयपुर से हैं तो एक और टेस्ट आपके लिए, एक छोटा सा और सवाल, आपने मोती डोंगरी गणेश जी के दर्शन कब किए थे? और उससे भी जरूरी सवाल, बप्पा के सामने पहुंचकर आप पहली बात क्या कहते हैं? बप्पा मेरा ये काम कर दो ना, बप्पा घर में सब ठीक रखना, बप्पा ये नौकरी लगवा दो ना, या फिर बप्पा बस आप संभाल लेना, बाकी मैं देख लूंगी। मोती डोंगरी की खूबसूरती शायद इसी में है, एक छोटी सी पहाड़ी, उस पर एक मंदिर और उस मंदिर के सामने खड़े हजारों लोग एक ही आस्था के साथ। सबकी कहानी अलग है, सबकी दुआ अलग है, लेकिन आस्था आस्था एक है दोस्तों। और शायद इसीलिए कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, वो दिल से आत्मा से महसूस की जाती हैं। जयपुर के बीचों बीच खड़ी हुई मोती डोंगरी की ये कहानी हमें एक छोटी सी बात याद दिलाती है, कभी कभी जिंदगी में रुक जाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हो सकता है कि जिस जगह हम रुक रहे हैं वही हमारी असली मंजिल हो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दोस्तों मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन एसएन रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक मुस्कुराते रहिए, कहानियां सुनते रहिए, पूरा शो सुनिए एंड तक। और हाँ, अगर मोती डोंगरी जाएं तो बप्पा को मेरी तरफ से सलाम, हेलो और बहुत सारा प्यार जरूर दीजिएगा। आपकी आरजे तनुषा का।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार 10 डॉक्टरों ने मिलकर एक बड़े हाथी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हो गया, उसके बाद डॉक्टर ने छोटे डॉक्टर से पूछा, देख लियो भैया कोई औजार वजार ना पेट में छूट गया हो। उसने कहा कि सर औजार वजार तो सारे मिल रहे हैं, एक डॉक्टर कम है।

0: और अब बातें इधर की उधर की में वक्त आ गया है एक खास कहानी का। हर कहानी अपने आप में बहुत खास होती है, लेकिन लेकिन दोस्तों कुछ कहानियां इसलिए भी और स्पेशल बन जाती हैं क्योंकि उन्हें कहने वाला दिल से उनसे जुड़ा होता है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जो लेकर आए हैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, एक किस्सा, एक एहसास, एक याद, एक कहानी, बिल्कुल अपनी आवाज में। तो चलिए खामोशी से सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।
1: नमस्ते, मैं हूँ रविशंकर बेंगलोर से। मैं आज एक सब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, ये हम जान चुके हैं, लेकिन अच्छी तरह बात करने से सब लोगों को अच्छा लगता है, ये इसके बारे में मैं आज एक हमारे पिताजी के साथ जो हुआ वो एनेक्डोट, वो घटना को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स है, लेकिन ये बात जो जब हुआ वो तब मुझे तो, मैं तो छोटा बच्चा था, सो बच्चा नहीं तो 13 साल का लड़का था, सो मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, सो हमारे पिताजी ने हैदराबाद में जो फिश का जो मेडिसिन देता है ना उसको देने के लिए लेके जाते थे। सो वहाँ बहुत भीड़ लगता था, सो इट वॉज ए क्राउडेड प्लेस, सो लॉट ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री यूज टू कम ओवर देयर एंड इट्स वॉज गिवन ओनली ऑन वन डे। ओके, सो हमारे पिताजी ने अच्छी तरह वो टेक्निक यूज़ करके उनके एक लेटर लिखा उनके लिए। सो उस लेटर के वास्ते हमारे पिताजी को पास मिला, वो पास मिलने के बाद हमारा एंट्री बहुत अच्छा आराम से इजी हो गया। हम सुबह 7 बजे वहाँ गए थे और 7 बजे 15 मिनट पे सो हमको अंदर बुला दिया। सो बहुत सारे लोग ऐसे ट्राई करते थे लेकिन उनको पास नहीं मिलता था। सो हमारा काम तो सिर्फ 15 मिनट में 7:30 बजे तक पूरा हो गया। और पूरा दिन हम हैदराबाद घूम के वापस आ गए। मैंने बाद में पिताजी से पूछा, इतने लोग थे वहाँ पर लेकिन हमको कैसे अंदर छोड़ दिया, 7 बजे हम वहाँ थे और 7:15 पे हमको अंदर छोड़ दिया, कैसे हुआ करके बोला। देन हमारे पिताजी ने बोला, मैंने ऐसे लेटर लिखा उनको, इसकी वजह से हुआ। ऐसे क्या लिखा आपने इतनी आसानी से आपको ये पास मिला करके? मैंने सिर्फ एक दो तीन लाइन लिखा, मैंने सुना है आपका वो फिश का मेडिसिन बहुत लोगों को अच्छी तरह वो रिजल्ट्स दे रहे हैं, अच्छे काम आप कर रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत अच्छा इंसान है करके हमें पता चल रहा है। सो मेरा बेटा भी ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहा है, सो आपकी वजह से उसको वो तकलीफ़ निकल गया, तो मैं आपका बहुत आभारी रहता हूँ करके ये लेटर लिखा था। सो इसकी वजह से उसको पास भेजा गया था। उस वक्त पोस्टल डिलीवरी होता था, सो स्पीड पोस्ट था, स्पीड पोस्ट में वो आया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, सो अच्छी तरह हम लोगों को यू नो व्हाट दे आर, इफ वी इट्स नॉट प्रेजिंग, इट्स जस्ट मेंशनिंग, जस्ट उसको उनको बताने से दूसरों का मन बहुत अच्छा लगता है उनको। वो हर दिन पूरा दिन उसको खुश होता है और खुशियों से रिलेशनशिप भी बढ़ता है। सो ऐसे अच्छे अच्छे बात करने से सोसाइटी में हम बहुत लोगों को अच्छी तरह देखने से, अच्छी तरह बात करने से हम अच्छा माहौल बना सकते हैं, ये कहना चाहता हूँ मैं। सो थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी तानुषा जी।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: संता ने एक बार ढाबा खोला। ग्राहक आया, चाय मांगी, संता ने चाय दे दी। अब ग्राहक ने संता को बुलाया, इधर आओ, ये देखो चाय में तुम्हारे मक्खी पड़ी हुई है। अब संता बोला, देखिए मैं एक ही काम कर सकता हूँ, या तो ढाबा चला लूँ या इसे स्विमिंग सिखा दूँ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपकी तनुषा, आपकी तरानों की हमसफर। हम बात कर रहे हैं आज गणपति की और एक और गणपति के स्वरूप की बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स हम सिद्धि विनायक को कैसे भूल सकते हैं। आप सोचिए, अगर भगवान विष्णु खुद किसी मुश्किल में फंस जाएं तो आपको क्या लगता है वो किसकी मदद लेंगे। हम सब सोच रहे होंगे कि विष्णु जी को किसकी मदद चाहिए होगी। बात तो सही है, विष्णु जी तो विष्णु जी हैं, उनको किसकी मदद। लेकिन आज की कहानी में यही तो ट्विस्ट है। एक वक्त ऐसा आया जब भगवान विष्णु को खुद गणपति जी की शरण में जाना पड़ा और इसी कहानी से जुड़ा है महाराष्ट्र के सिद्धाटेक का प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर, जो अष्ट विनायक के 8 पवित्र गणेश मंदिरों में से दूसरा माना जाता है। चलिए आज की एक और कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक युद्ध है, एक राक्षस है और भगवान विष्णु हैं, और इन सब के बीच हैं हमारे गणपति बप्पा मोरया। कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। कहा जाता है भगवान ब्रह्मा सृष्टि को रचने की तपस्या कर रहे थे, ओम का जाप कर रहे थे। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि वो सृष्टि की रचना कर सकें। लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए और उनसे जुड़े हुए प्रसंग के अनुसार उनके कानों से 2 भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटब। दोनों ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। अब नेचुरली जब परेशानी बड़ी हो तो देवता किसके पास जाएंगे, विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने दोनों से युद्ध किया, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हजारों हजार साल तक वो युद्ध चला। अब सोच के देखिए, हमसे तो 10 मिनट ट्रैफिक में खड़े रहना मुश्किल होता है और यहाँ युद्ध चल रहा है हजारों साल से, लेकिन विष्णु जी उन्हें हरा नहीं पाए। और तब उन्हें समझ आया कि सिर्फ शक्ति काफी नहीं है। इस कहानी के अनुसार विष्णु जी भगवान शिव के पास गए और अपनी सारी परेशानी बताई। शिव जी ने कहा, तुमने गणेश जी का स्मरण नहीं किया। किसी भी शुभ काम से पहले विघ्नहर्ता का स्मरण बहुत जरूरी है। और बस विष्णु जी ने गणपति जी की उपासना करने का फैसला कर लिया। उन्होंने सिद्धाटेक को अपनी तपस्या के लिए चुना, भगवान गणेश का मंत्र जप किया, ओम श्री गणेशाय नमः। तपस्या हुई, भक्ति हुई और गणपति बप्पा प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु जी को सिद्धि और विजय का आशीर्वाद दिया। उसके बाद विष्णु जी वापस युद्ध में आए और मधु और कैटब का अंत कर दिया। और क्योंकि विष्णु जी को इसी स्थान पर सिद्धियां प्राप्त हुई, इस जगह का नाम पड़ गया सिद्धाटेक और गणपति जी के स्वरूप को कहा गया सिद्धि विनायक। अब जरा इस कहानी को सिर्फ कहानी की तरह नहीं, जिंदगी की तरह सोचिए, जो आप सब जानते हैं कि मेरा फेवरेट काम है, सभी कहानियों को किस तरह अंत में जिंदगी से जोड़ देना, ये तो मेरी USP है ना। चलिए, हम अक्सर क्या करते हैं, मुश्किल आती है मैं कर लूंगा, फिर थोड़ी और मुश्किल आती है मैं अकेला कर लूंगा, और फिर जब मुश्किल बड़ी हो जाती है किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सिद्धि विनायक की एक कहानी एक बहुत खूबसूरत बात याद दिलाती है, कभी कभी जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सही दिशा और सही आरंभ जरूरी है। और शायद इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। काम शुरू करने से पहले उनका नाम लेना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये एक याद है कि हर बड़े काम की शुरुआत विनम्रता से करो।
और सिद्धा टेक का सिद्धि विनायक एक और वजह से खास है। यहाँ गणेश जी की मूर्ति की सूंड दाहिनी तरफ है, जो अष्ट विनायक के अन्य मंदिरों से इसे अलग बनाती है। परंपरा में इसे बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। और यहाँ की एक और खास बात है, मंदिर की प्रदक्षिणा सिर्फ छोटे से मंदिर का चक्कर लगाकर नहीं, पहाड़ी की प्रदक्षिणा करके की जाती है। यानी बप्पा के दर्शन के साथ थोड़ी मेहनत भी लगती है। बप्पा कह रहे होंगे, बेटा सिर्फ मन से नहीं, थोड़ा पैरों से, थोड़ा शरीर से भी भक्ति दिखाओ, थोड़ी मेहनत करो। और इस मंदिर से जुड़ी एक और रोचक कहानी है। कहा जाता है कि समय के साथ भगवान विष्णु द्वारा बनाया गया प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया। बाद में एक चरवाहे को यहाँ गणेश जी के दर्शन हुए और उसने पूजा शुरू कर दी। समय के साथ यहाँ फिर से मंदिर की परंपरा बनी और पेशवा काल में इसका विकास हुआ। यानी मंदिर बदलता रहा, समय बदलता रहा, लेकिन आस्था बनी रही। तो दोस्तों, आज की कहानी से एक सवाल आपके लिए। ऑफ कोर्स, आपकी जिंदगी में वो कौन सा काम है जो आप बहुत कोशिश के बाद भी पूरा नहीं कर पा रहे? क्या पता आपको और ज्यादा जोर लगाने की नहीं, बस एक बार रुक कर सही दिशा में देखने की जरूरत है, सही शुरुआत करने की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी जीत हमारी ताकत से नहीं, हमारी विनम्रता से शुरू होती है। और शायद इसीलिए सिद्धि विनायक की कहानी हमें बहुत प्यार से कहती है, उस शुरुआत गणपति के नाम से करो। गणपति बप्पा मोरिया। मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे थे आज की ये प्यारी सी बातें इधर की उधर की कहानी। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ हम सिर्फ बातें सुनते नहीं, उनमें छुपी हुई बातों को गुनते हैं, महसूस करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हमारे जीवन में जीवंत हो जाएं। तो मिलते हैं फिर एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक बप्पा को याद करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी नई शुरुआत को थोड़ा सा शुभ बनाइए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक व्यक्ति बैंक में लोन लेने के लिए गया। मैनेजर ने लोन सैंक्शन कर दिया, चेक बनाया और उसको देने लगा। अब वो व्यक्ति जो था वो शुद्ध हिंदी में बोला, ये ऋण मैं आपका जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगा। बैंक मैनेजर ने तुरंत वापस चेक दराज में डाल दिया। सीख क्या मिलती है, ज्यादा शुद्ध हिंदी में बातें ना करा करें।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हट के लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपनी खुद की प्रतिभा, अपने खुद के चरित्र और अपने खुद के बारे में। इस बात को आराम से समझिए दोस्तों, आप ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएशन, रचना, कृति या कुछ भी कह लीजिए, प्रकृति में उपस्थित एक ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई कंपटीशन नहीं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, वो अच्छा है, वो बुरा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा कुछ सामान ले जाएगा, मेरा हक छीन लेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। प्रकृति के नियम है, जो आपके लिए आया है वो कोई दूसरा ले ही नहीं जा सकता। होड़ में मत लगिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने आप में धैर्यवान रहते हुए पूरी तरह से सुनिश्चित रखिए, करिए कि आप वही हैं जो ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा है और सब कुछ आपके लिए तय है। अपना काम करते चलिए। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते चलिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते चलिए। यूं तो गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि काम करता चल, फल की इच्छा मत कर, लेकिन दोस्तों हम इंसान हैं, बिना फल की इच्छा किए हम आगे

बढ़ ही नहीं पाते। तो जितना मैंने समझा उसके हिसाब से मैं सुझाव दे देता हूं। आपको जमे तो रखिए, नहीं जमे तो जाने दीजिए। वो ये कि काम करते तो जरूर चलिए, फल भी अपने दिमाग में रखिए, लेकिन दूसरों के फल को देखकर तड़पिए मत। गौर कीजिए, हम इंसानों की यही तकलीफ है। किसी के पास कोई बेहतर गाड़ी, कोई बेहतर मकान, कोई बेहतर सुविधाएं, कोई बेहतर कपड़े और न जाने क्या क्या। हम अपने आप को बस उनसे कंपेयर ही करते चलते जाते हैं। जो हमें मिला, जो हमारे पास है, जो हमें मिलने वाला है, जो ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे लिए तय कर रखा है, हम उसके बारे में जरा सा भी न तो शुक्रिया कहते और ना ही खुश होते हैं। गौर कीजिए ना आप, क्या सचमुच आपके पास जो मोबाइल है उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? क्या सचमुच आपके पास जो बाइक है, जो कार है, जो मकान है, जो परिवार है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? जब आपने उनके लिए शुक्रिया अदा किया ही नहीं तो और कैसे मांगेंगे आप? ये तो कुछ ऐसा है ना कि आपको चाय दी गई पीने के लिए, मजे लेने के लिए, रिफ्रेश हो जाने के लिए, और आप कहते हैं नहीं साहब मुझे तो कॉफी चाहिए। अरे जो आया सामने वो ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है, प्रकृति ने, कुदरत ने आपके पास भेजा है, पहले उसे स्वीकार कर उसका शुक्रिया अदा तो कहिए। मेरा बहुत तहे दिल से मानना है जिंदगी में और बहुत सारा कुछ पाने के लिए आसान सा एक तरीका है शुक्रिया कहते चलना। जो भी है हमारे पास शुक्रिया कहते चलिए। इससे कुदरत को एक संदेश मिलता है कि इस इंसान को और चाहिए, तभी तो जो कुछ भी मैंने इसे दिया वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, तो इसे और दो। जिस भी वक्त आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो कुदरत को यह संदेश मिलता है कि ठीक है, इस इंसान को और नहीं चाहिए, ये चीज, ये सुविधा या ये समृद्धि मैं किसी और को दे देती हूं। इसलिए जो कुछ भी आए शुक्रिया कहिए और की उम्मीद में खुश रहिए दोस्तों।

एक बार कुछ जिज्ञासुओं ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि मनुष्य डेवलपमेंट क्यों चाहता है, विकास क्यों चाहता है, उसे पाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। दरअसल विकास यानी कि डेवलपमेंट नेचर यानी कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, होके रहेगा आप करें या ना करें। सृष्टि में सब कुछ गतिमान है, चलता ही रहता है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है और विकास करना, आगे बढ़ना उसका मौलिक लक्षण है। मनुष्य को यह पता है कि जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा विकास पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। विकास का पथ चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, इसके पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में सुख भोग की चाहत ही होती है। क्योंकि मनुष्य की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए सिर्फ वो अपने लिए सुख समेटना उसका मौलिक गुण धर्म नहीं होता। उस सामाजिक जीवन को भी वो सुख पहुंचाना चाहता है जिसे वो भोग रहा है। विवेकशील प्राणी होने के कारण वो अच्छे बुरे के बारे में सही निर्णय ले सकता है। जब वो सही निर्णय लेने लगता है तब आध्यात्मिक महत्व को भी समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेने के लिए उसे सुबह शाम साधना करनी पड़ती है। इसी साधना की बदौलत मनुष्यों में व्यक्तिगत मानसिक विकास और विश्व बंधुत्व की भावना कायम होगी। यहां एक और बात बहुत जरूरी है दोस्तों, आध्यात्मिकता के साथ मनुष्य को भौतिक और मानसिक जगत से भी संतुलन बनाकर रखना होगा। मनुष्य में वृहत्त को पाने की आकांक्षा है, इसे बड़ा देखने की इच्छा भी कह सकते हैं, इसे बड़ा बनने की इच्छा भी कह सकते हैं। अगर उसमें यह आकांक्षा न होती तो ब्रह्म समुद्र में रहकर भी वो पर ब्रह्म को पहचानने का प्रयास न करता और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। विराट को पाने का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक कार का मालिक 5 कारों का मालिक बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, मगर माने या न माने सीमित संपत्ति को सभी मनुष्यों को संयुक्त संपत्ति के रूप में ग्रहण करना होगा। सीमित वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे दौड़ दौड़ कर धक्के खा खा कर मनुष्य ने एक दिन ये सच तो खोज ही निकाला था कि सच में उसका मन ऐसा कुछ पाना चाहता है जो जीवन भर के लिए बस मिल जाए।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूँ। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है, जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं हरमन हेस से, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये मानव सभ्यता की नाकामी ही तो है कि ना तो मन की आग शांत होती है और ना ही युद्ध की, रह रह कर धधक उठती है और इंसान अपने ज्ञान की तमाम महान पवित्र पोथियों को किनारे रखकर एक दूसरे के खून के प्यासे

थाम चुके थे। कुछ युवा लेखकों की तो जंगी मोर्चे पर जान भी जा चुकी थी। सभी पर युद्ध में जाकर दो दो हाथ करने का गजब का दबाव था। इस लेखक ने भी अपना नाम इंपीरियल सेना में बहाली के लिए लिखवा दिया, पर उस नाजुक मन रचनाकार को युद्ध लड़ने के अयोग्य पाया गया। उन्हें युद्ध बंदियों की देखभाल से जुड़ी सेवा में लगा दिया गया। ऐसा लगता था कि दुनिया अब लड़कर ही खत्म होगी। कवियों के बीच भी बहुत नफरत पसर गई थी। उन्हीं दिनों इस नफरत के खिलाफ इस लेखक ने एक लेख लिखा। उन्होंने सबको समझाया कि राष्ट्रवादी पागलपन और नफरत की खाई में ऐसे ना गिरें कि फिर निकलना ही मुमकिन ना हो। नफरत से बड़ा है प्यार, क्रोध से बड़ी है समझ और युद्ध से महान है शांति। दुर्भाग्य की बात है, कोई नहीं समझ पाया। लेखक बिरादरी दुश्मन हो गई और मीडिया शब्द बाण बरसाने लगा। बहुत धमकियां मिली। लेखक का घर से निकलना दूभर हो गया। उन्होंने अपने भारत प्रेमी मित्र लेखक रोमा रोला को पत्र लिखा, दोस्त सियासी मामलों में प्यार आजमाने की मेरी कोशिशें नाकाम हो गईं। निर्णायक पल था, दिल बिखर गया। अवसाद ने अपने भंवर में लपेट लिया। वैसे भी मुसीबतें खुदरा नहीं, थोक में आती हैं। पहाड़ की तरह साथ खड़े पिता जिंदगी की जंग हार गए। सगा पुत्र गंभीर बीमारियों में पड़ गया और पत्नी की मानसिक दशा अपनी दिशा भटक गई। फिर तो कुछ भी न बचा, कौन संभालता। मन इतना डगमगाया कि दिमाग ने भी जवाब दे दिया और लेखक का शरीर एक मनोरोगी उपचार केंद्र में पहुंच गया। एक अच्छे लेखक के बारे में लगभग घोषणा ही हो गई कि उसे युद्ध की आंधी उड़ा ले गई है। पढ़ना लिखना तो छूट ही गया, पर सौभाग्य की बात थी कि उन्हें मनोचिकित्सकों ने बहुत सहारा दिया। जो अच्छी चीजें उनके अंदर सूख गई थी उन्हें फिर से हरा भरा करने की कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगी। किसी भी तकलीफ या किसी एक हार पर दुनिया खत्म नहीं होती। सुख दुख भोग योग संयम त्याग उपवास की ओर मन बहने लगा। दुख के बादल भी ओझल होने लगे। धर्म चिंतन ने तमाम कष्टों और असुरक्षा बोध की गहरी गुफा से बाहर ला दिया। सनातन धर्म के साथ साथ गौतम बुद्ध बार बार याद आने लगे। लेखक महोदय कुछ वर्षों पहले जर्मनी से श्रीलंका तो आए थे, पर भारत आने से पहले बीमार पड़ गए थे और स्वदेश लौटना पड़ा था। पर भारत के पास से गुजरते हुए इस मोक्ष भूमि के प्रति प्रेम का बीज उनके मन में पहले से पड़ा हुआ था, वो अब अंकुरित हो गया। उन्होंने भारतीय दर्शन और बुद्ध को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा। नाम था सिद्धार्थ। भोग में भी योग तलाश करने की कला के साथ ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो ज्ञान उन लेखक महोदय को मिला उसने कमाल कर दिया। साहित्य की दुनिया में जब सिद्धार्थ का आगमन हुआ तब विश्व युद्ध बीत चुका था और दुनिया विकास की नई लहर से पुलकित हो रही थी। दुनिया ने अपने एक महान लेखक हरमन हेस को भारतीयता से ओतप्रोत नई रोशनी में देखा। सिद्धार्थ लिखने के बाद हरमन न जाने कितनी वर्जनाओं और उलझनों से एक झटके में उबर गए तो फिर घर नहीं लौटे। उन्होंने पुराने जीवन के कारागार को तोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में जा बसे। दुनिया को एक से बढ़कर एक कृतियों से संपन्न कर दिया और साहित्य के सर्वश्रेष्ठ सम्मान नोबेल से नवाजे गए। अकेले अमेरिका में इस उपन्यास की 50 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। गौर कीजिए, हरमन हेस 1877 से 1962 तक ये पुस्तक अपने भारत प्रेमी मित्र रोमा रोला के नाम समर्पित की थी इन्होंने। जी वही रोमा रोला जिन्होंने कभी कहा था, यदि पृथ्वी पर कोई एक जगह है जहां जीवित मनुष्यों के सभी सपनों को शुरुआती दिनों से ही घर मिला हुआ है, जब मनुष्यों ने अस्तित्व का सपना देखना शुरू किया था, तो वो भारत है।

0: के चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। आदमी बहुत गुस्से में चिल्ला, हाँ, मेरे सर पे आके बैठ जा। सोनू बोला,
2: नहीं अंकल, मैं यही ठीक हूँ, वहां से फिसल कर तो गिरने का डर रहता है ना।
1: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा, और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ। सन 1884 की बात है। कलकत्ता में उन दिनों चैतन्य लीला नाटक की धूम मची हुई थी। बड़ी संख्या में लोग वो नाटक देखने जा रहे थे और उसकी काफी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ भक्तजन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित इस नाटक को दिखाने के लिए नाट्य गृह में ले गए। विनोदिनी दासी नामक नगर वधु ने चैतन्य लीला में सजीव अभिनय किया। स्वामी रामकृष्ण उसके अभक्तिपूर्ण अभिनय को देखकर अभिभूत हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। नाटक की समाप्ति के बाद जब विनोदिनी ने दर्शक दीर्घा में स्वामी रामकृष्ण को बैठे देखा तो वो भागी भागी उनके पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके गदगद हो गई। स्वामी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारा अभिनय बहुत प्रभावी है, जीवन उसी के अनुरूप ढालो तो कल्याण हो जाएगा। विनोदिनी दासी एक महान सिद्ध संत के आशीर्वाद स्पर्श से सुदबुद खो बैठी। उसका जीवन बदल गया। जीवन पर्यंत वो भक्ति और साधना में लगी रही।

होना। अकेला और उजाड़ सारी रात रहा मैं झील पर, जहां छाया रहता है कुहासा और धीमे धीमे रेंगती है धुंध। लगातार रोती चीखती रहती है कश्तियों और बजरों की सीटियां, मुसीबत में पड़े किसी खोए गए बच्चे की तरह रोते हुए बंदरगाह की छाती और उसकी आंखों का शिकार करते हुए।

चलिए आज बात करते हैं उन अंगूरों की जो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं? पहुंच से बाहर कोई चीज होने पर ये मुहावरा अक्सर बोला जाता है ना। लोमड़ी अंगूरों के गुच्छे को छलांग लगाकर तोड़ने की कोशिश करती है, सफल नहीं होने पर यह कहकर आगे बढ़ जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। कहानी खत्म। हम सुनते हैं, लोमड़ी पर हंसते हैं, कहानी हमेशा से सुनाई भी इसी ढंग से जाती है। पर क्या ये महज लोमड़ी की खिसियाहट या कमजोरी है? हम सब कभी न कभी अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहते हैं और अपने मन को हमें समझाना भी पड़ता है ना। अपने मन को समझाकर आगे बढ़ जाना गलत नहीं होता। अपने मन को समझा सकना छोटी बात भी नहीं होती भाई। कई दफा जो है उसे मान लेना ही आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है। फिर यह जरूरी नहीं कि अंगूर हमेशा खट्टे ही रहेंगे। असल जिंदगी में कहानी हमेशा यही खत्म नहीं हो जाती। कई बार हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं, खुद पर काम करते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। कई बार हमारा लक्ष्य गलत भी होता है, तब लाख कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती। हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम एक ही बात पर खुद को अटकाए रहते हैं। दरअसल संतुष्ट होने पर ही यह समझ में आता है कि जो हम हैं या जो हमारे पास है उसके क्या मायने हैं। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा और हो जाएगा तो कोई कमी नहीं रहेगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जो आज है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आगे उसका दुगना भी हो जाएगा ना, तो भी संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि बड़ा सोचने और उसे हासिल करने से नहीं रुकती। दिक्कत तब होती है जब हम किसी से होड़ करते हैं, दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। कई बार इसी दौड़ में हम खुद के साथ सख्ती करने लगते हैं, सामान्य जीवन जीना भूल जाते हैं। फिर कुछ पाने की चाह होना बुरा तो नहीं है, पर वह नहीं मिलने पर निराशा में डूब जाना देखिए गलत है। दूसरों से कम या ज्यादा होने का भाव मन को टिकने नहीं देता। जब कोई अभाव महसूस नहीं होता तब पूरी दुनिया अपनी लगती है। पहले हम खुद को स्वीकारते हैं और फिर धीरे धीरे दुनिया हमें स्वीकारती है। जब हम ज्यादातर टाइम उस दिशा में लगाते हैं जो हमारे मूल्यों से मेल खाती है, तो हम किसी भी उठापटक का सामना बेहतरी से कर पाते हैं। दया, करुणा, ईमानदारी, अच्छे रिश्ते, सेहत, पैसा, नाम, कुछ भी हमारे मूल्य देखिए हो सकते हैं। जितना हम अपने मूल्यों के करीब जिंदगी जीते हैं उतना ही अपनी कोशिशों से संतुष्ट हो पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। जितना हम सोचते हैं हमारी जरूरतें उससे देखा जाए तो बहुत कम है। फिर संतुष्टि मजबूरी या मन महसूस कर रहना ठीक नहीं है, यह मजबूती का भाव है। संतुष्टि के साथ ही हम सही मायनों में इवॉल्व होते हैं। जो है ठीक है और जो होगा देखा जाएगा, यह मजबूत मन ही कह सकता है। संतुष्ट रहने वाले आत्मविश्वास को अपना दोस्त मानते हैं और संतुष्टि को सबसे बड़ा खजाना। इसलिए दोस्तों संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, हर समय ऊपर वाले और प्रकृति को शुक्रिया कहना बेहद जरूरी है।

0: होता है। चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: माँ, ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं? माँ ने कहा, बेटा इतनी आसानी से थोड़ा ही मिल जाएगा किसी को। तू टिल्लू जो था वो मनी मन सोचता हुआ सोचने लगा, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग सी आ रही है।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: कोयले की कहानी।
3: दोस्तों जरा पहचानिए तो, ये आवाज किसकी है? पहचानिए पहचानिए। ये भाप के इंजन की आवाज है। क्या आपको ये मालूम है कि भाप के इंजन को चलाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता था? तो चलिए हम बता देते हैं, वो ईंधन था कोयला। क्या आपने कोयला देखा है? आजकल कोयले का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। आइए सुनते हैं कोयले की कहानी उसी की जुबानी।

अरबों सालों में बन पाया था, गहराई में दबा पड़ा था, प्राकृतिक प्रक्रमों के चलने से, घने जंगलों के दबने से, मिट्टी की परतें जमने से, दाब ताप के फिर बढ़ने से, कार्बनीकरण प्रक्रिया के चलने से।

0: फंदे से फंदे से फंदे से रस्सी कहे अचंभे से
1: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
0: मेरा धागा तेरे पास सदा मिलेगी तुझको खास।
2: कड़ मक्कड़ बम्बे बाओ बम्बे बाओ बम्बे बाओ
3: अकड़ बकड़ बम्बे बाओ अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ में निकला धागा जोर निकल के भागा।
2: अकड़ बकड़ बम्बे बाओ अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ में निकला धागा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबवा की आवाज।
1: चरवाहा।

0: अरे किशन, किशन बेटा कहाँ है तू?
1: क्या है काका?
0: आज पाठशाला नहीं जाना
1: है काका? आज तो रविवार है।
0: ओ, मैं तो भूल ही गया, आज तो तुम्हारी रविवार की छुट्टी है। सुन तू जा, आज तू ही पशु चरा ला।
1: काका मुझे तो आज पाठ याद करना है।
0: ओफो, तुझे तो बस सारा दिन पाठ ही याद करना है। ऐसा कर, पुस्तक साथ ही लेता जा, पशु चरते रहेंगे और तुम अपना पाठ याद कर लेना।
1: वाह काका, जब मैं पाठ याद करता हूँ ना तो पूरा ध्यान पुस्तक में ही रखता हूँ, इधर उधर नहीं देखता।
0: अरे शाम को आकर पाठ याद कर लेना। ये ले पकड़ लाठी और ले जा पशुओं को चराने, और हाँ ये ले डिब्बा, इसमें भात है।
1: अच्छा,
0: दोपहर को खा लेना। मुझे तो आज शहर जाना है।
1: तब तो ठीक है काका। हाँ काका, मेरे लिए शहर से हिंदी की पुस्तक लेते आइएगा।
0: ठीक है बेटा, तुम्हारी हिंदी की पुस्तक लेता आऊंगा।
1: चल शेरू, चल दोस्त, आज तुझे भी खूब घुमाऊंगा, चला मेरे साथ।
2: किशन पशुओं को लेकर चरागाह में जा पहुंचा। वो आज बहुत खुश था। पशु हरी हरी घास चरने लगे। किशन अपने पशुओं का पूरा पूरा ध्यान रखता कि उसके पशु किसी के खेत में घुसकर कोई नुकसान ना कर दे। वो एक पेड़ की छाया में जा बैठा। उसने भात का डिब्बा खोला ही था तभी उसकी दृष्टि सामने के खेत पर जा पड़ी। उसने देखा बहुत सारे पशु मुखिया काका के खेत में घुस आए हैं और दूर तक फैली हुई तरबूज और खरबूजों की बेलें तोड़ तोड़ कर खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
3: अरे ओ शेरू, ओ शेरू किधर है तू भाई? अरे कोई है? वो देखो, शंभू के पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं। ओए हुर या हप हप हप, चला चला चला है।
4: अरे ये चादर ओढ़े कौन सो रहा है? कौन है भाई? कौन है भाई?
5: अरे चादर क्यों खींच रहा है, क्यों चिल्ला रहा है?
6: सोने भी नहीं देता।
4: अरे शंभू तू तो आराम से सो रहा है, सामने देख। अरे उठना, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: ओफो, तुझे क्या, तेरा खेत तो नहीं उजाड़ रहे, जा जाकर अपना काम कर।
4: अरे शंभू कैसा आदमी है रे तू,
5: क्यों परेशान कर रहा है? चल जा यहां से, सोने भी नहीं देता। जा जाकर तू ही पशुओं को बाहर निकाल दे।
4: अरे इतने सारे पशु मैं अकेले कैसे निकालूंगा? देख, अरे देख ना किस बुरी तरह से खेत को उजाड़ रहे हैं।
5: एक बार कह दिया ना, तेरा खेत तो नहीं है, फिर तुझे क्या परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आ रहा।
4: खेत तो सभी के होते हैं, आज तेरे पशु मुखिया काका के खेत में घुसे हैं, कल तेरे खेतों में किसी और के पशु भी घुस सकते हैं।
5: ओफो,
4: तब तेरी समझ में आएगा।
5: अच्छा जा जा जा जा जा, मुझे सोने दे।
4: किसी का खेत उजड़ रहा है और इसे कोई चिंता ही नहीं।
2: भागता भागता किशन मुखिया काका के खेत में जा पहुंचा और अकेले ही लाठी घुमाते हुए खेत में से पशुओं को निकालने लगा। शेरू भी भौं भौं करके पशुओं को भगाने में उसकी मदद करने लगा। इतने में ही किशन ने दूर से देखा मुखिया काका उसी की तरफ आ रहे हैं।
3: चलो चलो चलो।
7: अरे किशन, तुम खेत में क्या कर रहे हो?
4: मुखिया काका, पशु खेत में घुसाए थे, उन्हें निकाल रहा था।
7: अरे ये सब तरबूज और खरबूजे कैसे बिखरे हैं? किसने किया ये सब?
4: वो काका शंभू है ना।
7: हाँ।
4: उसके पशु खेत में घुसाए थे।
7: और शंभू कहाँ था?
4: वो देखिए, वो वहाँ चादर ओढ़े सो रहा है, वो पेड़ के नीचे।
7: तो फिर उसके पशु किसने निकाले?
4: वो तो मैंने देख लिया काका, नहीं तो।
7: तो तूने शंभू को नहीं जगाया?
4: बहुत जगाया काका, बहुत जगाया, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी।
7: इन्हें अकेले ही इतने सारे पशु तुमने कैसे निकाले?
3: मेरे पास लाठी है ना।
7: हाँ।
3: इसी से, और मेरे शेरू ने भी मेरी मदद की।
7: बेटा किशन, तुम बहुत बहादुर हो, आओ मेरे साथ चलो, मैं शंभू की खबर लेता हूं। चलो।
3: चलिए काका, चल शेरू। आ।
2: मुखिया काका किशन को लेकर उसी जगह जा पहुंचे जहां पेड़ के नीचे शंभू सो रहा था।
7: शंभू! अरे ओ शंभू!
3: अरे ओ शंभू!
5: अरे अरे, आज पशु चराने क्या आ गया, सोने नहीं देता।
3: क्या है?
7: सोने नहीं देता, तुझे मैं सुलाता हूं। उठ, और चलकर देख तेरे पशुओं ने मेरे खेत को कैसे उजाड़ा है।
5: आप मुखिया साहब, आपके खेत किसने उजाड़े?
7: मुझसे पूछ रहा है।
0: तू चल के देख खेत की हालत, तब तुझे पता चलेगा किसने उजाड़े हैं खेत।
5: अजी मुखिया जी, मेरे पशु तो यही थे। किसी और के पशु घुसे होंगे।
3: अरे शंभू, क्या बात कर रहा है? मैंने तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला कर बताया, तेरे पशु मुखिया काका का खेत उजाड़ रहे हैं।
5: तू चुप रह। तू तो आज पहली बार पशु चराने आया है, तुझे कुछ मालूम भी है?
0: अगर आज किशन न होता तो मेरे खेत में एक भी तरबूज और खरबूजा न बचता, समझे?
5: लेकिन वो मेरे पशु कहाँ हैं?
0: खुद तो सो रहा था और हमसे पूछ रहा है कि पशु कहाँ हैं।
5: मुखिया काका, आज माफ कर दो, आगे से ध्यान रखूंगा।
0: अच्छा चल जा, और देख।
5: हाँ।
0: आगे से अपने पशुओं का ख्याल रखना।
5: जी।
0: किसी और के खेत में ना घुसें।
5: जी।
0: हाँ, तुझे छोड़ रहा हूँ।
5: जी।
0: पर आगे से ध्यान रखना, समझे?
5: मुखिया जी, आगे ऐसा कभी नहीं होगा, आगे ऐसा कभी नहीं होगा।
7: चल बेटा किशन, तुझे मीठे तरबूज और खरबूजे खिलाता हूँ।
3: मुखिया जी, किसी और दिन खाऊंगा, अब मैं भी चलता हूँ। मेरे पशु वो देखिए, ओ दूर निकल गए हैं। अच्छा मुखिया जी।
7: अच्छा बेटा किशन, किसी दिन घर आना। हाँ
3: आऊंगा, जरूर आऊंगा मुखिया जी। चल शेरू, आ। इधर
2: इधर। किशन जब शाम को घर लौटा तो उसके पिताजी शहर से वापस आ गए थे। उसने अपने पिताजी को सारी बात बताई कि कैसे शंभू के पशु मुखिया काका के खेत में घुस गए थे और शंभू पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने अकेले ही मुखिया काका के खेत से पशुओं को बाहर निकाल दिया। इस पर उसके पिताजी बहुत खुश हुए और बोले,
0: मेरा किशन बड़े काम का है। अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखता है, ये बड़ी अच्छी बात है। बड़ा बहादुर है, अकेले ही इतने पशुओं को भगा दिया और दूसरे के खेत को उजड़ने से बचा लिया। इधर आ बेटा, शाबाश।
4: काका,
0: जा बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर अपना पाठ याद करना।
4: अच्छा काका, चल शेरू आ।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज़।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कार्यक्रम में हम आपके लिए कोई ना कोई सुविचार लेकर आते हैं, तो आज आपके लिए प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले एक सुविचार।
2: तो सुविचार है,
0: द वन हु चेजेस टू रैबिट्स गेट्स नन, यानी
2: जो दो खरगोशों का पीछा करता है वो किसी को भी नहीं पकड़ पाता।
0: वो किसी को भी पकड़ नहीं पाता। तो श्रोताओं, इस सुविचार का अर्थ ये हुआ कि हमें एक साथ बहुत सारे लक्ष्य नहीं रखने चाहिए,
2: मात्र एक लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए।
0: जी हाँ, तो जब भी कोई काम करें तो उसी पर अपने लक्ष्य को साध करके रखें, सफलता आपके सामने होगी। साथियों, अब बारी है श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने की। हमारे एक श्रोता मित्र ने लिखा है, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं ब्लाइंड हूँ, मेरा नाम भी दीजिए प्रोग्राम में। तो दोस्त, आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन समस्या ये है कि आपने अपना नाम नहीं बताया।
2: सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया अपना नाम जरूर बताइए
0: और अपना पता और राज्य का नाम भी जरूर बताइए,
2: और हाँ, संपर्क बनाए रखिए।
0: एक और श्रोता की प्रतिक्रिया हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, और इस श्रोता ने लिखा है,
2: अजीत जी और विमलेश जी को मेरा सप्रेम नमस्कार।
0: मैं कानाराम चौहान, गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से। हमारा अपना कार्यक्रम उमंग मैं नियमित रूप से सुनता हूँ। इसमें दी जाने वाली जानकारियाँ मनोरंजक के साथ साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक होती हैं। विगत दिनों में इंसुलिन की कहानी आपने सुनाई, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके लिए सीआईईटी एनसीईआरटी का धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, जो कानाराम जी ने लिखा है वो एक सैंपल है।
0: सैंपल सुनाने का तात्पर्य ये था कि इसी प्रकार आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं, यानी नाम,
2: जगह,
0: जिला और
2: राज्य।
0: तो आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम के द्वारा यात्रा करते हैं एक विचित्र संसार की,
2: जहां कुछ भी हमारी दुनिया की तरह नहीं है।
0: सुनते हैं कार्यक्रम गुलिवर की विचित्र यात्राएं।
3: मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे आ गया और थककर वहीं लेट गया। बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, बहुत ही छोटी सी। कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था

वो लोग लुढ़कते पुड़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उसकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला ला कर मेरे मुंह में उंडेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उंडेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे। परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व
अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं ना जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया।
मुझे पानी कहीं ना मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली, इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया।
राजधानी के लोग मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: गुलीवर की विचित्र यात्राएं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: बिन्नी का सपना।

0: अरे तुम्हें क्या हुआ?
1: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
0: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
1: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती है त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला।

अह से कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसे दो बिंदी से दर्शाते हैं। अह को कई शब्दों के आखिरी में लगाया जाता है, जैसे नमः।

अंग से कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन इसको शब्द के ऊपर बिंदी जैसे जोड़ा जाता है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। इस बिंदी से शब्द की आवाज बदलती है, जैसे चांद, जंगल,

इया से कोई भी शब्द नहीं है। इसको हम आधा अनुस्वार बोलते हैं। इसको अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु जैसे जोड़ा जाता है, जैसे गाँव।

ण से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, लेकिन ण शब्द के बीच में या आखिरी में आता है, जैसे बाण।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत करूं है तमार सबुनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM पर। रेडियो टांडिया भील 90.8 FM नो यू खेतीबाड़ी कार्यक्रम आपुने खेतीबाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने अपने तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। किसान भाइयों, आज नो जो अपन खेतीबाड़ी नो मुख्य विषय है त्यो है किसान और किसान खेती और मौसम। हाँ किसान भाइयों, अपन जो खेती है पूर्णतः आपू अगर देखी ते मौसम पर आधारित है। ये हमने नहीं बारिश नो समय जो है बारिश ने बाद आपू अपनी खेती ने आपू करिए हैं, क्योंकि आप झाबुआ जिले में अगर आपू देखी तो पानी नी घनी समस्या है और इन्हें हिसाब से अगर आप देखी तो अपनी जो कृषि है ते मौसम पर अपना कितरो पानी पड़े तिनी पर निर्भर रहे है। और साथ ही पानी ने अलावा भी अपनो जो टाड है केवी टाड पड़े केवी गर्मी था है इन्हीं पर भी अपनी जो पूरी फसल चक्र है त्यो तिनी ऊपर है साले है। तो किसान भाइयों, आज ना इना कार्यक्रम में आपू विस्तृत थी जानू के कहीं ना एवं बिंदु है कहीं नो समय है कि कम अपन मौसम ने पहचान था है अने कहीं ना मौसम में केवी रीतनी फसलें पाक है केवी फसलें आपू पकड़ी सकूँ तिना बारा में आज ना इना कार्यक्रम में आपू चर्चा करूँ जाणूँ समझूँ अने अपना खेतरों में तीनों प्रयोग करूँ। किसान भाइयों, आशा करिए इसे कि इना कार्यक्रम ना बारा में जो भी आपू हमली रहा है तिना बारा में आपू अपना सहयोगी अपना साथी किसान भाई ने भी इनी जानकारी आ लूँ। साथ ही आपू रेडियो टांडिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में जे भी जानकारी आपू मिली रही है अगर तीन में थोड़ो भी कहीं डाउट आपू मालूम पड़े थोड़ी भी कहीं शंका मालूम पड़े तो आप फोन लगाड़वानू अने आर को संपर्क करवानो अने हमू अपन केवी की किसान विज्ञान केन्द्र मध्यम थी तमारा हंगड़ा सवालों ने विशेषज्ञ कन पुगाड़ू विशेषज्ञ मध्यम थी आपू हंगड़ा जवाब अपन जितना भी समस्या है जितनी भी संदेह है अपनी खेती ने संबंध में तीनी जानकारी आपू आलवानो प्रयास करूँ। तो किसान भाइयों, आज ना इना कार्यक्रम ने आपू शुरुआत करिए जाए कि कम मौसम नो रोल है अपनी इनी खेती पर।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: खेती किसानी और मौसम का आपस में गहरा संबंध है। मौसम ने अगर दगा दिया तो किसान का कौशल भी काम नहीं आता। मौसम के सटीक पूर्वानुमान से किसान अपनी फसल की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकता है। अब हमारा मौसम विज्ञान सटीक जानकारी के काफी कुछ समीप पहुंच चुका है। देश के मौसम वैज्ञानिकों की इस सफलता का लाभ तो किसानों को मिल ही रहा है। अब कोशिश ये भी हो रही है कि जानकारी के लिए किसानों को कहीं जाना न पड़े बल्कि जानकारी खुद किसानों तक पहुंचे। ये सब कैसे हो रहा है? मौसम की जानकारी किस हद तक सही साबित हो रही है? किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए नया क्या हो रहा है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ देश के शीर्ष मौसम वैज्ञानिक भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कंदूरी जयराम रमेश यहाँ मौजूद हैं।
3: नमस्कार।
2: साथ ही उनके सहयोगी वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह।
4: नमस्कार।
2: उन्हीं के साथ वाद संवाद के लिए अंग्रेजी दैनिक मिंट से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार शांतन बेरा भी यहाँ मौजूद हैं।
5: नमस्कार।
2: साथ ही मौजूद हैं किसान नेता सुरेश चंद्र नागर। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हीं के साथ दूसरी ओर बैठे किसानों का भी अपने ही चैनल दूरदर्शन किसान में स्वागत है। तो मौसम विज्ञान और किसान पर वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
6: जब करोड़ों किसान और आधे से ज्यादा खेत पानी के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते

0: तो मॉनसून का सटीक पूर्वानुमान यक्ष प्रश्न से कम नहीं रहता। सटीक अनुमान से खेती की योजना बनाने और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि तब किसानों को पता होगा कि तापमान कितना रहने वाला है और बुआई कब करना ठीक होगा। ये बहुत पुरानी बात नहीं है जब मौसम पूर्वानुमान को लेकर लोग हंसा करते थे। अगर मौसम विभाग कहता था कि वर्षा होगी तो लोग मजाक में कहते थे, इसका मतलब वर्षा नहीं होगी। पर ये धुंधला अतीत अब आदर में बदल चुका है। हमारे वैज्ञानिकों का आकलन पिछले कुछ वर्षों से सटीक साबित हो रहा है। इस बार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे देश में औसत से अधिक तापमान रहने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1901 के बाद 2016 की गर्मी में तापमान में औसतन 0.9 डिग्री का इजाफा हुआ था। वहीं इस बार तापमान में 1 डिग्री के इजाफे की बात मौसम विभाग ने कही है। 2016 की तरह 2017 भी गर्म रहेगा। तापमान में इस बढ़ोतरी के पीछे ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही अन्य कारण भी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना तो 1875 में ही हो गई थी। इन 142 सालों में विज्ञान ने काफी विकास किया और हमारे किसानों की मदद के लिए सरकार ने सटीक पूर्वानुमान का तंत्र विकसित किया। इस विकास का ही परिणाम है कि अब मौसम विभाग कुछ घंटे पहले ही ये बताने में सक्षम हो गया है कि किस खास इलाके में बारिश हो सकती है और कहां ओले पड़ सकते हैं। अब अगले 5 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान, तापमान आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जिला स्तर तक पहुंचाना संभव हो गया है। किसान SMS के जरिए भी मौसम से जुड़ी हर जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रादेशिक मौसम केंद्र की साइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होता है। फ्री SMS के जरिए मौसम आधारित परामर्श देने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग और कृषि मंत्रालय की ओर से एक पद्धति विकसित की गई है। इसके लिए किसानों को उनके नाम और मोबाइल नंबर सहित फसलों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने से किसानों को उनकी विशिष्ट फसल के लिए कृषि संक्रियाओं के साथ साथ मौसम के ताजा हाल SMS के जरिए मिलते रहेंगे। इसके अलावा किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1717 के जरिए भी अपने इलाके के मौसम से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।
1: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, हमारे मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कंदोरी जयराम रमेश हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रमेश, कभी मौसम पूर्वानुमान की हंसी उड़ती थी पर अब अनुमान काफी कुछ ठीक साबित हो रहे हैं, कितना फीसदी सटीक रहा है अनुमान?
2: ये मौसम विज्ञान जो है काफी तरक्की कर रहा है, आगे वाले दिनों में भी तरक्की करती रहेगी। जैसा नया नॉलेज का आविष्कार होगा, वो नया नॉलेज का जो है सर्विस के रूप में कन्वर्ट करने का जिम्मेदारी हमारी है, तो ये काम लगातार जारी रहेगा। अभी जो है मॉडल्स में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं नया नॉलेज जो आता है रिसर्च के थ्रू। अभी पिछले साल के मुकाबले अभी कंपेयर करेंगे तो पिछले साल जो है 24 किलोमीटर 22 किलोमीटर की ग्रिड स्केल में हमारी फोरकास्ट जनरेट होती थी, वो अब जो है 9-12 किलोमीटर की ग्रिड स्केल में हो रही है। फाइन स्केल में 10 दिन तक फोरकास्ट जनरेट करने का क्षमता एक ही साल में बढ़ाया गया है। तो इससे जो है पहले 5 दिन तक हम वर्षा की सूचना देते थे, अब 5 दिन तो सूचना देंगे ही, उसके साथ साथ अगले 5 दिनों का क्या स्थिति रहेगा उसका भी एक आउटलुक दे पाएंगे इस साल से।
1: जी, हमें ये भी बताएं डॉक्टर सिंह कि पिछले दिनों में ऐसे कितने बदलाव हुए हैं जिनसे जो पूर्वानुमान है वो ज्यादा से ज्यादा सटीक साबित हुए हैं।
3: पिछले 5 सालों में चक्रवात से संबंधित हो या एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि आप ओले पड़ना, भारी वर्षा, बहुत तेज हवा का चलना, तो इस सब की भविष्यवाणी में भी सुधार हुआ है। और सुधार इस हद तक कि एक हम लोग कहते हैं फॉल्स अलार्म रेशियो,
1: ठीक है,
3: तो वो काफी कम हो गया है, काफी कम हो गया है, 10% के नीचे आ गया है फॉल्स अलार्म रेशियो पिछले 5-6 सालों में। मिसिंग रेट, जब मिस कर जाते हैं वर्षा हो जाती है, उसमें भी काफी सुधार हुआ है। और भारी वर्षा के डिटेक्ट करने की क्षमता भारत मौसम विज्ञान विभाग की काफी बढ़ी हुई है और इसमें काफी सेटिस्फैक्टरी स्किल है, सटीकता काफी अच्छी है। अगर हम कुछ इवेंट्स पर प्रकाश डालें, घटनाओं पर, तो 2015 में जैसे कि सैटेलाइट उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को भी हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं और माइक्रो लेवल तक जानकारी देने की प्रयास की जा रही है। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए हैं, जैसे रैपिड सिस्टम है उपग्रह के आंकड़ों को यूज करके। और रुचिकर पार्ट यह है कि 2015 में बंगलौर में क्रिकेट हुआ था, उसमें 4000 लोगों ने एक दिन में हिट किया था जानने के लिए कि क्रिकेट का उस दिन खेल हो पाएगा कि नहीं। तो वो रैपिड प्रोग्राम को या सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को देख के किया गया था। और तो इस तरह से काफी सुधार की संभावना है और लगातार हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विभिन्न तरह के एक्सट्रीम वेदर के लिए, चाहे डॉपलर वेदर राडार या उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को भी यूज कर रहे हैं। और उसका फायदा सबसे बड़ा यह है कि जब हम स्वचालित यंत्र लगाते हैं तो वो उसी जगह का ऑब्जर्वेशन देता है, लेकिन इनसे स्पेशियल हर जगह का प्रेक्षण मिलता है।
1: जी, तो काफी सारे फायदे हो रहे हैं और इन जानकारियों का लाभ कई तरीके से लिया जा रहा है। डॉक्टर रमेश, हमें ये बताएं कि विदेशों में मौसम के विशिष्ट चैनल होते हैं, कृषि और पर्यटन के लिहाज से तो ये जानकारियां अहम होती है, यहां तक कि हम देखते हैं वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं वो भी इन जानकारियों का खूब लाभ उठाते हैं। तो ऐसे में विदेशों की तुलना अगर हम करें अपने देश से, तो यहां के मौसम विज्ञान की स्थिति को आप क्या पाते हैं?
2: इधर जो है हमारा सोलर रेडिएशन जो है इक्वेटर के पास रहने की वजह से ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। सबसे ज़्यादा इक्वेटर के पास वाला कंट्रीज में सोलर रेडिएशन का ज़्यादा होता है। जो हमारा प्रोसेस जो है सोलर रेडिएशन से रिलेटेड है, सनशाइन होने के बाद, डे सनराइज होने के बाद जो कन्वेक्शन होती है, मॉइस्चर जो है, ऑपरेशन जो है, समुद्र से हो या जमीन से हो, वो सब जो है क्लाउड्स के रूप में बनता है, उसको कन्वेक्शन कहते हैं हम। वो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय सोलर रेडिएशन, इसलिए ये प्रोसेस जो होता है हमारा वेदर जो है ड्रिवन बाय ए फिजिकल प्रोसेस, सोलर रेडिएशन ड्रिवन फिजिकल प्रोसेस। इसको समझने के लिए हमें यंत्र चाहिए, वो नेटवर्क चाहिए। सो अभी तक उस तरह का नेटवर्क सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, ग्राउंड सिस्टम, उस पूरा प्रोसेस को समझने के लिए। अलग अलग टाइम स्केल में भी ये प्रोसेस डेवलप होते हैं, बिकॉज जो थंडरस्टॉर्म कहते हैं, ओले पड़ने वाला, लाइटनिंग वाला है, बहुत ही लोकली एक ही डिस्ट्रिक्ट का एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस में होता है, सब जगह नहीं होता है। उस स्केल को समझने के लिए उस स्केल का मेजरमेंट्स भी तो चाहिए। जब तक उस टाइप का सिस्टम नहीं बना है वो प्रोसेस को समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं उसको मॉडल में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कॉर्पोरेट करने के बाद इम्प्रूव आएगा, इसलिए ये प्रोसेस स्लो हुआ है। विदेशों में इस टाइप की सोलर रेडिएशन से ड्रिवन प्रोसेस नहीं है उनका, उनका नॉर्मल एटमोसफियर कंडीशन से ही बदलाव होता है, इसलिए उनका प्रेडिक्शन करना आसान है मुकाबले जो है इक्वेटर के आसपास वाले देशों में करना।
1: बिल्कुल, भारत जैसे देश में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ी है। शांतन जी, ये बताएं कि मौसम की जो सटीक जानकारी है, ये जानकारी खेती और अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है?
4: देखिए, ऑलमोस्ट 52% जमीन जो है, खेती का जमीन जो है, वो मौसम के ऊपर निर्भरशील है। और खाली ओनली, इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, उस जो 3 महीने का नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है अक्टूबर टू दिसंबर, तो उस पे भी खेती के डिपेंडेंट है। जैसे इस बार पूरे देश में साउथ वेस्ट मानसून नॉर्मल रहा है, मगर नॉर्थ ईस्ट मानसून डेफिशिएंट होने के कारण 5 राज्यों में, खासकर साउदर्न इंडिया में, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में बहुत भयानक सूखा है, तो किसान उसको जूझ रहा है। और अर्थव्यवस्था अगर देखेंगे, इकोनॉमिकल स्टेट देखेंगे, जैसे 2014 और 15 में डेफिसिट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून था 12% और 14% डेफिसिट था, उसमें कृषि विकास दर जो है वो, एक तो 2014-15 में 0.2% कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 15-16 में खाली 1.2% बढ़ा है, और इस साल का नॉर्मल मानसून, 2016 का नॉर्मल मानसून होने के कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ के 4.2% हो गया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। खाली किसानों का आय, इनकम के बारे में ही नहीं, बाकी खेती किसानी से जुड़े हुए जितने कंपनी है, सीड हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, कंज्यूमर गुड्स कंपनी, तो सारे कि बहुत सारे
1: सभी इनसे किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। नागर जी, किसान नेता होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो मौसम पूर्वानुमान है उसको लेकर आपकी क्या राय है?
5: किसानों को इसकी जानकारी पहली बात तो बहुत कम मिल पाती है। किसान इतने जागरूक नहीं हो पा रहा पूरे देश में कि वो किसान चैनल से जुड़ सका हो। बहुत जगहों पर अभी यही पता नहीं है लोगों को गांवों में कि किसान चैनल चल रहा है। इसके लिए भी हमें, हमारी सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि किसानों तक किसान चैनल कैसे पहुंचे, क्योंकि अब सटीक जानकारी, सबसे अच्छी जो जानकारी दे रहा है वो किसान चैनल दे रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि किसान अपनी प्लान, अपनी योजना बनाता है मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, तो उसका ही नहीं बल्कि देश, किसान को, किसान ही अच्छी पैदावार फसल नहीं प्राप्त करता, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं होती, बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी होती है। मेरा ये मानना है कि इस, जब से ये पिछले 6-7 वर्ष से लगभग सटीक जानकारी होने लगी है और जो किसान जागरूक हैं और पूरी तरीके से जानकारी हासिल करके अपनी अपनी फसल को बचा भी लेते हैं, वो प्राकृतिक प्रकोप से बचा भी लेते हैं और जो बढ़िया फसल कर सकते हैं मौसम के अनुकूल वो भी कर लेते हैं, तो इससे उनका, किसानों की भी भलाई है और पूरे देश की भी भलाई है।
1: बिल्कुल, तो किसानों की भलाई इस बात से जुड़ी हुई है जो मौसम पूर्वानुमान है वो सटीक हो और उसका फायदा किसान भी उठाए। शायंतन जी, ऐसे में हमने देखा है कि विश्वसनीयता एक बड़ी चीज है, अगर विश्वसनीयता होगी तभी किसान उस जानकारी का लाभ लेंगे और पिछले दिनों हमने देखा भी किस तरह से जो प्राइवेट फोरकास्टर्स हैं उनके मुकाबले में जो सरकारी संस्था है उसके द्वारा जो पूर्वानुमान दिए गए हैं वो ज्यादा सटीक साबित हुए हैं, तो इससे विश्वसनीयता भी बढ़ी है।
4: हाँ, जैसे 2014, 15 और 16 में IMD का फोरकास्ट बहुत ही अच्छा था, खाली एकमात्र खाली साउथ वेस्ट मानसून के बारे में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी अनुमान सही रहा है और इनफैक्ट जो एक ओले गिरने का संभावना रहता है गेहूं का फसल जब पकता है, 2015 में IMD ने पहले से ही बता दिया था ऐसे होने जा रहा है और वो सटीक निकला है, तो इससे किसानों का प्लानिंग में तो खास करके अच्छा ही हुआ होगा।
1: वो जानकारी जो मिलती है उन्हें भारत मौसम विज्ञान विभाग के जरिए उन जानकारियों का वो लाभ ले सकते हैं और जिस तरह के जोखिम सामने अगर नजर आते हैं तो उससे बचने के लिए पहले से उपाय भी कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से कई चुनौतियों की भी बात हो रही है भारत जैसे देश में, लेकिन विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है और यहां पर जानकारी के पहुंच की भी बात हो रही है किसानों तक, जैसा कि नागर जी ने इस बात को उठाया, आप बताएं यहां पर कि किस तरीके से ये जो जानकारी है से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है और किस हद तक पहुंचाया जा रहा है?
3: जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जो प्रचलित माध्यम है, जैसे रेडियो हुआ, दूरदर्शन हुआ, दूरदर्शन में DD किसान का भी बहुत बड़ा अहम रोल है, अखबार हैं और इसके अलावा किसान कॉल सेंटर, इन सब से तो जानकारी किसानों को दी जा रही है अपने फोरकास्ट के बारे में और फोरकास्ट के आधार पर क्रॉप संबंधित जो भी उनके बचाने के उपाय होने चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा सबसे प्रभावी माध्यम जो SMS के थ्रू किसान के मोबाइल पर सूचना पहुंच रहा है, ये पिछले 4-5 सालों में शुरू हुआ है और काफी हद तक ये प्रभावी है। हाँ, एक यहाँ पर जरूर मुद्दा है कि हम क्या सभी किसानों तक पहुंच पा रहे हैं, अभी जो नंबर है, संख्या है किसान भाइयों तक पहुंचने की, वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है
1: जी।
3: और इस 2 करोड़ संख्या तक किसानों के सप्ताह में 2 बार, मंगलवार और शुक्रवार को ये सूचना जारी की जाती है और पहुंचाया जा रहा है
1: जी। डॉक्टर रमेश, विदेशों में जो मौसम पूर्वानुमान है इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचे इसके लिए काफी मदद दी जाती है, उस लिहाज से भारत में क्या स्थिति है?
2: भारत में जो इन्फॉर्मेशन है किसानों को पहुंचाने का, वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी कहते हैं ना, वेदर इन्फॉर्मेशन से क्रॉप के लिए एडवाइजरी भी बनाई जाती है। हमारा 130 सेंटर है, वहां से हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनता है, एक एक सेंटर जो है 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट का एग्रो एडवाइजरी बनाता है वेदर इन्फॉर्मेशन से, जो मंगलवार और शुक्रवार का जो हमारा बुलेटिन निकलता है अगले 5 दिनों के लिए, उसके आधारित करके वो क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरीज बनाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का। उससे हम हम उसी डिस्ट्रिक्ट का जो फार्मर्स डेटाबेस है उसको बिल्ड कर रहे हैं उसी सेंटर में, ताकि उसी सेंटर से उधर से सीधा जो फार्मर्स का डेटाबेस जैसा बिल्ड होता जाएगा उससे हम डायरेक्टली पुश कर सकते हैं फार्मर को। देन उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन फार्मर चाहते हैं, हमारा जो कॉल सेंटर है, IVRS नंबर है, उसके थ्रू आके हमारा विशेषज्ञों से जानकारी और ले सकता है, अधिक जानकारी ले सकता है। हम जो है इसको अभी जैसा हमारा कोलीग ने बताया, पैनलिस्ट ने बताया, 52% से 55% तक वर्षा आधारित सिंचाई देश में होती है, नहर आधारित सिंचाई जो है बहुत कम है उसके मुकाबले। सो इसी एरिया में भी जो न्यूट्रिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, जो सो पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, सीरियल्स है, ये बहुत जरूरी है हमारा संतुष्ट आहार के लिए भी। चावल गेहूं दूसरी जगह से बनने से भी, बट इसकी जो तीनों चीजों का जो है उसकी पैदावार समृद्धि के साथ हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम जो है रेनफेड एग्रीकल्चर का और इरिगेटेड एग्रीकल्चर, कैनाल बेस्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर का, इस दोनों का डिस्टिंक्शन जो है हमारी बुलेटिन में इस साल से लाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि जानकारी
1: कि आगे भी कई ऐसी कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। डॉक्टर रमेश, यहाँ पे पूर्वानुमान की बात हो रही है, तो एक अहम पूर्वानुमान पिछले दिनों आया है कि इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे?
2: गर्मी जो है जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबली हो रहा है उसका तो असर है, हमारा देश ही नहीं है, सारा देश जो है गर्मी की प्रकोप से झेल रहे हैं। एंड इंडिया मुकाबला देखेंगे ना, अब 2014 में जो IPCC जो है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो जो है बेस्ट साइंस आधारित किया है, वो 0.86 डिग्री का वार्मिंग हुआ था ग्लोबली। अभी जो है इस साल अंत तक 2016 का अंत तक 1 डिग्री से 0.04 डिग्री की वार्मिंग हो गई है, पूरा वर्ल्ड एवरेज है। बट इंडिया में आप देखेंगे अभी जो है 0.86 से 0.9 डिग्री तक की वार्मिंग हुई है, ये 1901 से 2016 तक का वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग से इंडिया वार्मिंग जो है कम है, ग्लोबली जो 1.04 डिग्री का हुआ है, इंडिया में अभी तक 0.86 से 0.91 तक, तो ग्लोबली भी आप कंपेयर करेंगे हमारे ऊपर असर कम है। बट फिर भी हमारे जो देश जो है गर्मी का देश है, समर में हमें बहुत जगह जो है 40 से 45 डिग्री का तापमान सामान्य रूप से रहता है, उसके ऊपर 1 डिग्री भी रहेगा ना, बहुत ज्यादा असर करेगा लोगों के जीवन पे और फसलों पे ज्यादातर।
1: डॉक्टर सिंह, यहाँ आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि बताया डॉक्टर रमेश ने कि वैश्विक आधार पर अगर देखें तो कम यहाँ पर जो तापमान में वृद्धि है वो देखी जा रही है, लेकिन फिर भी इसका असर पड़ता है, तो किस तरह का असर यहाँ की फसलों को पड़ने जा रहा है अभी, और किसानों को किस तरह से सचेत रहना चाहिए?
3: तापमान बढ़ने से फसलों पर प्रभाव पड़ेगा, फसलों का पूरा अवधि फसल चक्र का कम होता है
1: जी,
3: और तापमान बढ़ने से मौसम में भी परिवर्तन होते हैं तो उसका भी असर पड़ता है। अब फसल पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि माननीय सिंह महोदय ने बताया कि जिला स्तर पर हम कोशिश करेंगे कि वहां पर कृषि मौसम विशेषज्ञ एडवाइजरी बनाएं, SMS के थ्रू भेजें, उसमें राज्य सरकार के अधीन जिला कृषि अधिकारी का भी इनपुट जाए, फीडबैक जाए, जो कि सभी जिले स्तर पर किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हमें पता चलता रहेगा कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरह का फसल चक्र वो ले रहे हैं, और जो एडवाइजरी में हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो भी चीजें इंक्लूड की जाए, जिसमें कि तापमान के बढ़ने संबंधी या और भी कोई वेदर संबंधी घटना होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें अपने SMS या एडवाइजरी में हम इंक्लूड कर सकें, तो एक काफी एम्बिशियस प्लान है
1: जी। बिल्कुल, यानी कि मौसम संबंधी जो भी जानकारी है वो किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचे और वो उसका लाभ ले सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।
6: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक नी बाद एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत करूं है तमार सबूनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM पर। किसान भाइयों आपू खेतीवाड़ी कार्यक्रम हमली रहा है रेडियो टांडिया भील ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आज नो जो आप विषय है मौसम नी जानकारी। जी हाँ किसान भाइयों, मौसम आप खेती हरू घणो जरूरी है। आपड़ो मौसम नी अगर हमारे किसान भाइयों ने जानकारी थी जाए तो अपनी जो फसल है तीन वगड़वा थी आपू वसाड़ी सकी, तीन समय पर पानी आलव, समय पर तीन रख रखाव की कम करवानी, केम के अगर नमी आवी जाए अपनी फसलों में अपनी फसल खराब भी थी सके है। तो इन्हीं सब बातों थी वसवा हरू आप मौसम नी जानकारी होवी घनी जरूरी है। तो किसान भाइयों आज नो जो आपड़ो विषय है तो है मौसम नी खबर। मौसम नी खबर आपुन कहाँ थी मळे, किकम मौसम नी खबर हमळवानी, अने इन तो हूँ फायदो आपुन थई सके तेना बारामां आपु आज विस्तृतमां जानकारी अने चर्चा करी रहा है। तो किसान भाइयों इना प्रोग्राम ने आगे बढ़ावता जाइन हमळीए हजु महत्वपूर्ण चर्चा ने।
2: किसानों तक मौसम की हर छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग का कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग है। इस विभाग का काम फसलों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करना और कृषि उपज बढ़ाने में मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करना है। कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग पुणे कई तरीकों से मौसम और खेती से जुड़ी जानकारी किसानों तक पहुँचा रहा है। समाचार बुलेटिनों द्वारा किसानों तक मौसम और खेती से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाई जा रही है। कृषि सलाह से जुड़े ये समाचार बुलेटिन कई स्थानीय भाषाओं में रेडियो के जरिए किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। खेती और किसानों से जुड़े ये समाचार आप दूरदर्शन किसान और आकाशवाणी पर सुन सकते हैं। मानसून के दौरान रोजाना सुबह भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसमें जिलों के हिसाब से अगले 48 घंटों के मौसम का हाल बताया जाता है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और उसका खेतों में खड़ी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही बचाव के उपाय की जानकारी भी किसानों को बुलेटिन द्वारा दी जाती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से करीब 205 शहरों के लिए मौसम का तात्कालिक अनुमान और लगभग 200 शहरों के लिए 5 दिन का पूर्वानुमान दिया जा रहा है। कृषि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इसरो और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोग से बहुत से नए तौर तरीके विकसित किए गए हैं। विभाग की ओर से कृषि मौसम सेवा पर नए सिरे से काम किया जा रहा है। भारत सरकार के कार्यक्रम कृषि मौसम सेवा के तहत कृषि विभाग के साथ मिलकर जिला स्तर पर मौसम और कृषि से जुड़ी जानकारी किसानों को दी जा रही है। फिलहाल कृषि मौसम सेवा के तहत 130 ऑफिस हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 660 की जा रही है। जल्द ही ग्रामीण कृषि मौसम सेवा को ब्लॉक लेवल पर ले जाने की कोशिश है। फिलहाल जिला स्तर पर ही पूर्वानुमान से जुड़ी सेवा दी जा रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी जा रही सेवाएं जलवायु, सिंचाई, कृषि और समुद्र विज्ञान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन जानकारियों से आम लोगों के साथ साथ किसान, मत्स्य उद्योग और जल प्रबंध से जुड़े लोग भी लाभ ले पा रहे हैं।
3: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रमेश, अब कितने समय पहले किसी खास इकाई यानी कि गांव, पंचायत या ब्लॉक के मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है?
4: ये अभी 19 तक जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला सेंटर्स जो है हर डिस्ट्रिक्ट में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सहयोग से हर डिस्ट्रिक्ट में उनका कृषि विज्ञान केंद्र है। उसी कृषि विज्ञान केंद्र में हमारा यूनिट भी एस्टेब्लिश करके अभी तो 130 जगह है, वो सारा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं कंट्री का 660 डिस्ट्रिक्ट। अब जो है 660 डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिसी यूनिट खोलेंगे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ, उसका कंप्लीट जो है 2019 तक कंप्लीट किया जाएगा। टारगेट है मार्च 2019 तक जो है हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र के साथ हमारा जो मौसम विभाग का जो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा का यूनिट उसके साथ स्थापित करे, उसके अनुसार उसके बाद जो है तब तक जो पूरा किसानों का डाटाबेस भी SMS का जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर में डाटाबेस जनरेट करना है, इंस्टॉल करना है, उसके बाद जो है हम सब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे ब्लॉक लेवल में और अदर एरियाज में।
3: बिल्कुल, तो कोशिशें लगातार जारी है और जो पूर्वानुमान है वो दिए जा रहे हैं, बुलेटिन तो जारी किए ही जा रहे हैं। नागर जी ये बताएं कि ये जो सूचनाएं हैं वो क्या किसानों तक सही समय पर ये सूचनाएं पहुंच पा रही है?
5: सूचना बिल्कुल सटीक समय पर पहुंचती है और किसान अगर अपने आप जागरूक हो जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। मौसम विज्ञान ने भारतीय किसान को एक इतना अच्छा साधन दे दिया है कि वह अपनी उपज को भी बहुत आगे बढ़ा सकता है।
3: जी।
5: मैं ये बात कह सकता हूं कि अभी बहुत पहले ही बता दिया गया था कि इस बार गर्मी कुछ ज्यादा रहेगी।
3: बिल्कुल।
5: और जैसे कि अभी बताया जा रहा है, कई दिन से अखबारों में भी आ रहा है कि इस बार मार्च में गर्मी ज्यादा हो गई है, तो जो किसान अपने गेहूं के खेत में जिन्होंने पानी लगा दिया है उससे पहले, तो वो उसकी हवा भी बहुत तेज चली है कई दिनों से, उसमें उनको भी फायदा मिलेगा और जो गेहूं जो बढ़िया पकना चाहिए था वो बढ़िया पक भी जाएगा। अगर उसने किसान ने ध्यान दिया, सवाल है कि किसान कितना ध्यान देता है अपनी खेती किसानी पर और मौसम विज्ञान के अनुसार उसका सामंजस्य किसान कितना बैठा पाता है।
3: जी शांतन जी, आपका अनुभव क्या कहता है, किसान कितना इन जानकारियों लाभ है वो ले पाता है?
6: देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब मॉनसून डेफिसिट होता है, मतलब ओवरऑल जब मॉनसून नॉर्मल होता है मगर कुछ कुछ लोकलाइज पॉकेट्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है। तो जैसे एक जिला में जब हम लोग मैं जब महाराष्ट्र गया था फॉर इंस्टेंस, तो एक जगह पे बारिश हो रहा है एक ब्लॉक में, उसके बगल वाला ब्लॉक में मतलब एक डेढ़ महीने तक बारिश नहीं हो पाया है। तो हम लोग का जैसे रमेश जी ने जैसे बताया कि हमारा मतलब फोरकास्टिंग कितना लोकलाइज्ड हो पाएगा और कितना जल्दी किसानों के पास पहुंचा जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरशील होगा। और एक बात भी है कि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद, जैसे अभी इतने सारे जैसे पहले 20% फार्मर्स वर एनरोल्ड इन क्रॉप इंश्योरेंस, अभी 26% किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ये मॉनसून का डेटा यूज करते हैं, तो ये सेंटर बढ़ने से किसान को मुआवजा मिलने में भी सुविधा होगा।
3: बिल्कुल, एक फायदा ये भी यहाँ पर नजर आता है। चलिए, अब यहाँ पर कई किसान मौजूद हैं, उनके अनुभवों को भी हम जानते हैं और बात करते हैं इनसे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो मौसम पूर्वानुमान है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती किसानी में, उसके अनुसार? चलिए, काफी किसान है, किस तरीके से ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचती है, क्या कहना चाहेंगे?
7: मौसम की जानकारी जो पूछते हैं तो किसान कॉल सेंटर से पूछते हैं।
3: ठीक,
7: क्या इसके अलग भी कोई कॉल सेंटर ऐसा है जो मौसम की जानकारी पूछी जाए?
3: अच्छा, ये जानकारी आप लेना चाहते हैं, आइए पूछ लेते हैं। डॉक्टर रमेश बताएं।
4: ये है हमारा मौसम विभाग का भी फ्री कॉल वाला सिस्टम है, IVRS सिस्टम है, उसको और एक्सपेंड करेंगे ताकि जो हर डिस्ट्रिक्ट का जो फसल का अलग अलग फसल का जो है जानकारी उसी के अंदर जोड़ा जाए, ये सब हम प्रयास करेंगे इस साल में, ताकि किसान कॉल सेंटर के अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी हमारा स्टेट में जो मौसम केंद्र है उधर से भी आप जानकारी ले सकते हैं, इसका भी प्रावधान करेंगे हम।
3: बिल्कुल, तो ये एक अच्छी पहल होने जा रही है। लीजिए, कुछ आप भी कहना चाहते हैं?
8: 10-11 मार्च में अखबार में आई है कि भाई बारिश होने वाली है, कहीं हल्की कहीं ज्यादा, उसके साथ हवा भी चलेगी। तो कुछ लोग पानी दे रहे थे और मैं सुबह घूमने के लिए जा रहा, फिर शाम को जब टहलने लगा तो मैंने उनसे कहा भाई पानी मत दो, बारिश होगी, अखबार बता रहे हैं। और तो जिन्होंने पानी दे दिया, हमारे जई बहुत बढ़ रही, लड़का हमारा कर लगा पापा हम पानी दे दें, मैंने पानी मत देना, बारिश होगी अखबार बता रहे हो, मौसम बड़ा स्टीक बता रहे हो, जो अखबार में आते हैं उसी के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद में जब अगले दिन बैगरा तो धर के जो बारिश सब जो झाई सी चली ना, जिन्होंने पानी दे दिया उनके गेहूं सब लूट गए, उनका नुकसान होगा अगर मान जाते। मैं कह रहा हूँ उनसे भाई पानी मत दो,
3: जी
8: कम से कम ये तो देख लो दो दिन की बात है, दो दिन के बाद दे देना,
3: चलिए
8: अगर ना दो दिन में कुछ नहीं हो रहा। और जिन्होंने पानी नहीं दिया उनके खड़े हैं और ठीक पके हैं।
3: तो ये अच्छी बात है कि आपने जानकारी का लाभ उठाया।
8: जो वैज्ञानिक जो दे रहे हैं वो स्टीक बात दे रहे हैं, अखबार में जो आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है। अगर उस पर चले तो भाई चलिए, हमें उसका ज्ञान नहीं है लेकिन अखबार तो देखते हैं हम, उसमें देख लें मौसम क्या कह रहे हैं, तापमान ज्यादा है या बादल होंगे। तो मेरा मतलब ये, पहले तो हम ये अंदाजा लगाते थे, पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम 40 साल पहले बात कर रहा हूँ, चिड़िया रेत में नहा तो हम कह रहे बारिश होगी। ये अंदाजे थे लोगों के,
3: चिड़िया रेत में विज्ञान ने तरक्की की है तो उसका लाभ भी किसान ले रहे हैं। चलिए और बाकी किसानों के भी अनुभव जानते हैं यहाँ पे, जी बताएं अपने अनुभव के बारे में।
9: हाँ जी, हमको अनुभव ये है कि हम पहले जो काफी दिन पहले हम बारिश का अनुमान ऐसे लगाते थे जैसे कि हवा चलती थी तो उसमें हमारे बर्तन भी नमी आ जाती और पानी में भी हम टेस्ट जो है कुछ और ही हो जाता था। अभी वैज्ञानिक ने इतना हमको बता दिया कि हम अपनी टीवी पे भी देख लेते हैं और जो हम अखबार पढ़ते थे उसमें भी ये होना कि फलाने टाइम पे ऐसे बारिश होने वाली है, तो हम अपने पशुओं को और अपनी फसल पे ज्यादा ध्यान रखते हैं।
3: जी
9: ये हमने अंदाजा लगाया।
3: बिल्कुल, चलिए तो वक्त के साथ साथ आप लोगों ने भी काफी तरक्की की है। जी बताए।
10: देखिए जो जानकारी किसान को दी जा रही है, महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि सब किसानों के पास तो फोन भी नहीं है, सब लोग रेडियो से टेलीविजन का टाइम भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि खेती का जो काम है वो इस तरह का है कि उसमें टाइम टेबल महत्वपूर्ण नहीं है सबके पास में। एक बात ये सही है कि फोन के द्वारा मैसेज भेज दें, बच्चे हैं किसान के पढ़े लिखे बच्चे जो लगे रहते हैं उनसे हमें जानकारी हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि सरकार को जो अभी हमारे वैज्ञानिक साहब बात कर रहे थे रमेश सिंह जी कि हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कृषि सलाहकार अगर हम एक अपॉइंट कर दें तो वो जाकर के अगर किसानों को मीटिंग लेकर के उस चीज को बताएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा क्रांति होगी।
3: डॉक्टर रमेश कुछ कहना चाहेंगे आप?
4: या इसके बारे में दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। जो जब बारिश की सूचना अगर दी गई, अगर खरीफ सीजन में तो बारिश तो लगातार आती है, बट रबी सीजन में अगर बारिश की टाइम बारिश का अगर आने का संभावना दी गई, अगर बोरवेल से पंप करके फिर भी आप सिंचाई करेंगे पानी देंगे उसकी जो है खर्चा अलग से ऊपर नुकसान फसल का ऊपर जो होगा वो बताया है महोदय ने, उसके अलावा जो खर्चा जो कर रहे हैं वो भी बच सकता है।
3: जी,
4: पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक एस्टिमेट है 2014 में जो अवॉइड किया है इरिगेशन को बारिश की पूर्वानुमान के अनुसार, उससे लगातार 1400 करोड़ की कम खपत हुई है बिजली का, उतना फायदा तो फार्मर्स को मिला है। फ्री बिजली तो सरकार दे रही थी उधर, बट फिर भी सरकार को इतना तो बचत हुई है, सो अपनी हिसाब से इसका बेनिफिट भी सरकार को मिलेगी। अगर अपनी पंप सेट से चलाएंगे, अपनी बोरवेल का पंप से बिजली इस्तेमाल करेंगे, उसका भी बचत होगा, सो डबल बेनिफिट है उसमें। और दूसरा जो है कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार हम जो काम करने जा रहे हैं उसका यही है, वहां जो है किसान मेला हो, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, इन लोगों के साथ समन्वय करेंगे हम हर डिस्ट्रिक्ट के साथ, तभी उनकी जो हमारी जानकारी सबसे नीचे स्तर तक पूरा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को पहुंचाया जाए, यही हमारा ख्वाहिश है।
3: बिल्कुल डॉक्टर सिंह, कई बातें कई अनुभव के बारे में बताया यहाँ पर किसानों ने, कुछ आप भी उसमें जोड़ना चाहेंगे, ये बातें निकल कर आए
11: इसमें। जैसा कि नागर साहब ने पहले कहा था कि किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, और डॉक्टर रमेश जी ने भी बताया कि जैसे किसान मेला इस सब के थ्रू, तो ये भी एक सभी किसानों तक SMS पहुंचना और किसान उसका सदुपयोग करें, तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग आप कह लें चाहे फार्मर अवेयरनेस कह लें, किसानों की जागरूकता बढ़ाना बहुत बड़ा काम है जिसको कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिल के करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर किसान भाइयों की तरफ से तत्परता होनी चाहिए इसमें हिस्सेदारी लेने की।
3: बिल्कुल, सूचना क्रांति का अहम रोल है इसमें और इसका इस्तेमाल जो है वो किया भी जा रहा है। शांतन जी, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं जमीनी स्तर पर कि कितना जो है किसान वो जागरूक हुए हैं और क्या स्तर आपको नजर आ रहा है?
6: देखिए एक बात तो ये है कि जैसे साउथ वेस्ट मानसून का जो फोरकास्ट आता है वो जून में मानसून शुरू होता है, मगर मार्च तक मतलब अप्रैल में कम से कम किसान को पता लग जाता है। और पिछले 3 सालों में हम लोग देखे हैं कि अप्रैल में मतलब 2 महीने पहले किसान को पता लग जाता है कि इस बार बारिश कैसे होने जा रहा है। अगर मौसम विभाग की तरफ से सूखी फसलों के अनुसार जैसे रमेश जी ने पहले बताया उसका ज्यादातर जानकारी दिया जाए, लोकलाइज्ड फोरकास्ट दिया किया जाए कि यहाँ पे पल्सेस कर रहे हैं, अरहर कर रहे हैं, जो ऑयल सीड्स कर रहे हैं, तो उसमें लोकलाइज्ड फोरकास्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट और भी अच्छा मतलब सेग्रीगेटेड फोरकास्ट दिया जाए तो फिर किसानों को और भी उससे फायदा होने जा
3: बिल्कुल। नागर जी जैसा कि बताया यहाँ पे डॉक्टर रमेश ने कि किस तरह से बचत हो सकती है किसानों की, बचत होगी यानी कि मुनाफा बढ़ेगा, तो किसानों की आय को जो बढ़ाने का लक्ष्य है उस दिशा में भी ये एक अहम भूमिका सटीक पूर्वानुमान की है।
5: 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे,
3: बिल्कुल।
5: उसका उस आमदनी दुगनी करने का कोई मंत्र नहीं है, उस आमदनी दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री के ये प्रयास है और उन प्रयासों में एक ये भी है कि पूर्वानुमान सटीक बैठ जाए, सटीक बैठ जाए और उसकी जानकारी प्रत्येक किसान के पास पहुंचे, जो किसान खेती करता है उसके सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए तो निश्चित रूप से किसान की उपज भी बढ़ेगी, किसान खुद अपने आप संपन्न होगा और देश भी संपन्न होगा। मैं कहता हूँ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी तो अपने आप ही देश की तरक्की होगी।
3: बिल्कुल। तो शांतन जी आपका आकलन क्या कहता है, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी इससे, और खासतौर पर जिस तरह से इन्होंने बताया है कि जल संसाधन ये सीमित है हमारे पास, उससे किस तरह से उसका संरक्षण कर सकते हैं अगर मौसम पूर्वानुमान का हम सटीक तरीके से इस्तेमाल करें, ऊर्जा की जो खपत है उसे कम कर सकते हैं, ये सब बातें मायने रखती हैं।
6: जैसे 2014 में जब ठीक से बारिश नहीं हुआ था, 14 और 15 में और 16 में मानसून मोर ऑर लेस नॉर्मल था, उसमें एक साल में 15 और 16 में हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है 252 मिलियन से बढ़ के इस साल का अनुमान है 270 मिलियन टन तक जाने का। मगर ये ऑफ कोर्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा होगा, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी में एक रिवाइवल होगा, मगर हम लोग ये भी देखते हैं कि जिस साल बारिश अच्छा होता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किसान को फसलों का दाम उसके हिसाब से नहीं मिल पाता है, तो ये काउंटर इफेक्ट भी होता है। और लोकलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट्स तो है ही, मगर मौसम के पूर्वानुमान से मतलब किसान तो लाभ उठा ही रहे हैं
3: उसका। बिल्कुल। आइए और भी किसानों से यहाँ पे बात कर लेते हैं। जी जी जी।
7: जब से मौसम के बारे में पता लगा है तो हमको बहुत बड़ा फायदा हुआ।
3: अच्छा।
7: जैसे कि हम आलू लगाने ले गए थे अपना और तो थोड़ी घटा हुई तो मौसम बिगड़ा, तो हमने जो फोन मौसम विभाग वालों से पूछा, उन्होंने कि बहुत तकड़ी बारिश होने वाली है।
3: अच्छा।
7: आप अपने आलू वापस ले जाओ, इतनी तकड़ी बारिश हुई नहीं तो बर्बाद हो जाए तो बीज खत्म हो जाता। अब जैसे हमें पानी आलू में पानी लगाना तो हम देख रहे भाई मौसम खराब है पैदावार ना, तो बता देते हैं कि पानी मत दो, 2-4 दिन में 1-2 दिन में बारिश हो सकती है। तो इस विभाग से खुलने से हमें बहुत बड़ा किसानों को फायदा, लेकिन जानकारी हर किसान को नहीं हो पाती।
3: जी, जानकारी हर किसान को नहीं हो पा रही है, लेकिन जिन्हें मिल रही है उन्हें फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगी पीछे जो लोग बैठे हैं उनमें कोई अपने अनुभव के बारे में बताएं। जी,
12: अभी हमारे आलू बोते हैं तो मार्च में शुरू में हमने जब खुदाई लगनी थी तो मौसम के बारे में नेट पर देखा और देखने के बाद जब ये पता पड़ा कि 3-4 दिन बाद बारिश है तो जैसे हमारे कोई खेत ऐसे हैं बालू के हैं कुछ ऐसे हैं जिसमें पानी भर जाता, तो पहले हमें मौसम की जब जानकारी होगी तो हमने जो खेतों में पानी की संभावना ज्यादा थी हमने उनको पहले खोदा, तो मौसम से बहुत जानकारी होने से बड़ा काफी लाभ
3: हुआ है आपको भी।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
13: डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने गर्मी के बारे में बताया कि अभी कुछ पॉइंट करके बताया कि इतनी गर्मी ज्यादा होने वाली है,
3: जी जी।
13: क्या बरसात के बारे में बताओगे, आगे धान की फसल बोने वाली है कि बारिश कितनी होने वाली है या कितने दिन पहले अनुमान उसका लग जाएगा कि जिससे हम धान बोए ज्वार बोए या बाजरा बोए, ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
3: जी डॉक्टर सिंह, आप जवाब देना चाहेंगे इसके बारे में।
11: धान ज्वार बाजरा ये तो खरीफ सीजन के फसल हुए और इनके लिए बरसात की जानकारी अभी देना, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी करता है और उसमें जो मार्च तक के आंकड़े हैं वो पूरा पूरे ग्लोब से इकट्ठा किए जाते हैं और लगभग 10 से 15 अप्रैल के बीच में उसको प्रोसेस करके फिर क्या स्थिति बनती है पूरे देश के ऊपर, चार महीने जून से लेकर सितंबर के बीच में क्या स्थिति बनेगी बरसात की, अब 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में विभाग जारी करता है ऐसी भविष्यवाणी। उसमें आपको जरूर मैं ये थोड़ा आगाह करना चाहूंगा कि वो पूरे देश के लिए वर्षा है, ना कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, जैसे हरियाणा के ऊपर चाहे दिल्ली के ऊपर चाहे वेस्ट यूपी के ऊपर, ऐसा नहीं है। उसका अपडेट जारी किया जाता है जून के शुरू में, जून के शुरू में अपडेट और आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं 15 मई तक, तो उसका फिर से तैयारी की जाती है और विश्लेषण करके जारी किया जाता है। उसमें आपको छोटा क्षेत्र तो नहीं, बड़े क्षेत्रवार हिंदुस्तान के ऊपर और चार महीने के लिए फोरकास्ट दिया जाता है और जुलाई के लिए अलग से भी दिया जाता है।
3: जी चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताएं अपना नाम और क्या सवाल पूछना चाहते हैं।
14: नाम मेरा विनोद गुर्जर है। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। सभी किसान भाइयों की फसल जो गेहूं की आने वाली है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा अवगत कराएं। 2014-15 में किसान गेहूं से बर्बाद हो चुका है, तो इससे थोड़ा सा
3: प्रमुख फसल है ये और ऐसे में जानना बेहद जरूरी है। बताएं डॉक्टर।
4: अभी अभी जो है 6 और 7 तारीख के पास में एक वर्षा होगी, वो ज्यादातर वर्षा जो है हिल्स में ही होगी, जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में होगी, हल्की बारिश होगी पंजाब हरियाणा में, बहुत हल्की बारिश होगी, वो भी एक स्पेल होगी, वो भी 6-7 के बीच में, और उसके अलावा 10-12 तारीख जो अप्रैल तक संभावना नहीं है।
3: जी अब जो तापमान है उसमें वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, इसका असर क्या पड़ेगा गेहूं के उत्पादन पर?
4: वो तो अच्छी रहना चाहिए, तापमान जो है फसल पकने के लिए अच्छा माना जाता है। बारिश जो है उसकी जो हवा जो निकलती है बारिश के साथ वो आने की संभावना कम है, एक ही स्पेल की एक्सपेक्टेशन है 10 से 12 तक अब से लेकर, सो पूरा 14-15 दिन का पहले सूचना है ये, कम से कम 6-7 के बारे में 6-7 अप्रैल के टाइम पे एक छोटा स्पेल आने का है, ज्यादातर वो भी हिल्स में ही होगी, प्लेन में पासिंग शावर होगा।
3: जी जी जी बिल्कुल। चलिए और कोई सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे आप? जी जी
13: पूछना चाह रहा हूँ, पिछले साल गेहूं और भूसा दोनों इतने खराब हो गए, काले पड़ गए, तो अब जैसे टाइम आ रहा फसल कटने को, जैसे भाई साहब ने पूछी है, तो आप बता रहे 6-7 तारीख में बारिश हो सकती है, पिछली बार ऐसा हुआ ना, तमाम गेहूं गिर गया और वो काला पड़ गया, भूस भी बेकार होगा और अनाज भी बेकार हो गया
4: ना, उस समय तो भारी बारिश थी ना,
13: तो इसलिए हम ये पूछना चाह रहे हैं अब क्या तो कोई ऐसी स्थिति ना पैदा होगा, ये बात पूछनी चाह रहे हैं। बहुत पिटा पिछली बार,
4: अभी देखिए अभी अब से 10 तारीख तक आपको बता रहे हैं और 4-5 तारीख को बताएंगे 20 तारीख तक क्या स्थिति रहेगी, पूरा अप्रैल अंत तक तो चलता है आपकी हार्वेस्ट जो है वो देते रहेंगे, हर वीक आपको बताएंगे जरूर।
3: ठीक नागर जी यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं?
5: नहीं मैं तो बताना नहीं चाह रहा, मैं तो किसान चैनल से और जो किसानों ने क्वेश्चन किए हैं मैं सबसे बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और सटीक जवाब दिए हैं, और मैं समझता हूँ ये ही किसान नहीं, जब ये प्रोग्राम को और पूरे देश के करोड़ों किसान देखेंगे तो वो लाभान्वित होंगे। मेरी तो सबसे यही निवेदन है सभी देश के किसान भाइयों से कि वो सब किसान चैनल को अवश्य देखें और फसलों के लिए सबसे अच्छा जो सटीक पूर्वानुमान आ रहा है उसका फायदा उठाएं।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद किसान चैनल को सराहना इसकी करने के लिए। जी
15: अगर जो मौसम विभाग से अगली फसल बोने तक मई में कोई ऐसा जवाब मिल जाए कि मौसम इस तरह का रहेगा इन 4 महीनों के अंदर, तो किसान अपनी फसल बदल के बो सकता है। कम बारिश रहती है तो कुछ ऐसी जमीनें हैं जहां पर धान उगा लेते हैं लोग ज्यादा बारिश में, और उनको ये पता लग जाता है मौसम विभाग से कि बारिश कम होगी, तो वो अपनी फसल चेंज करके कोई भी फसल उगा करके अपना जीवन निर्वाह करने का काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बारिश कम होने से जैसे धान की फसल नहीं उगा पाती है, ज्यादा खर्चा आता है, इतनी पैदावार भी नहीं हो पाती है और लास्ट में आकर के वो फसल भी नष्ट हो जाती है। तो इसलिए मेरा डॉक्टर साहब से निवेदन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मई तक मौसम विभाग की पूरी जानकारी हो जाएगी या नहीं?
4: जी, पहला जो है अप्रैल की 15 और 20 के बीच में आएगा, जून से अगस्त सितंबर तक कैसा रहेगा, और जो मई की एंड में जो हम अपडेट देंगे ना उसका, वहाँ हम बताएंगे देश का किस क्षेत्रों में कम की संभावना है, किस क्षेत्रों में सामान्यता बारिश की संभावना है, किस क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा आने की संभावना है। ये जो है फर्क जो है हम लाएंगे मई की अंत वाला असेसमेंट में, वो भी जून से अगस्त सितंबर तक की 4 महीने की होगी अपडेट। उसके बाद भी हर एक महीने का हम अपडेट देते रहेंगे, उसके बाद जो अभी तक नहीं दे रहे थे हम इस बार से देने का प्रयास कर रहे हैं।
3: जी, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी
7: डॉक्टर, जैसे अब हवा चल रही है एक हफ्ते से, तो ये हवा कब तक की उम्मीद है जिस तेजी से चल रही है, जिससे फसल हमारे जैसे पेटा है, मिर्च है, बैंगन है, उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, कब तक की है?
4: अभी ये तो कम हो जाएगी, अभी बारिश हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उसकी वजह से ये प्लेन्स में हवा चली है। जब वो बारिश खत्म होने वाली है फिर 6-7 को और एक बार आएगी। अच्छा। तब उसके बाद बढ़ सकता है, बीच में अब से 6 तारीख तक कम हो जाएगी।
7: ठीक है।
3: प्राइवेट बॉस, ये फोरकास्टर की तरफ से एलनीनो की भी आशंका जताई गई है, ऐसी कोई आशंका है क्या?
4: एलनीनो जो है 4 महीने का बारिश का ऊपर असर करता है। एलनीनो अकेला फैक्टर नहीं है इंडिया का जो मानसून का वर्षा है उसको असर करने का। मानसून का वर्षा जो है असर होता है 3-4 ग्लोबल फैक्टर से। एक हमें मेडन जुलियन आइसोलेशन बोल के कहते हैं, और दूसरा इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है, ईस्ट साइड का वेस्ट साइड का इंडियन ओशन डाइपोल उसको कहते हैं, ये एलनीनो एक फैक्टर है। एंड देन पूरा यूरेशिया में जितना स्नोफॉल हुआ है अभी जो है मानसून से पहले का विंटर सीजन में, वो भी एक पैरामीटर होता है। एंड देन देश का जो अभी जो गर्मी पड़ रही है, पूरा गर्मी अभी जो गर्मी अप्रैल मई जून मार्च से लेकर मानसून आने तक, मानसून नॉर्थ इंडिया में जो मानसून आएगी जून एंड में और जुलाई की मिडिल तक पूरा राजस्थान तक कवर करती है, तब तक तो इधर गर्मी रहेगी। जो ये गर्मी से क्या होगा, लैंड का और ओशन का जो फर्क है टेम्परेचर का वो ज्यादा होता है। जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वो जो है फर्क जो है टेम्परेचर का डिफरेंस जो है लैंड का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का और समुद्र का, जितना ज्यादा फर्क होगा उतना स्ट्रांग मानसून करंट आएगा। ये सब 4-5 फैक्टर है, ये सब देख के हम 4 महीने का जो बारिश का पूर्वानुमान है ये करते हैं। इसलिए सिर्फ एलिनो के ऊपर डिसाइड होकर पूरा पूर्वानुमान कभी नहीं बनता है, ये 4-5 फैक्टर कंसिडरेशन करके करता है। बट एलिनो जो है बहुत कंट्रीज के लिए सोल वेरिएबिलिटी देने का क्षमता रखता है, बारिश के लिए इंडिया के लिए ऐसा नहीं है।
3: ऐसा नहीं, ठीक है। शांतन जी, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, नागर जी आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।
6: मेरा एक सवाल है रमेश जी से, जैसे प्राइवेट फोरकास्टर्स ऑलरेडी एक फोरकास्ट दे चुके हैं जून टू सेप्टेम्बर साउथ वेस्ट मानसून के लिए, तो मतलब मॉडल्स मैं समझ सकता हूँ कि आप IMD और प्राइवेट फोरकास्टर्स जो मॉडल्स यूज करते हैं क्लाइमेट मानसून प्रेडिक्शन का वो अलग है, मगर ये 20 दिन पहले दे देते हैं IMD को, क्यों ऐसा क्यों है कि 1 महीने बाद IMD का फोरकास्ट आएगा पहला फोरकास्ट?
4: ऐसा जो है उनका जो है, अभी दिसंबर में भी हम 9 महीने के लिए मॉडल चलाते हैं, हर महीना जो है हम भी मॉडल चलाते हैं अगले 9 महीने के लिए। ऐसी देखेंगे तो दिसंबर से जो मॉडल चलाया हमने वो भी हमारा अक्टूबर तक प्रेडिक्शन है, उसमें भी जून जुलाई अगस्त सितंबर है। सिमिलरली जनवरी में जो चलाते हैं वो भी 9 महीने नवंबर तक चलाते हैं, बट उसकी जो एनसेम्बल फोरकास्टिंग बोल के कहते हैं हर महीने का 4-4 दिन का गैप में हम मॉडल चलाते हैं अगले 9 महीने के लिए। सो एक सिमुलेशन से हम असेसमेंट नहीं बनाते, मल्टीपल सिमुलेशन से बनाते, उसका सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस असेस करते हैं, उसके साथ साथ मार्च के अंत तक ग्लोबली क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हुआ, जैसे अभी बोला यूरेशियन स्नो कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च तक जितना स्नोफॉल हुआ पूरा यूरेशियन कॉन्टिनेंट में दैट हैज ए स्ट्रांग बेयरिंग ऑन मानसून। सो इसीलिए ये सब ग्लोबल पैरामीटर्स भी मॉनिटर करनी है, उसके साथ साथ हमारा सिमुलेशंस भी करनी है। पब्लिक डोमेन में हर एक का, अमेरिका का मॉडल भी अवेलेबल है जनवरी से जून जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, फरवरी मार्च लाइक दैट, हर महीने का बेस्ड रेनफॉल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो जो है पब्लिक डोमेन का इन्फॉर्मेशन लेके अपना असेसमेंट करके वो सामने ला रहे हैं, बट हम जो है पूरा ग्लोबल पैरामीटर्स मॉनिटर करेंगे एंड रोबस्टनेस ऑफ द सिमुलेशंस को असेस करेंगे, उसके बाद सही जानकारी देने का प्रयास हम करेंगे। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है आईएमडी की 6000 की मैन पावर है, हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी 200 लोगों की साइंटिस्ट है एंड देन नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग बोल के नोएडा में सेक्टर 62 में है, वहाँ 70-80 वैज्ञानिक जो है सिर्फ मॉडलिंग के ऊपर ही है। ये इतना जो नॉलेज बेस है इसका तो मुकाबला प्राइवेट ब्रॉडकास्टर का फोरकास्टर का नहीं हो सकता। जो हम जो देंगे बहुत रोबस्ट वेल कैलिब्रेटेड असेसमेंट देश को देंगे, हमारा मैंडेट वही है। हम डिले जरूर
3: इसका असर दिख भी रहा है कि जो भविष्यवाणियां हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की वो सटीक साबित हो रही है। जी नागर जी बताएं।
5: हाँ, मैं डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ, जो किसान भी पूरे देश का पूछना चाहेगा कि कितने किलोमीटर तक आपकी सटीक मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिल जाती है यदि SMS करता है किसान, तो उस कितने किलोमीटर तक आप बता सकते हैं या पूरे एक ब्लॉक की बता सकते हैं या पूरे जिले की बता सकते हैं, उस विषय में किसानों को थोड़ा लाभान्वित करने का कष्ट करें।
4: अभी जो है कंपटीशन होता है हमारा 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर ग्रिड पे
5: जी,
4: हाँ वो जो है उस स्केल पे हम फोरकास्ट बता सकते हैं। 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट से नीचे ही होगा, हो सकता है ब्लॉक से थोड़ा बड़ा हो कुछ
5: ब्लॉक समझिए
4: वो 12 से 12 तक की हमारा क्षमता है। अब जैसा हमारा कंप्यूटर्स आएंगे उसको और फाइन रेजोल्यूशन में ले जाएंगे। अब अगले एक दिन के लिए 2 दिन के लिए अगर आपको चाहिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन वो 3 किलोमीटर में भी देने की प्रयास हम कर रहे हैं।
5: अच्छा।
4: बट वो 2 दिन से ज्यादा नहीं होगा उसका।
5: अच्छा।
4: उसकी जो टाइम है
5: ये भी बहुत बहुत अच्छी जानकारी।
4: वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है बट वो कोशिश करेंगे हम अगले 2-3 दिन जो है 3 किलोमीटर की स्केल में हम दे, उसके बाद जो है 12 किलोमीटर वाला स्केल में दे, इस तरह की प्रयास मिक्स करके देने का प्रयास भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। बट वो जैसा सक्सेस मिलेगा उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा ना हमको, पिछले मानसून को चलाना है उसके बाद वेरीफाई करना है, उसका स्किल एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, ये सब जारी है। हम करने की चेष्टा तो कर रहे हैं, हम जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है वो सर्विस के लेवल में लाएंगे
3: नहीं। बिल्कुल, आपका प्रयास सराहनीय है और इसी तरह से और विज्ञान प्रगति करते जाए किसानों का भी लाभ इससे उन्हें भी होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं, किसान काफी देर से सवाल पूछना चाहते हैं। जी
16: डॉक्टर साहब, मैं देवेंद्र त्यागी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो बिजली पड़ती है कड़कती है इससे जान माल का काफी नुकसान होता है, भैंस पे भी पड़ जाती है, आदमी इंसान पे पड़ जाती है, क्या इसके बारे में इससे पढ़ने से पहले कोई जानकारी मिल सकती है जी? क्या
4: यही है, इसमें भी वो आंधी से रिलेटेड ही है ये भी। आंधी में बारिश नहीं होती, इसमें बारिश के साथ थंडर भी होता है और लाइटनिंग डिस्चार्ज भी होती है, ये सब जो दोनों रिलेटेड चीजें हैं, दोनों पे अब रिसर्च चल रही है।
1: किसान साथियों, हम आशा करिए हैं कि यो आज नो कार्यक्रम जो हत्यू तीन माँ आप घनी खरी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें हमली है और तमुने इन्हीं जानकारी थी लाभ मिलो है। तो किसान भाइयों, आज ने जो अपनी चर्चा हती मुख्यतः आप जो चर्चा करी है पानी नी ऊपर चर्चा करी, अपना मौसम ना ऊपर चर्चा करी है, घना खरा किसान भाइयों भी अपना अपना सवाल पूछा है, तो अलग अलग प्रकार की जो मौसम की जानकारी जो अपन अपना रेडियो ना माध्यम थी अपन मळे है, अपन टीवी कार्यक्रमों ने माध्यम थी अपन मळे है, बाकी समाचार पत्रों ने माध्यम थी अपन मळे है, आजकल सोना मोबाइलों में भी अपनो जो मौसम की जानकारी अपन मळी रही है, तो इन्हीं पर आप जो पेलखाना मौसम में हमने ना मौसम में घणो फरक आयो है, केम के अगर आप मोबाइलों में देखी आप पूछी से सोना की नी सोरा देख खरो पानी आ रो कि नहीं आ रो, तो इन पर घनी खरी जानकारी जो पेलखी हती ना हाव हती तीन में घणो अंतर आ रो कि अगर थोड़ी सटीकता आ रही है, तो किसान भाइयों कहीं ना कहीं आप जो मौसम की जानकारी मिली रही है इन जानकारी थी आपको घणो फायदो मिलो है, केम के आप जानिए है कि मौसम थी अगर जो आप धान बार तो आप हुकाड़िए वगर हुकाड़ेलू धान आप घेर में घाली नहीं सकी, तो अगर जो भी धान आप हुकाड़ियों है तो तीन मैतू गालवा हारो जो अपनों कसरू कुट्टू है तो डगरान खवाड़वा हारो अगर तिना ढंग थी आप अवेर नहीं करिया तो त्यू खा त्यू सारू है त्यू उल्लई जा है तो तीन फिर डगरा खाई नहीं सके, तो कहीं ना कहीं आप किसान भाइयों ઘણો નુકસાન થઈ જાય છે. તેથી વસવાહરૂ મોસમની જાણકારી જે આપણને મળી રહી છે એ ઘણી ખરી ફાયદામંદ જાણકારી છે. એ વાત કિસાનભાઈ બી જાણે છે અને એની પર આગળ બી ચર્ચા થાય. અગર થોડી હજુ એન પર જો સંભાવના હે જો આપણને મળે હે તેમાં થોડો હમણે 19-20 નો ફરક હે, લેકિન અગર થોડોક હજુ એન પર જો રિસર્ચ ચાલી રહી હે તેની બાદ થોડી હજુ આપણ સટીકતા મળવા લાગી જાય. તો કિસાન ભાઈઓ કંઈ ના કંઈ મોસમની જાણકારી થી આપણું આપણા ફસલને બી વસાડી શકીએ, આપણું આપણી ફસલમાં કંઈની ફસલ લગાડવી હે તેના બારામાં બી આપણું જાણકારી લઈ શકીએ. તો આજના એના કાર્યક્રમમાં બસ એટલું છે તમારથી. ફેર કાલ મુલાકાત થાય એના સમય પર. એટલે બનેલા રહો અમારી હાથે રેડિયો ટાટા ભીલ 90.8 FM ની હાથે જાવવાની આવાજ પર.

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे तनुषा को आपके अपने जिंदगी अनप्लग्ड के एक और खास स्पेशल प्रोग्राम में, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। आज की हमारी मेहमान की जिंदगी में संस्कारों की सादगी, शिक्षा की गहराई, कला की खूबसूरती, ज्योतिष का अध्ययन और आध्यात्म का सहारा सब एक साथ नजर आता है। सागर मध्य प्रदेश से शुरू हुआ उनका सफर, सरोज चौबे जी पिता की पोस्टिंग्स के साथ साथ अलग अलग शहरों, कल्चर्स और एक्सपीरियंसेस से गुजरी। BSc, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, BEd, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास्टर्स इन टीचर्स ट्रेनिंग और MA ज्योतिर्विज्ञान जैसे कई एकेडमिक जर्नीज के बाद उनकी जिंदगी ने उन्हें एक ऐसी कठिन परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। जीवन साथी को अचानक खो देने के बाद बच्चों की परवरिश, टीचिंग, ट्यूशंस और ज्योतिष की पढ़ाई को साथ लेकर वो आगे बढ़ी। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन उनके हिसाब से महादेव की कृपा, परिवार और मित्रों का साथ और अपने अंदर की आस ने उन्हें हमेशा संभाला। आज वो काउंसलिंग और ज्योतिष मार्गदर्शन के साथ राइटिंग, पेंटिंग और अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म सांझ सोल के जरिए अपने जीवन दर्शन और अनुभव लोगों तक पहुंचा रही हैं। और उनकी जिंदगी का एक खूबसूरत विश्वास है, अगर खुदा नहीं है तो जिक्र क्यों, और अगर है तो फिक्र क्यों। चलिए बहुत गर्म जोशी के साथ, पूरे दिल के साथ स्वागत करते हैं सरोज चौबे जी का। तो सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड के एक और स्पेशल प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं मैम आप?
2: मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ तनुषा, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी हियर ऑन SN रेडियो। मैं आपकी और पूरी टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम में आने के लिए।
1: जी बिल्कुल मैम, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आप इतनी हाईली एजुकेटेड महिला हैं, आपसे बात करके मुझे डर भी लग रहा है कि क्या पता कहाँ अटक जाऊँ, तो कोई भूल चूक हो तो माफ करिएगा। जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया, आपने इतना सब कुछ किया है और इतनी हाईली क्वालिफाइड आप एक इंडिविजुअल हैं, और लाइफ को किस तरह से आपने एकदम फुल ऑन हेड ऑन लिया है विद ग्रेस एंड विद डिग्निटी, तो वो काबिले तारीफ है। इसी से हम शुरू करेंगे हमारा पहला सवाल। मैम, आपने मुझे बताया कि आप बहुत बहुत शहरों में रहे, बचपन से ही आपके फादर फोर्स में थे और कई सारे शहरों को आपको बदलना पड़ा, तो जहां जहां आप गए वहां वहां का कल्चर अपनाना पड़ा, बार बार चेंजेस हुए। आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि कई बार ये जो बदलते शहरों ने आपको सिचुएशंस और लोगों के बारे में समझाया, जो नजर दी, वही शायद आपको हेल्प किया लाइफ में और किसी तरह से उसने आपको चेंज किया कि आप जीवन के हर सर्कमस्टेंस के लिए हमेशा रेडी हैं? किस तरह से ये एक्सपीरियंस रहा और कैसा रहा आपका बचपन?
2: एक्चुअली मेरे फादर रेंजर थे, तो जब शुरुआत हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हर 3 साल में हम लोग जगह बदलते थे और कई छोटी बड़ी शहरों में हम रहे, छोटे शहरों में भी रहे, बड़े कस्बों में भी रहे। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात थी कि हम जब जाते थे तो नई नई जगहों में, नई सिचुएशंस में जब रहते हैं तो जब बचपन से आप उस सिचुएशन में रहते हैं तो आप एडेप्टेबल हो जाते हैं, उन कंडीशंस को आप अच्छे से समझ लेते हैं, नए लोगों के बीच में, नए कल्चर को समझने में, और आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपको लोगों को समझने की एक शक्ति आ जाती है। तो जो जीवन में जो परेशानियां बाद में कभी आई और मुझे लगता है कि उनको जो फेस करने में उस बचपन से जो आप सीखते हुए आते हैं उस चीज ने बहुत हेल्प की है। अचानक कभी किसी अनफेवरेबल कंडीशंस में आप फंस जाते हैं तो आप उन चीजों को समझ लेते हैं या बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। और कई कल्चर्स आप सीख लेते हैं, कई लैंग्वेजेस सीखते हैं, कई लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, तो उन चीजों ने आपको, मतलब मुझे स्पेशली उन चीजों में बहुत सिखाया। हम सब छोटे भाई बहन थे उन जब में रहते थे और उन त्योहारों को, अलग अलग त्योहारों को हम लोगों ने मनाया, तो अब मैं आज सभी त्योहार मना लेती हूँ, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, तो वो चीजों को मैंने बहुत अच्छे से सीखा है।
1: और बात है जी, क्या बात है मैम, बहुत ही विविध रंग और बहुत अलग अलग विधाओं में आप पले बड़े, बहुत सुंदर एक बचपन रहा। आई थिंक सब बच्चे ये बचपन डिजर्व करते हैं, क्योंकि इसी से हम सीखते हैं कि हमारा कल्चर तो अच्छा है, वो तो है ही, बट दूसरों के कल्चर के साथ को भी कैसे अपनाना है और कैसे उसकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, और उस सब में खुश रहना है, लोगों को समझ के आगे बढ़ना है। टॉलरेंस कितना सिखाता है ये लोगों के साथ, तो बहुत सुंदर भावना ऑफ टॉलरेंस। और इसी से मेरे को ये लगता है कि इस तरह का जब आपका बचपन गुजरा, तो मेरा अगला सवाल भी यही है कि जब आज आप काउंसलिंग करते हैं, आप ज्योतिष का गाइडेंस करते हैं, तो ये जो बचपन से आपकी लोगों को समझने की, जो परखने की जो एक क्वालिटी थी, उसने क्या आपको बहुत हेल्प किया? और आपके हिसाब से दूसरों के मन को समझने के लिए खुद के मन को शांत रहना कितना इम्पोर्टेंट है? किस तरह से आपकी ये जर्नी रही कि लोगों को समझना और लोगों को इतने अच्छे से काउंसिल कर पाना, उनको ज्योतिषीय ज्ञान दे पाना, वो कैसे होता है?
2: क्या है तनुषा जी की, जब आप ज्योतिष ने तो हेल्प की है, लेकिन मैं शायद अपने आप को मानती हूँ कि मुझ में भी वो, हर इंसान में अपनी क्वालिटी होती ना दूसरों को अंडरस्टैंड करने की, या दूसरों को बिना जज किए आप उसको सुनना और इन चीजों को समझ पाना कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा, उसके इमोशंस को समझना, अपने आप को उसकी जगह रखना। कई दफे क्या होता है, कई लोग आपके पास आते हैं तो वो अपनी कुछ समस्या सुनाते हैं, परेशानी सुनाते हैं, तो कई बार वो सुनाने के लिए भी होता है, सुनाना भी, आप वो किसी ऐसे को सुना दे जो उनकी उस दुख को, तकलीफ को सुन लेना, वो भी कई बार कम हो जाता बिना जज के हुए। आप उसको जज ना करें और उसको सुनते जाए, सुनते जाए, कई बार आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको थोड़ा सा आंसर दे, वो एक बहुत जरूरी, तो वो उन भावों को समझना, क्योंकि जब आप अपने आप को, मैंने चूंकि खुद ने भी बहुत झेल लिया है, टफ सिचुएशन से निकली हूँ, तो मैं लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। और ये क्योंकि कई बार कई लोग आपके पास जो आते हैं वो सोल्यूशन के लिए नहीं आते हैं, वो समझना बहुत जरूरी होता है, हर बार आप वो सोल्यूशन के लिए नहीं आते हैं, वो चाहते कि उन्हें कोई समझ ले। तो एक ही चीज होती है कि हम उनके स्ट्रगल को समझें, और इन सब के लिए स्पिरिचुअल होना, और आप अच्छी चीजों को पढ़ रहे हैं, अच्छी चीजों को समझ रहे हैं, तो आप अपने आप को उतना स्ट्रांग बना लेते हैं, और दूसरों के मनोभावों को बहुत अच्छे से समझ के आप उन्हें काउंसिल कर सकते हैं। और ज्योतिष एक बहुत अच्छा गाइड करता है, क्योंकि हम जब ज्योतिषी उसमें पढ़ते हैं तो ज्योतिष आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन देता है आपको समझने के लिए कि क्या करना, बिल्कुल ये वाली चीज रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा मैम आपने, ज्योतिष सच में एक मार्गदर्शन देता है, ज्योतिष के नाम में ही ज्योतिष है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि कई बार इंसान सिर्फ ये चाहता है कि मुझे देख ले कोई, मुझे सुन ले कोई और मुझे समझ ले कोई, बिना जज किए, बिना अपना ओपिनियन डाले अपने मेरे ऊपर, और वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आपको बहुत कंग्रेचुलेशन है कि आप बचपन से ही ऐसे रहे। आई थिंक अगेन मैं उसी पे जाना चाहूंगी कि जो आपकी बचपन की परवरिश थी अलग शहरों में अलग लोगों के साथ, उसने आपको टॉलरेंस भी सिखाया और उसने आपको नॉन जजमेंटल पर्सन भी बनाया। तो बहुत ही
0: खूब आपकी यू नो बचपन रहा। मैंने जैसे कहा कि आई विश हर बच्चे को ऐसा एक्सपोजर तो हो, भले आपका पूरा बचपन नहीं बट कुछ एक टाइम आपको एक्सपोजर हो जब आप अलग लोगों से मिले, उन्हें जाने और उनके प्रति टॉलरेंस पैदा करें। तो बहुत सुंदर मैम आपसे बात हो रही है। इसी बात के बीच में हम सुनेंगे आज का आपका पहला फरमाइशी गीत। आप ही बताइए आपको सबसे पहले कौन सा गाना सुनना है।
2: मैं सबसे पहले जो गाना सुनना चाहूंगी वो है जीवन से भरी तेरी आंखें। वो भी इसलिए क्योंकि इससे मेरी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हैं। ये मैंने अपने पति से जो उन्होंने मुझे सबसे पहली बार जो सॉन्ग सुनाया था वो यही था। इससे मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव है।
0: क्या बात है। एक दो लाइन गुनगुनाना चाहेंगे या अभी या बाद में कभी?
2: ठीक है
0: चलिए सुनते हैं जीवन से भरी तेरी आंखें फिल्म सफर।

0: खूबसूरत गीत है ये। मैं जितनी बार इसे सुनती हूँ उतनी बार मुझे लगता है कि ऐसे कौन लिख सकता है और किसके लिए लिख सकता है आज के जमाने में। खूबसूरत गीत मैम। जाने से पहले आपने जीवन साथी की बात की थी, आपने बताया कि सर ने आपके लिए पहला गीत गुनगुनाया था, डेडिकेट किया था, तो उसी से मैं इस पे आना चाहूंगी। आई डोंट नो अगर आप इसके बारे में खुल के बात करना चाहेंगे, बट मैं चाहूंगी कि आप करें सो दैट आपका पेन, आपका ग्रीफ थोड़ा कम हो, हम सबके साथ बटे। तो जब आपने सर को खोया, वो क्या एज थी, वो क्या मंजर था उस टाइम, किस तरह से आपके ऊपर जिम्मेदारी आई, ट्यूशन, टीचिंग, सब कुछ किस तरह से आपने संभाला, और उस समय ऐसी कौन सी चीज थी जिससे आपने टूटने से जिसने आपको रोका, क्या था वो?
1: देखिए, जीवन में कई बार जो ये दौर आते हैं आप कभी भी तैयार नहीं होते, वो एक शाम, अचानक वो शाम आई जिस दिन मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए और हम लोग चाय पी रहे थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, और ऐसी तबीयत भी खराब नहीं होती कि मैं समझ पाती उस चीज को, और वो अपने एक दोस्त के साथ हॉस्पिटल तक गए, मैं घर पे ही थी, और आधा घंटे के अंदर मुझे कॉल आता है कि आप हॉस्पिटल आई, उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, और मैं जाती हूँ बिल्कुल ये बिना सोचे कि वो मुझे कुछ ऐसी खबर मिलेगी। तो मतलब इतना सडन था वो, तो वो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए मृत्यु के हिसाब के बराबर तकलीफ थी। लेकिन उस समय सिर्फ मैंने बहुत ही बड़ा, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मेरे लिए वो मृत्यु ही थी मेरी, लेकिन जीना पड़ा क्योंकि मेरे दो बच्चे थे, बेटी मेरी 10th में थी, बेटा मेरा फर्स्ट ईयर में था। तो भगवान आपको कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी वो डोर देके जाता है कि आपको उसको पकड़ के आगे बढ़ना होता है। तो वो वाला टाइम था, और ठीक है, सभी लोगों का साथ रहा परिवार का
0: जी।
1: तो, और उसी दौरान फिर मतलब मैं ट्रांसफर हुई वहां से, मैं जहाँ जिस शहर में हम रहते थे वहां से मैं इंदौर आई दिल्ली से बच्चों के लेके, और उनकी पढ़ाई कराई, और मैंने फिर टीचिंग करी, मैंने टीचर हो गई थी, मैं टीचर थी, इंग्लिश पढ़ाती थी, मैंने फिर इंदौर में पढ़ाई की, पढ़ा रही थी बच्चों को। जब बेटी 12th में आई तब मैंने टीचिंग छोड़ी, फिर मैंने ट्यूशंस ली उसके बाद, चूंकि मुझे खुद पढ़ने का बहुत शौक था तो फिर ज्योतिष पे मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने ज्योतिष में MA किया, उसी दौरान पढ़ाई भी करी, ट्यूशन भी पढ़ा रही थी और बच्चों के साथ भी लगी थी। तो बात यह है कि जितना अंधेरा होता है ना, शायद मेरे को लगता था ही चमकते हैं वो वाली बात। और कहा जाता है ना कि द सोल वुड हैव नो रेनबो इफ द आईज हैव नो टीयर्स, तो ये वाला हिसाब था कि मेरी अपनी आत्मा भी उस चीज के लिए थी। पर यह है कि तपिश जितनी ज्यादा थी आप उतना निखरते हैं, ये वाली चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं।
0: बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं डायमंड भी ऐसे ही तराशा जाता है और सोना भी ऐसे ही बनता है, ऐसे ही चमकता है। और आपने बहुत खूबसूरत लाइन कही कि द सोल विल नॉट हैव अ रेनबो इफ द आईज डोंट हैव टीयर्स। इट्स सो ब्यूटीफुल मैम। बहुत ही सुंदरता से आपने अपनी लाइफ लीड की है, जैसे मैंने कहा था, हिम्मत और डिग्निटी के साथ, और आपने सिर्फ निरंतर अपने आप को बढ़ाने की, ग्रोथ की तरफ अपने आप को चैनलाइज किया। जो भी हुआ, सब कुछ होने के बाद भी मैं वो मंजर सोच सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब उससे पहली बार बात की थी तो मैंने बताया था कि आई हैड द सिमिलर एक्सपीरियंस विद माई फादर, ही लेफ्ट अस वेरी अर्ली एंड माई मदर वॉज जस्ट विथ, हम दोनों के साथ थी वो, तो उनका भी ऐसा ही था, लव मैरिज थी तो उनको लगा कि बस अब सब खत्म, बट देन ऑफकोर्स उन्होंने भी हम दोनों को देखा और आगे बढ़ी। तो आप जैसी महिलाओं, मेरी मामा जैसे महिलाओं को सल्यूट है, सलाम है, और आप लोग रियल एग्जांपल्स हैं वुमेन एम्पावरमेंट के, बाकी सब तो बातें हैं और झंडे हैं। तो जी
1: मैं एक इंस्टाग्राम पे, मैं अपने एक पेज पे मैंने जैसे बताया था कि मैं आवाज देती हूँ कविताओं को, खुद भी लिखती हूँ, तो उससे रिलेटेड मैं एक कुछ बोलूँ या पढ़ के सुनाऊँ?
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, और उस पेज का नाम भी बताएं ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो उसे फॉलो कर सकें।
1: बिल्कुल, उस पेज का नाम है सांझ सोल, और जो मैं इससे रिलेटेड, अच्छी की भी बात चली तो मुझे याद आ गया कि मैंने एक कविता इस पे भी पढ़ी थी, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: इतना मजबूत बना देता है कि फिर उसे किसी के जाने का या कुछ खोने का डर नहीं रहता है।
1: क्या बात है मैम, आंसू आ गए। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, इनको आपने जिया है। मैं इसको मतलब एक एक शब्द को फील कर सकती थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर मैम। सांझ सोल इंस्टाग्राम पे प्लीज जो हमारे लिसनर्स हैं, जो अभी हमें सुन रहे हैं, वो सरोज चौबे जी को जरूर फॉलो करें। मैंने ये चैनल फॉलो किया है, इसकी कुछ रील्स देखे हैं। बहुत खूबसूरत कंटेंट है, सिंपल कंटेंट है, बहुत दिल तक उतरने वाला कंटेंट है। तो प्लीज सांझ सोल को इंस्टाग्राम पे सर्च करें और फॉलो करें।
0: थैंक यू
1: जी। आगे चलते हैं मैम। आपने हमने हमेशा बताया है कि जो आपके जीवन में कठिनाइयां आई, परिस्थितियां रहीं, वो सब एक अग्नि परीक्षा थी। तो आप इस अग्नि परीक्षा को कैसे जीवन में जीवन से जोड़ते हैं? आपके लिए किस किस तरह से जो जीवन की प्रॉब्लम्स आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें वो ताकत देने के लिए आती हैं, जो शायद हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अग्नि परीक्षा, जैसे आप कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा ही है, और उस दौर से निकलना जिस मतलब इतना कठिन है और इतना अनएक्सपेक्टेड चीजें रहती कि आप उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो उससे निकलने में देखिए कई चीजें होती हैं कि आपको अपने परिवार के साथ वो इतनी चीजें, जो परीक्षा का दौर होता है ना, वो आपको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, कई स्तर पे आपको परखता है। और उस दौर में से आपको निकलना, और वो चीजें आपके साथ होती हैं जब आप कठिन परिस्थिति में होती है ना, तब समय आपके साथ नहीं होता, कहते ना, आपको ही वो रास्ता चुनना होता है, आप ही को वो चीजें लेनी होती हैं कि हमें क्या लेना है। हाँ, बहुत दबाव में आप रहते हैं, लेकिन आपको बिना जताए हुए, हंसते हुए उन दौर से निकलना पड़ता है। और कई चीजें बदलती हैं समय के हिसाब से, लोग भी बदलते हैं, स्थितियां भी बदलती हैं, पर शायद वो अपन ही मान के चलिए कि शायद मैं चूंकि ज्योतिषी उससे देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये प्रारब्ध है और हमें उस दौर से निकलना है। और प्रारब्ध जो है वो आया है, उसमें हमको सामना कैसे करना है, ये हमारी फ्री विल होती है कि क्या चुनना है, क्या नहीं चुनना है। तो मुझे लगता है कि हर परीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी हमें तोड़ना चाहती है, कभी कभी वो हमें हमसे मतलब मिलाने आती है, वो हमें ये बताने आती है कि हमें कितनी ताकत है, हम उस सिचुएशन को कैसे फेस कर सकते हैं। तो आप सब चीजें सीखते हैं, सहनशीलता सीखते हैं, विनम्रता सीखते हैं, लोगों से को जानते बूझते हैं, आप जानते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या हैं, लेकिन बिना जताए हुए आप उनके मुताबिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ समय आपके साथ नहीं है, ये मान के चलिए।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो वो वाली अग्नि परीक्षा जरूर हम सीखते हैं, वो आपको जीने का सलीका सिखा के चले जाते हैं, ये चीज है।
1: बिल्कुल, बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है, बट सही है, अग्नि परीक्षा ही होती है। वो हर एक कदम, हर एक मोमेंट आपकी लाइफ का ऐसे गुजरता है कि आप गुजर रहे हैं कि मोमेंट गुजर रहा है, समझ ही नहीं आता।
0: हाँ,
1: और लोग उस समय समझ आते हैं कि कौन अपने कौन पर आए हैं, किस तरह से आपको सर झुका के बस चले जाना है, चले ही जाना है। और बहुत सुंदर आपने ज्योतिष से जुड़ी हुई बात कही कि प्रारब्ध है, इसके बारे में हम आगे इस गाने के बाद और बात करेंगे। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री करती हूँ।
0: तो अच्छा,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल बात करेंगे, बट पहले मुझे बताइए नेक्स्ट गाना कौन सा सुनेंगे।
0: नेक्स्ट गाना, चूंकि ये टफ टाइम से ही रिलेटेड है, ये मेरे पति को भी पसंद था और मुझे अच्छा लगता है ये गाना, हर घड़ी बदल रही है जिंदगी, क्योंकि ये वाकई बहुत ही मतलब मीनिंगफुल सॉन्ग है और मुझे लगता है कि शायद ये जीवन का सबक ही सिखाता है आपको ये गाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, खूबसूरत गीत है ये, चलिए सुनते हैं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चल कल होना हो।
0: बिल्कुल।

0: बहुत ही सुंदर चॉइस है मैम आपकी, एक और खूबसूरत गीत। आगे
1: जी
0: चलते हैं जी, आगे चलते हैं। आप ज्योतिर्विज्ञान का अध्ययन भी करती हैं और मार्गदर्शन भी देती हैं,
1: हाँ
0: बट मेरे लिए हमेशा ये सवाल बना रहा है, और जब भी मेरे पास कोई गेस्ट आते हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, स्पिरिचुअल साइंसेस जानते हैं, तो मेरा एक ही सवाल होता है उनसे, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं समझ पाई आज तक, कि
1: बताएं।
0: अगर ग्रहों की जो स्थिति है वही हमें हमारे जीवन की टेंडेंसीज और डेस्टिनी बताती है कि ये ग्रह ऐसा है और ऐसा ही होने वाला है, तो फिर इंसान की मेहनत, उसके कर्म और उसकी फ्री विल की भूमिका कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है?
1: एक्चुअली ये तो सच है कि ज्योतिष, मतलब मैंने जब पढ़ना शुरू किया या इसको सीखना शुरू किया, इसको पढ़ते पढ़ते मैंने एक चीज जानी कि ये आपको सिर्फ एक गाइडेंस देता है, और आप उन चीजों को, उन सिचुएशंस को, जो भी अगर टफ सिचुएशंस आ रही है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कर सकता है, आप उन चीजों को समझ सकते हैं। जैसे आज मैंने जब देखा या अपना चार्ट देखती हूँ या कहीं दूसरों के भी चार्ट्स देखती हूँ, तो आप उसमें समझ जाते हैं कि लाइफ में टफ सिचुएशंस आए, लेकिन उन सिचुएशंस को कैसे फेस करना है ये आपकी फ्री विल, ये हमारे हाथ में होता है। कि वही मैं जो अभी बता रही थी ना कि प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध जो है, जैसे सर्जित कर्म होते हैं, प्रारब्ध होता है और एक क्रियामन कर्म होता है, जैसे कहते हैं ना, तो प्रारब्ध ये है कि ठीक है ये चीजें आपको आने वाली हैं, और क्रियामन वो है जो आप करने वाले हैं, तो सिचुएशन है उसको आप कैसे हैंडल, ये मैं बता दे रही हूँ कि चलिए आप इस रास्ते से जाएंगे तो आपको परेशानी आ सकती है, ये आ सकती है, और आपको जाना ही है, तो आप जाएंगे तो आप क्या रास्ता अपनाएंगे ये आपके हाथ में है, मैंने बता दिया आपको कि ऐसा ऐसा होने वाला है, पर उस सिचुएशन को आप कैसे फेस करेंगे ये आप जानती हैं, जैसे कि अच्छा ठीक है मुझे ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना है, या मैं अपने लिए एक दूसरा रास्ता ये भी अपना सकती हूँ, या है ना ये वाली चीज है, जैसे ये एग्जैक्टली वैसी ही चीज है जैसे रोड मैप है ना, कि ये बता दिया, ये उन सिचुएशंस को कैसे फेस करना ये आपके हाथ में होता है। तो मुझे लगता है कि ज्योतिष और फ्री विल जो है ना, ये एक साथ साथ वाली चीज है, पर अपोजिट नहीं है। तो ज्योतिष आपको, हाँ ज्योतिष आपको हेल्प कर देता है। और मुझे पता है कि जैसे अगर मेरे ही बच्चे का चार्ट में देखती हूँ, मुझे दिखता है कि हाँ इसकी लाइफ में, इस सिचुएशन में स्ट्रगल है ये, तो मैं उस बच्चे को उस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ, ये भी उसको बिना बताए आप ये बता सकते हैं कि ठीक है अगर टफ टाइम है तो अपन बोलते कोई बात नहीं, आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं, तो पेरेंट्स क्या होता है ना, बच्चों पे नाराज होते हैं, आप सफल नहीं हो रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, जब आपको कहीं पता है थोड़ा सा शायद, तो आप ये प्रिपेयर होते कि शायद ये चीज ऐसी है, आप मोटिवेट करो उसको, हैंडल करो उसको, हेल्प करो, उसे स्ट्रेस में नहीं आने दो, हम इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ज्योतिष एक इस तरीके का आपके हाथ में एक बहुत अच्छा टूल है कि इन चीजों को आप समझ सकते हैं, मुझे ये लगता है।
0: जी, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर सब कुछ फिक्स्ड ही है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरी लाइफ में ये होना ही है इस ग्रह के कारण, तो मैं अपनी फ्री विल कहाँ यूज करूँ, ये मेरा क्वेश्चन होता है हमेशा।
1: नहीं, बिल्कुल ये आपका सही कहना है कि जो कहा जाता है कि फिक्स्ड है, लेकिन देखिए मैंने अभी ज्योतिष पढ़ते पढ़ते कई बार ये जाना है कि ज्योतिष को मैं जो पर्सनली मानती हूँ, मैं 50 से 60% देती हूँ इम्पोर्टेंस, 40% और बल्कि 45% मैं अपने हाथ में ही रखती हूँ। चीजें हम अपने कर्म से बदल सकते हैं, अगर हम जितनी मेहनत करेंगे वो करेंगे, आप उनको चेंज कर सकते हो, जो उसमें लिखा हुआ है ना, जो कह रहे हैं कि अगर प्लेनेट्स यही कह रहे हैं, ग्रह ये कह रहे हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, और ये मैंने होते हुए देखा है, ये मैंने सच में देखा है, प्लेनेट्स मतलब किसी की हॉरोस्कोप कुछ कह रही है लेकिन उनका, उन्होंने चेंज किया है,
0: जी,
1: तो ये जो क्रियामन या जो हमारे कर्म है ये जरूर बदलते हैं उन चीजों को।
0: बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आई थिंक इस पे हम पूरा एक पॉडकास्ट कर सकते हैं थोड़ा डेप्थ में जाके, बट अभी खैर समय बलवान है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ अपने पॉडकास्ट में। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि आप एक बहुत गहरी लाइन को मानते हैं, उसको गुनते हैं, उसको अपनी लाइफ में उतारा है आपने, कि आशा चाहे थोड़ी सी भी हो लेकिन निराशा को नेस्तना बूंद करती है, तो आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल रहा जब एक बहुत छोटी सी उम्मीद ने आपको फिर से जीवन जीना सिखाया?
1: ऐसे मेरे जीवन में, मतलब मैं ये मान के चलती कि आशा मतलब किसी बहुत बड़ी चीज के रूप में तो नहीं आई, छोटी छोटी चीजों में आई है, जैसे कभी बच्चों के लिए कुछ करना है, कभी पढ़ाई पूरी करनी थी और कभी मतलब किसी को मेरी जरूरत है तो मैं उसके लिए अवेलेबल हो जाती हूँ, है ना, और उसके जीवन में कुछ कर सकती हूँ, ये वाली भी चीज रही है। बस एक छोटा सा रीजन मिल जाता है कि इसके अगला कदम हमें क्या उठाना है। आशा एक वो चीज दे जाती है हमें, और मैं ये मानती हूँ कि आशा कभी कभी एक छोटी सी रोशनी भी होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है। इसलिए होता है कि मतलब मैंने आशाओं को ऐसे देखा है कि जब मैं जो ये मेरा टफ पीरियड आया उसमें इन्हीं चीजों ने मुझे बढ़ाया। मैंने कभी बहुत बड़ा सोच के नहीं किया आज क्या करना है, उस पे चलते चलते चलते जब हम आगे एक मोड़ पे आ जाते हैं ना, तब हमें लगता है कि अरे हम इतना आगे निकल के आ गए, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। पर वो
0: सही है।
1: एक उम्मीद जो होती है कि चलिए अब बेटी को कैट की तैयारी कर रही है, उसमें हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उसकी अगर वो पहुंच गई, आज IIM में पढ़ रही है, बैंगलोर में है वो, वो जब वहां पहुंच गई ना तो उससे मुझे बहुत खुशी दे दी। बच्चे ने जब कुछ चीज अचीव किया तो उसके लिए जो मैं मदद कर रही हूँ, जो हेल्प कर सकती हूँ, उसको मोटिवेट कर सकती हूँ, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बस यही मेरी आशा इतनी ही रही है। मतलब मेरे आसपास या मेरे अपनों को कभी मेरी जरूरत है और उनकी जिंदगियों में मैं कुछ कर सकती हूँ ना, वो मुझे बहुत खुशी दे देती है।
0: क्या बात
1: तो
0: मैम
1: मतलब आशा मेरे लिए बस इतना ही काम करती है।
0: जी, बिल्कुल। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा,
1: बिल्कुल
0: मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। बिल्कुल, और यही होती है आशा, कोई बहुत बड़े मिरेकल्स नहीं, छोटी सी। एक वो बोलते ना कि तिनके का सहारा काफी होता है कई बार, तो वही तिनके का सहारा काफी है जीवन में आगे निरंतर बढ़ने के लिए। और क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, या तो आप आगे बढ़िए या आप जो अदर वेज है वो अपनाएं, बट जीवन मिला है तो उसे जीना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस जन्म में नहीं जी के जाएंगे तो अगले जन्म फिर से वहीं से शुरू करेंगे, तो इससे
1: बिल्कुल
0: अच्छा है कि इसी जन्म में काट लें, और सुंदरता से काट लें, डिग्निटी से काट लें, होप के साथ काट लें। इसी पे हम सुनेंगे हमारा अगला गीत। बताइए मैम, कौन सा गाना सुनेंगे?
1: अगला गीत तो मैं सुनना चाहूंगी कि अगला गीत मैं सुनना चाहूंगी मेरी बेटी जब छोटी थी
0: जी
1: तो ये गाना बहुत गुनगुनाती थी, तो मैं उस सॉन्ग को सुनना पसंद करूंगी। शाहरुख खान और काजोल पर पिक्चराइज सॉन्ग है वो।
0: जी
1: हाँ
0: सूरज हुआ, जी
1: हाँ हाँ सूरज हुआ मध्यम,
0: जी जी मेरा भी फेवरेट है।
1: ये जब वो बहुत छोटी थी, वो अभी अच्छा गाना गाती थी, तब अपनी तोतली आवाज में इस गाने को सुनाया करती थी, तो इस
0: हाँ
1: गाने से मेरी पर्सनल वो जुड़ी हुई बात है कि सूरज हुआ मध्यम, और
0: अडोरेबल
1: ये गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: मैम। आपकी बेटी और आपके सन का भी नाम बताइए।
1: मेरी बेटी का नाम है अद्विका और बेटे का नाम है ध्रुव।
0: खूबसूरत नाम है और प्यारे बच्चे हैं, तो अद्विका और ध्रुव आप दोनों को पूरी SN रेडियो टीम की तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बेस्ट विशेस, और अपनी मामा का ध्यान रखिए, क्योंकि बिकॉज इतनी ब्यूटिफुल मदर आपको मिली है, सो कंग्रेचुलेशन ऑन दैट ऑल्सो। और जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं, जैसे अद्विका आप IIM बैंगलोर में हैं, तो मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर दैट एंड गुड विशेस फॉर योर फ्यूचर। ध्रुव आपको भी बहुत गुड विशेस फ्यूचर के लिए। अभी सुनेंगे सूरज हुआ मध्यम, फिल्म कभी खुशी कभी गम से, स्पेशली फॉर अद्विका फ्रॉम सरोज मैम।

बहुत ही सुंदर गीत, मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। जी आगे चलते हैं मैम, आपकी इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया कि आप हाईली एजुकेटेड हैं, कई क्षेत्रों में आपने अध्ययन किया है, बहुत सारी शिक्षा आपने प्राप्त की है, ज्योतिष आचार्य की डिग्री ली है और उसकी भी आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्योतिष लिखते हैं आप बहुत सुंदर, और पेंटिंग भी करते हैं आप, कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं अपने यूट्यूब चैनल, अपने इंस्टाग्राम चैनल के लिए। तो इतनी लंबी और इतनी सुंदर जब यात्रा रहती है, इतने विविध रंग जब उसमें होते हैं, तो आपके हिसाब से, आप पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं, तो इन सब उपलब्धियों

0: इन इन सब डिग्रियों, इन सब अनुभवों के बीच में ऐसा कौन सा पड़ाव है जो आपके लिए सबसे खास है और क्यों?
1: इस पढ़ाई तो मैं आज भी कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी इतना गहरा, इतना बड़ा, इतना वास्ट है कि उसमें आप पूरा जीवन भी निकाल देंगे ना तो मतलब मजा ही आता जाएगा। मैं मुझे लगता है कि शायद मैं
0: एक रस है, एक रस
1: बिल्कुल, और मैं शायद एक स्टूडेंट बना रहना हमेशा पसंद करती हूँ। मैंने बचपन से पढ़ा है, आज भी पढ़ रही हूँ, शादी हो गई तब भी पढ़ाई कर रही थी, और मतलब मैंने शादी के बाद 2 डिग्री ली है, और उसके बाद 2 नहीं बल्कि 3 डिग्री लिए मैंने अपनी शादी के बाद, और अभी भी मैं पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मुझे एक छात्र बना रहना और वो मुझे ना यंग फील कराता है। ज्योतिषीय ये एग्जाम दिया था तो मतलब वो 3 घंटे के लिए आप रात में पढ़ रहे हैं, पेपर तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं उतने नए बच्चों के साथ, और आप बैठे होते हैं 3 घंटे तक आप लिख रहे हैं, पेपर दे रहे हैं ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। और आज भी आप यकीन करिए मैं बहुत पढ़ती हूँ और बहुत लिखती हूँ, और वो चूंकि मेरी बेटी बेंगलोर में है, बेटा इंदौर में नौकरी कर रहा है, मैं यहाँ अकेली हूँ, तो ये सिर्फ एक पढ़ाई ही एक वो साधन है जो मुझे बहुत जिंदा रखता है और अच्छा लगता है। नो डाउट आपकी कंटेंट क्रिएशन और मेरी पेंटिंग और रीडिंग, ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे अपनी एक्सप्रेशंस या मेरी जितनी भी उन चीजों को निकालने का एक बहुत अच्छा माध्यम है जिनमें मैं अपनी चीजों को जाहिर कर पाती हूँ, अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से बता लेती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या मैं नेचर लवर हूँ, प्रकृति के साथ मेरे को निकालना टाइम बहुत अच्छा लगता है, तो उस खूबसूरती में भी मैं अपना समय दे देती हूँ, तो ये चीजें अच्छी लगती है। जैसे मैंने एक उसमें पढ़ा था आपने, उसमें कि जिम्मेदारी सब सिखा देती है, अकेले कैसे करूंगी से लेकर अकेले सब कर लूंगी तक का सफर तय हो जाता है, फिर डर लगता है लेकिन कदम रुकते नहीं, आंखें नम होती हैं लेकिन हौसले झुकते नहीं, जो कल तक किसी के सहारे की तलाश में थी आज वही खुद का सहारा बन जाती है, जिंदगी जब बार बार अकेला छोड़ती है तब इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है ना, और एक समझ आता है हम सफर में किसी का साथ जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद का हाथ थाम कर भी बहुत दूर तक चला जा सकता है। तो ये सब चीजें ना ये कराती हैं कि आप अपने साथ रहना सीख जाते हैं।
0: वाह मैम, क्या बात है, क्या बात है, सच में सच में, जब जीवन बार बार आपको अकेलेपन की तरफ ढकेलता है तो आप सच में उस अकेलेपन को, कुछ लोग तो मतलब अपना समय व्यर्थ कामों में लग जाते हैं और कुछ लोग हैं जो उसको क्रिएटिवली चैलेंज कर देते हैं, चैनलाइज कर देते हैं, अपने आप को ही चैलेंज करते हैं बार बार और इतना कुछ अचीव कर जाते हैं जैसे कि आपने बताया। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही अमेजिंग लाइफ आपकी रही, बहुत इंस्पायरिंग लाइफ आपकी रही। मैं चाहूंगी जो भी महिलाएं हमें सुन रही हैं वो इन बातों को सुने, गुने और अपने जीवन में उतारें, और सच में जो मैंने पहले भी कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब, असली रूप यही होता है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं है वुमेन एम्पावरमेंट। तो आगे चलते हैं और आज का आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ये आपकी पेंटिंग की टैलेंट से रिलेटेड है। अगर जी अगर आपकी पूरी जिंदगी को एक पेंटिंग समझा जाए तो उस पेंटिंग का टाइटल क्या होगा और उसमें सबसे गहरा रंग किस एहसास का होगा?
1: पेंटिंग का नाम क्या दिया जाए? मेरे ख्याल से बदलते रंग जिंदगी के संग शायद ठीक होगा।
0: वाओ वाओ,
1: जिंदगी के सच में इतने रंग, इतना कलर देख लिया है ना मैंने, सुख का, दुख का, आशा, निराशा, सीखना, भूलना, जिम्मेदारियों का, रिश्तों का, ऐसा कौन सा रंग है जो शायद नहीं देखा है, है ना, अपनापन देखा है, तिरस्कार भी देखा है, धोखा भी देखा है, हर चीज देखी है, तो ये कह सकती हूँ कि शायद जिंदगी का रंग, बदलते रंग जिंदगी के संग मेरे शायद मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और अगर कहा जाए तो उम्मीद का रंग शायद सबसे अच्छा रंग है उसमें, क्योंकि उम्मीद ने ही जिंदगी को आगे तक बढ़ा के रखा है और उसी ने हमको यहाँ तक लाया हुआ है कि हम चल रहे हैं अभी भी, और उम्मीद पे ही जिंदा है, चलता जा रहा है हर सामान और हर काम, बच्चों के साथ है, बच्चे मेरे लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है और सब कुछ उन्हीं पे केंद्रित है अब मेरा।
0: क्या बात है।
1: हाँ वो हिम्मत है मेरे लिए, मेरे बच्चे जो मुझे उठा के रखते हैं। मैं बीमार होती तो बीमार नहीं होने देते हैं, और निराश होती तो निराश नहीं होने देते हैं। और भगवान ने शायद वो दोनों मेरे लिए इसीलिए दिए हैं कि मैं आगे चलती रहूं, क्योंकि अगर वो प्लान था भगवान का, भगवान को पता था कि कब क्या सिचुएशन होगी, तो मुझे इनको कैसे फेस करना है, तो कौन वो चीज रहेंगी मेरे लिए, तो शायद वो दोनों बच्चे हैं, वो ही मेरी उम्मीद है।
0: बिल्कुल मैम, वो आपकी सच में आंखों की तारी हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जवाब, और बहुत सुंदर आपकी जीवन के एहसास रहे, और बहुत सही आपने पॉइंट आउट किया। मैंने कई लोगों को बहुत सारी चीजें बोलते हुए सुना है, बट भूलना, भूलना भी एक क्वालिटी है जो अभी आपने गिनवाई, वो बहुत बहुत सुंदर एक ट्रेट है जो हम भूल जाते हैं। भूलना भी एक तरह का जीवन जीना है, क्योंकि हर बात अगर याद रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, जीवन जीना नासूर हो जाएगा। तो सब कुछ होने के बाद भी, सब तिरस्कार, सब कुछ जो आपने सहा लाइफ में, आपने क्या, सबने, हम सबने अपने जीवन में ये सब सहा है, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पे, किसी ना किसी के थ्रू, चाहे जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हम जिससे हम दोस्ती रखते हैं, धोखे खाते हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस हम उठाते हैं जीवन में इस उम्र में तक आते आते। बट अगर हम भूलना याद रखें, भूलना याद रखें, वाह क्या लाइन है, भूलना याद रखें, तो जीवन बहुत आसान हो सकता है। थैंक यू जी जी जी। तो सरोज जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। लगा ही नहीं कि हम एक इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसा लगा बस बातचीत कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं मोमेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू
1: तनुषा, एंड वंस अगेन आई एम रियली ग्रेटफुल। आई एम सबको SN रेडियो की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और बल्कि मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज मैं इस
2: सरोज जी आज आपसे बात करके लगा कि हमें जिंदगी सिर्फ खुशियों से नहीं बल्कि अपने कठिन मोड़ों से भी तराशती है। आपने दर्द को अनुभव में, अनुभव को समझ में, और समझ को दूसरों के मार्गदर्शन में बदलने की कोशिश की है। आपकी बातों में एक विश्वास बार बार सामने आता है। आशा को थामे रखना और अपने आप को ईश्वर के हाथों सौंप देना, यही आपकी सच्ची पहचान है। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे आपका अपना जिंदगी अनप्लग्ड, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तांत्या भील 90.8 FM पे। रहिए उम्मीद के साथ और अपनी कहानी को प्यार से जीते रहिए। नमस्कार।

0: रोशनी।
1: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
2: આપણ હંગલા ભાઈઓ અને બહેનો નું નમસ્કાર, હું છે આરજે ભાવના અને તમુ હમલતા રેજો ઝાબુઆ નો પહેલો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબુઆની આવાજ। સાથીઓ આવો હમલ્યો યો ભીલી લોકગીત, ગાયક કલાકાર માલિંગ કટારાની આવાજમાં, આરજે ભાવનાની હાથે।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपनी खुद की पर्सनालिटी, अपनी खुद की प्रतिभा, अपने खुद के चरित्र और अपने खुद के बारे में। इस बात को आराम से समझिए दोस्तों, आप ऊपर वाले की बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएशन, रचना, कृति या कुछ भी कह लीजिए, प्रकृति में उपस्थित एक ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई कंपटीशन नहीं, आप जैसा दूसरा कोई नहीं। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। वो अच्छा है, वो बुरा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा कुछ सामान ले जाएगा, मेरा हक छीन लेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। प्रकृति के नियम है, जो आपके लिए आया है वो कोई दूसरा ले ही नहीं जा सकता। होड़ में मत लगिए। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने आप में धैर्यवान रहते हुए पूरी तरह से सुनिश्चित रखिए, करिए कि आप वही हैं जो ऊपर वाले ने आपको बना के भेजा है और सब कुछ आपके लिए तय है। अपना काम करते चलिए। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते चलिए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते चलिए। यूं तो गीता में कहा है श्री कृष्ण ने कि काम करता चल, फल की इच्छा मत कर, लेकिन दोस्तों हम इंसान हैं, बिना फल की इच्छा किए हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो जितना मैंने समझा उसके हिसाब से मैं सुझाव दे देता हूं। आपको जमे तो रखिए, नहीं जमे तो जाने दीजिए। वो ये कि काम करते तो जरूर चलिए, फल भी अपने दिमाग में रखिए, लेकिन दूसरों के फल को देखकर तड़पिए मत। गौर कीजिए, हम इंसानों की यही तकलीफ है। किसी के पास कोई बेहतर गाड़ी, कोई बेहतर मकान, कोई बेहतर सुविधाएं, कोई बेहतर कपड़े और न जाने क्या क्या। हम अपने आप को बस उनसे कंपेयर ही करते चलते जाते हैं। जो हमें मिला, जो हमारे पास है, जो हमें मिलने वाला है, जो ऊपर वाले ने, कुदरत ने हमारे लिए तय कर रखा है, हम उसके बारे में जरा सा भी न तो शुक्रिया कहते और न ही खुश होते हैं। गौर कीजिए ना आप, क्या सचमुच आपके पास जो मोबाइल है उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? क्या सचमुच आपके पास जो बाइक है, जो कार है, जो मकान है, जो परिवार है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं? जब आपने उनके लिए शुक्रिया अदा किया ही नहीं तो और कैसे मांगेंगे आप? ये तो कुछ ऐसा है ना कि आपको चाय दी गई पीने के लिए, मजे लेने के लिए, रिफ्रेश हो जाने के लिए, और आप कहते हैं नहीं साहब, मुझे तो कॉफी चाहिए। अरे, जो आया सामने वो ऊपर वाले ने आपके पास भेजा है, प्रकृति ने, कुदरत ने आपके पास भेजा है, पहले उसे स्वीकार कर उसका शुक्रिया अदा तो कहिए। मेरा बहुत तहे दिल से मानना है, जिंदगी में और बहुत सारा कुछ पाने के लिए आसान सा एक तरीका है

शुक्रिया कहते चलना। जो भी है हमारे पास शुक्रिया कहते चलिए। इससे कुदरत को एक संदेश मिलता है कि इस इंसान को और चाहिए, तभी तो जो कुछ भी मैंने इसे दिया वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है, तो इसे और दो। जिस भी वक्त आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो कुदरत को यह संदेश मिलता है कि ठीक है, इस इंसान को और नहीं चाहिए, ये चीज, ये सुविधा या ये समृद्धि मैं किसी और को दे देती हूं। इसलिए जो कुछ भी आए शुक्रिया कहिए और की उम्मीद में खुश रहिए दोस्तों।

एक बार कुछ जिज्ञासुओं ने क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि मनुष्य डेवलपमेंट क्यों चाहता है, विकास क्यों चाहता है, उसे पाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। दरअसल विकास यानी कि डेवलपमेंट नेचर यानी कि प्रकृति का एक शाश्वत नियम है, होके रहेगा, आप करें या ना करें। सृष्टि में सब कुछ गतिमान है, चलता ही रहता है। मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है और विकास करना, आगे बढ़ना उसका मौलिक लक्षण है। मनुष्य को यह पता है कि जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा, विकास पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता। विकास का पथ चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक, इसके पीछे का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन में सुख भोग की चाहत ही होती है। क्योंकि मनुष्य की सोच बहुत बड़ी है, इसलिए सिर्फ वो अपने लिए सुख समेटना उसका मौलिक गुण धर्म नहीं होता। उस सामाजिक जीवन को भी वो सुख पहुंचाना चाहता है जिसे वो भोग रहा है। विवेकशील प्राणी होने के कारण वो अच्छे बुरे के बारे में सही निर्णय ले सकता है। जब वो सही निर्णय लेने लगता है तब आध्यात्मिक महत्व को भी समझने लगता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग का सहारा लेने के लिए उसे सुबह शाम साधना करनी पड़ती है। इसी साधना की बदौलत मनुष्यों में व्यक्तिगत मानसिक विकास और विश्व बंधुत्व की भावना कायम होगी। यहां एक और बात बहुत जरूरी है दोस्तों, आध्यात्मिकता के साथ मनुष्य को भौतिक और मानसिक जगत से भी संतुलन बनाकर रखना होगा। मनुष्य में वृहत्व को पाने की आकांक्षा है, इसे बड़ा देखने की इच्छा भी कह सकते हैं, इसे बड़ा बनने की इच्छा भी कह सकते हैं। अगर उसमें यह आकांक्षा न होती तो ब्रह्म समुद्र में रहकर भी वो परब्रह्म को पहचानने का प्रयास न करता और हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। विराट को पाने का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि एक कार का मालिक पांच कारों का मालिक बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, मगर माने या न माने सीमित संपत्ति को सभी मनुष्यों को संयुक्त संपत्ति के रूप में ग्रहण करना होगा। सीमित वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे दौड़ दौड़ कर धक्के खा खा कर मनुष्य ने एक दिन ये सच तो खोज ही निकाला था कि सच में उसका मन ऐसा कुछ पाना चाहता है जो जीवन भर के लिए बस मिल जाए।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूँ। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं हरमन हेस से, जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ये मानव सभ्यता की नाकामी ही तो है कि ना तो मन की आग शांत होती है और ना ही युद्ध की। रह रह कर धधक उठती है और इंसान अपने ज्ञान की तमाम महान पवित्र पोथियों को किनारे रखकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। युद्ध के दिन दिलो दिमाग से मिटाई नहीं मिटते। उन दिनों भी दुनिया पहले विश्व युद्ध पर उतरी हुई थी। माहौल ऐसा बन गया था कि लगता था किसी ना किसी दिन सबको लहूलुहान होना पड़ेगा। वो दुबले पतले से भावपूर्ण नैन नक्श वाले लेखक भी युद्ध की आंच से तप रहे थे। जब पास ही आग लगी हो तो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जाता। यूरोप के ज्यादातर कवि लेखक भी देश के लिए बंदूक थाम चुके थे। कुछ युवा लेखकों की तो जंगी मोर्चे पर जान भी जा चुकी थी। सभी पर युद्ध में जाकर दो दो हाथ करने का गजब का दबाव था। इस लेखक ने भी अपना नाम इंपीरियल सेना में बहाली के लिए लिखवा दिया, पर उस नाजुक मन रचनाकार को युद्ध लड़ने के अयोग्य पाया गया। उन्हें युद्ध बंदियों की देखभाल से जुड़ी सेवा में लगा दिया गया। ऐसा लगता था कि दुनिया अब लड़कर ही खत्म होगी। कवियों के बीच भी बहुत नफरत पसर गई थी। उन्हीं दिनों इस नफरत के खिलाफ इस लेखक ने एक लेख लिखा। उन्होंने सबको समझाया कि राष्ट्रवादी पागलपन और नफरत की खाई में ऐसे ना गिरें कि फिर निकलना ही मुमकिन ना हो। नफरत से बड़ा है प्यार, क्रोध से बड़ी है समझ और युद्ध से महान है शांति। दुर्भाग्य की बात है, कोई नहीं समझ पाया। लेखक बिरादरी दुश्मन हो गई और मीडिया शब्द बाण बरसाने लगा। बहुत धमकियां मिली। लेखक का घर से निकलना दूभर हो

मन इतना डगमगाया कि दिमाग ने भी जवाब दे दिया और लेखक का शरीर एक मनोरोगी उपचार केंद्र में पहुंच गया। एक अच्छे लेखक के बारे में लगभग घोषणा ही हो गई कि उसे युद्ध की आंधी उड़ा ले गई है। पढ़ना लिखना तो छूट ही गया, पर सौभाग्य की बात थी कि उन्हें मनोचिकित्सकों ने बहुत सहारा दिया। जो अच्छी चीजें उनके अंदर सूख गई थी उन्हें फिर से हरा भरा करने की कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगी। किसी भी तकलीफ या किसी एक हार पर दुनिया खत्म नहीं होती। सुख दुख, भोग योग, संयम त्याग, उपवास की ओर मन बहने लगा। दुख के बादल भी ओझल होने लगे। धर्म चिंतन ने तमाम कष्टों और असुरक्षा बोध की गहरी गुफा से बाहर ला दिया। सनातन धर्म के साथ साथ गौतम बुद्ध बार बार याद आने लगे। लेखक महोदय कुछ वर्षों पहले जर्मनी से श्रीलंका तो आए थे, पर भारत आने से पहले बीमार पड़ गए थे और स्वदेश लौटना पड़ा था। पर भारत के पास से गुजरते हुए इस मोक्ष भूमि के प्रति प्रेम का बीज उनके मन में पहले से पड़ा हुआ था, वो अब अंकुरित हो गया। उन्होंने भारतीय दर्शन और बुद्ध को आधार बनाकर एक उपन्यास लिखा। नाम था सिद्धार्थ। भोग में भी योग तलाश करने की कला के साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो ज्ञान उन लेखक महोदय को मिला, उसने कमाल कर दिया। साहित्य की दुनिया में जब सिद्धार्थ का आगमन हुआ, तब विश्व युद्ध बीत चुका था और दुनिया विकास की नई लहर से पुलकित हो रही थी। दुनिया ने अपने एक महान लेखक हरमन हेस को भारतीयता से ओतप्रोत नई रोशनी में देखा। सिद्धार्थ लिखने के बाद हरमन न जाने कितनी वर्जनाओं और उलझनों से एक झटके में उबर गए तो फिर घर नहीं लौटे। उन्होंने पुराने जीवन के कारागार को तोड़ दिया और स्विट्जरलैंड में जा बसे। दुनिया को एक से बढ़कर एक कृतियों से संपन्न कर दिया और साहित्य के सर्वश्रेष्ठ सम्मान नोबेल से नवाजे गए। अकेले अमेरिका में इस उपन्यास की 50 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी हैं। गौर कीजिए, हरमन हेस 1877 से 1962 तक यह पुस्तक अपने भारत प्रेमी मित्र रोमा रोला के नाम समर्पित की थी इन्होंने। जी, वही रोमा रोला जिन्होंने कभी कहा था, यदि पृथ्वी पर कोई एक जगह है जहां जीवित मनुष्यों के सभी सपनों को शुरुआती दिनों से ही घर मिला हुआ है, जब मनुष्यों ने अस्तित्व का सपना देखना शुरू किया था, तो वो भारत है।

0: चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: ओ, है मीठी छुरी।

0: तो अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार सोनू ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठ गया। आदमी बहुत गुस्से में चिल्ला, हाँ, मेरे सर पे आके बैठ जा। सोनू बोला,
2: नहीं अंकल, मैं यही ठीक हूँ, वहां से फिसल कर तो गिरने का डर रहता है ना।
1: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा, और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ। सन 1884 की बात है। कलकत्ता में उन दिनों चैतन्य लीला नाटक की धूम मची हुई थी। बड़ी संख्या में लोग वो नाटक देखने जा रहे थे और उसकी काफी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ भक्तजन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित इस नाटक को दिखाने के लिए नाट्य गृह में ले गए। विनोदिनी दासी नामक नगरवधु ने चैतन्य लीला में सजीव अभिनय किया। स्वामी रामकृष्ण उसके अभक्तिपूर्ण अभिनय को देखकर अभिभूत हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। नाटक की समाप्ति के बाद जब विनोदिनी ने दर्शक दीर्घा में स्वामी रामकृष्ण को बैठे देखा तो वो भागी भागी उनके पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके गदगद हो गई। स्वामी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा अभिनय बहुत प्रभावी है, जीवन उसी के अनुरूप ढालो तो कल्याण हो जाएगा। विनोदिनी दासी एक महान सिद्ध संत के आशीर्वाद स्पर्श से सुदबुद्ध खो बैठी। उसका जीवन बदल गया। जीवन पर्यंत वो भक्ति और साधना में लगी रही।

होना। अकेला और उजाड़ सारी रात रहा मैं झील पर, जहां छाया रहता है कुहासा और धीमे धीमे रेंगती है धुंध। लगातार रोती चीखती रहती है कश्तियों और बजरों की सीटियां। मुसीबत में पड़े किसी खोए गए बच्चे की तरह रोते हुए बंदरगाह की छाती और उसकी आंखों का शिकार करते हुए।

चलिए आज बात करते हैं उन अंगूरों की जो खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं? पहुंच से बाहर कोई चीज होने पर ये मुहावरा अक्सर बोला जाता है ना। लोमड़ी अंगूरों के गुच्छे को छलांग लगाकर तोड़ने की कोशिश करती है, सफल नहीं होने पर यह कहकर आगे बढ़ जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। कहानी खत्म। हम सुनते हैं, लोमड़ी पर हंसते हैं, कहानी हमेशा से सुनाई भी इसी ढंग से जाती है। पर क्या ये

महज लोमड़ी की खिसियाहट या कमजोरी है? हम सब कभी न कभी अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल रहते हैं और अपने मन को हमें समझाना भी पड़ता है ना। अपने मन को समझाकर आगे बढ़ जाना गलत नहीं होता। अपने मन को समझा सकना छोटी बात भी नहीं होती भाई। कई दफा जो है उसे मान लेना ही आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है। फिर यह जरूरी नहीं कि अंगूर हमेशा खट्टे ही रहेंगे। असल जिंदगी में कहानी हमेशा यहीं खत्म नहीं हो जाती। कई बार हम कुछ देर के लिए ठहरते हैं, खुद पर काम करते हैं और फिर कामयाब भी हो जाते हैं। कई बार हमारा लक्ष्य गलत भी होता है, तब लाख कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती। हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हम एक ही बात पर खुद को अटकाए रहते हैं। दरअसल संतुष्ट होने पर ही यह समझ में आता है कि जो हम हैं या जो हमारे पास है उसके क्या मायने हैं। कई बार हम सोचते हैं कि थोड़ा और हो जाएगा तो कोई कमी नहीं रहेगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। जो आज है अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आगे उसका दुगना भी हो जाएगा ना, तो भी संतुष्टि नहीं होगी। संतुष्टि बड़ा सोचने और उसे हासिल करने से नहीं रुकती। दिक्कत तब होती है जब हम किसी से होड़ करते हैं, दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। कई बार इसी दौड़ में हम खुद के साथ सख्ती करने लगते हैं, सामान्य जीवन जीना भूल जाते हैं। फिर कुछ पाने की चाह होना बुरा तो नहीं है, पर वह नहीं मिलने पर निराशा में डूब जाना देखिए गलत है। दूसरों से कम या ज्यादा होने का भाव मन को टिकने नहीं देता। जब कोई अभाव महसूस नहीं होता तब पूरी दुनिया अपनी लगती है। पहले हम खुद को स्वीकारते हैं और फिर धीरे धीरे दुनिया हमें स्वीकारती है। जब हम ज्यादातर टाइम उस दिशा में लगाते हैं जो हमारे मूल्यों से मेल खाती है, तो हम किसी भी उठापटक का सामना बेहतरी से कर पाते हैं। दया, करुणा, ईमानदारी, अच्छे रिश्ते, सेहत, पैसा, नाम, कुछ भी हमारे मूल्य देखिए हो सकते हैं। जितना हम अपने मूल्यों के करीब जिंदगी जीते हैं उतना ही अपनी कोशिशों से संतुष्ट हो पाते हैं, बेहतर काम कर पाते हैं। जितना हम सोचते हैं हमारी जरूरतें उससे देखा जाए तो बहुत कम है। फिर संतुष्टि मजबूरी या मन महसूस कर रहना ठीक नहीं है, यह मजबूती का भाव है। संतुष्टि के साथ ही हम सही मायनों में इवॉल्व होते हैं। जो है ठीक है और जो होगा देखा जाएगा, यह मजबूत मन ही कह सकता है। संतुष्ट रहने वाले आत्मविश्वास को अपना दोस्त मानते हैं और संतुष्टि को सबसे बड़ा खजाना। इसलिए दोस्तों संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना, हर समय ऊपर वाले और प्रकृति को शुक्रिया कहना बेहद जरूरी है।

0: होता है।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: माँ, ये लड़कियां इतने व्रत क्यों रखती हैं? माँ ने कहा, बेटा इतनी आसानी से थोड़े ही मिल जाएगा किसी को। तू टिल्लू जो था वो मनी मन सोचता हुआ सोचने लगा, कसम से आज पहली बार देवता वाली फीलिंग सी आ रही है।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं काजोल देवगन। शादी से पहले इनका नाम काजोल मुखर्जी था। अजय देवगन से शादी के बाद काजोल देवगन हुआ। आइए सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल देवगन का जन्म 5 अगस्त 1974 को बॉम्बे में ही हुआ। इनकी माताजी हैं तनुजा, जो कि खुद एक बहुत सफल अभिनेत्री रहीं। आइए सुनते हैं काजोल की ही फिल्म का ये सुंदर सा गीत।

0: कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।
1: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

काजोल अपने आप को बहुत ही शरारती, बहुत ही जिद्दी और बहुत ही स्ट्रांग अपनी यंग एज में मानती हैं। वो मानती हैं कि उनके पेरेंट्स को उन पर बहुत नाज रहा और वो भी अपनी मां तनुजा की ही तरह काफी सफल अभिनेत्री रहीं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

काजोल की ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ रहीं और हमेशा हिट ही रहीं। लीजिए सुने इनकी ही फिल्म का ये गीत।

1995 से 1998 के बीच में काजोल सबसे ज्यादा सफल अभिनेत्रियों में गिनी गईं। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक और गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर, आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है काजोल की ही फिल्म का एक और गीत।

लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है बेहद खूबसूरत बेहद प्रतिभाशील अभिनेत्री काजोल देवगन की एक और फिल्म का गीत।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में आज की कलाकारा हैं हेलन। जी हाँ, हेलन जो बहुत प्रसिद्ध डांसर रहीं, एक्ट्रेस रहीं हमारी हिंदी फिल्मों की। हेलन का असली नाम है हेलन एन रिचर्डसन खान। जी हाँ, हेलन दरअसल एक

0: श्रोताओं, हम स्वागत करते हैं महेंद्र गौतम जी का जयपुर से। गौतम भाई, जरा ये बताइए अदाकारा हेलेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: शी वॉज अ वेरी गुड डांसर एक्चुअली। उनकी केमिस्ट्री जो आयशा भोसले के साथ में है और उनके जो गाने हैं वो आपको वैसे ही थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो वो उनके गाने अपने आप में बहुत मजेदार गाने होते थे, आप थिरकते थे उनसे, आज भी थिरक उठते हो।
0: बेहतरीन बेहतरीन गौतम भाई, थैंक यू सो मच गौतम, आपका बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

हेलन का जन्म 21 नवंबर 1938 को बर्मा में हुआ। उनके पिता की मौत वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हो गई, तभी उनकी फैमिली भारत में शिफ्ट हो गई। यहीं पर हेलन का करियर बॉलीवुड फिल्मों में शुरू हुआ। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

बड़ी ही मजेदार बात है कि एज एक्ट्रेस हेलन और उनके लिए गाना गाने वाली हमारी प्रसिद्ध गीत गायिका आशा भोसले जी की बेहद गहरी दोस्ती थी। आशा भोसले जी ने हेलन के करीब करीब सारे गाने गाए हैं। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन ने सलीम खान जी से शादी की, जिसकी वजह से वो सलमान खान जी की फैमिली से जुड़ी। यूं देखा जाए तो सलमान खान उनके सौतेले बेटे हैं, बट दोनों के बीच बेहद प्यार है। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

हेलन को सबसे पहला बढ़िया ब्रेक हावड़ा ब्रिज नाम की मूवी में मिला, जिनका बहुत ही फेमस गाना है, बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, मेरा नाम चिंग चिंग चू। आइए दोस्तों, सुनते हैं यही गीत।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि हेलन को ऐश्वर्या राय और अक्षय कुमार के साथ साथ पद्म श्री अवार्ड्स के लिए भी चुना गया। आइए दोस्तों सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: मैंने जब दरवाजा खोला ना भैया,

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा गजल का कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक। गजलें यानी कि कुछ खूबसूरत अल्फाज, कुछ गहरी भावनाएं और दिल को छू जाने वाली धुनें। तो चलिए कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भाग दौड़ को भूल जाएं और खो जाएं गजलों की इस खूबसूरत दुनिया में हमारी ही रेडियो दोस्त आरती जी के साथ।

0: थैंक यू।
1: वाह क्या बात है, क्या ही बात है। मतलब पुराने इन नगमों की क्या कितनी रूहानी अंदाज था, और आज भी सुन के ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाएं। बहुत खूबसूरत। तो आइए दोस्तों, माथुर साहब ने अगर अनप्लग्ड वर्जन इतना खूबसूरत गाया है तो म्यूजिक के साथ तो चार चांद लगा दिए होंगे। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

0: بہت خوبصورت، میرے انداز سے بہت زیادہ خوبصورت، بہت
1: شکریہ،
0: اچھی گائی آپ،
1: بہت
0: بہت
1: بہت
0: اچھی.
1: شکریہ.
0: مدھر صاحب، اب ये बताइए कि आपने 75 ईयर्स की उम्र में अपनी आत्मकथा लिखी, दी मेमोयर्स, राइट?
1: जी जी
0: तो आपने ये पब्लिश की, फिर आपने रोटरी आइडल में आपको अवार्ड मिला, फिर आपको पुणे पैशन आइकॉन का अवार्ड मिला, फिर आइकन ऑफ इंडिया जैसे अजीम अवार्ड्स आपको मिले. तो ये सारा कुछ आपकी लाइफ में हुआ. आप अपनी इस जीवन यात्रा को कैसे देखते हैं, जहां पर ये सब सिलसिलेवार ये सब चीजें होती गई, और फिर आपने सुर संगम जो आपका ग्रुप है उसमें आप बिना कोई फीस लिए मुफ्त में आप समाज के लिए चैरिटी परफॉर्मेंसेस करते रहे और अभी भी करते हैं. आपकी जिंदगी का ये कितना बड़ा मकसद है?
1: जहाँ तक सुर संगम में बिना फीस लिए गाने का सवाल है, तो ये तो मैंने आपको जैसे कल समझाया था कि हम जिस आश्रम में गए थे गाने के लिए, वहां पर हमने जब उन लोगों को देखा जो पीड़ित लोग वहां पर थे, वृद्ध लोग वहां पर थे, जिनकी सेवा वो लोग कर रहे थे आश्रम में, तो वहीं से हमने ये ठान लिया था कि हमें अब चैरिटी के लिए ही गाना है. तो वो हम वहां से हमारा वो सफर शुरू हो गया था. और हमने ये भी सोचा था कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, क्योंकि वी आर ऑल वेल टू डू एट दैट टाइम. हम लोग सब कमा रहे थे, जितने हमारे सिंगर्स लोग थे सब अच्छा कमा रहे थे. हमने कहा हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमको सेवा भाव से गाना है. और संगीत को एक एग्जाम्पल हमको अपने ग्रुप की सेट करनी है कि हम बिना पैसे लिए गाएंगे, और जो भी पैसे का खर्चा होगा वो हम सब लोग शेयर करेंगे. तो ये तो शुरुआत वहां से हो गई थी. और जहां तक इसका सवाल है, मतलब ये जो 75 साल के बाद जो मैंने अपनी किताब लिखी, ये सब उसके बाद की बात है. ये जो शुरुआत हुई थी मेरी किताब लिखने की, दिस स्टार्टेड इन 2024, परहैप्स 2000,
0: जी
1: नो सॉरी 2025, मतलब लास्ट ईयर ही मैंने वो शुरू किया था, जब मैं डबलिन ही आया हुआ था उस समय.
0: जी
1: और अब यहाँ आने के बाद, जैसे मैंने कहा था कल भी, अब जिक्र किया था इस बात का कि यहाँ आने के बाद मुझे गाने का कोई प्रोविजन था नहीं, क्योंकि माइक नहीं था, कोई एकम्पलीमेंट मेरे पास नहीं था. तो इसलिए मैंने सोचा अब क्या करूँ. तो ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, चलो अपने ऊपर कुछ लिखते हैं. तो फिर मैंने ऐसे लिखना शुरू किया, मुझे इंटरेस्ट आ गया. तो फिर एक के बाद एक सारे इंस्टेंसेस अपने बचपन के, जवानी के, स्कूल के, कॉलेज के, नौकरी के, सब याद आते गए, मैं लिखता गया. तो वो एक किताब बन गई. और फिर जब मैंने वो लिखना शुरू किया ही था, या उससे पहले भी शायद मेरे दिमाग में एक ख्याल था कि मेरी जो जिंदगी है वो काफी इवेंटफुल रही है बहुत से मायनों में, तो क्यों ना मैं अपनी जिंदगी के बारे में लिखूं. ये सोच ही रहा था. तो कभी कभी क्या होता है कि आजकल गूगल इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि अगर आप जो कुछ सोचते
0: हाँ
1: हैं तो वो गूगल पकड़ लेता है उस बात को. और मैं अभी ये पिछले साल की बात है कि मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में ये ख्याल था कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ लिखूं. और वो भी शायद इसीलिए आया क्योंकि पहले जब मैं आता था डबलिन, तो वॉक करने बाहर निकल जाता था, लेकिन पिछले साल मुझे बंदिश थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी थी कि मैं चल नहीं सकता था. तो मैंने कहा मैं क्या करूं, चलो कुछ लिखता हूं अपने बारे में कुछ. तो वो बस सोच ही रहा था कि गूगल से, जब मैं लैपटॉप पे बैठा था तो फेसबुक की एक पोस्ट मेरे सामने आ गई, एंड इट सेड के डू यू वॉन्ट टू राइट अ बुक, वी विल गाइड यू. मैंने कहा यार ये कैसे हो गया. तब मुझे ध्यान आया मेरे
0: ओ
1: को
0: माय
1: ये,
0: गॉड.
1: सो इट इज ऑल गूगल इंटेलिजेंस. तो वहां से मैंने कहा चलो अब ये गाइड कर रहा है तो सीख लेते हैं इससे. तो वहां उसने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया, तो मैंने बस लिखना शुरू किया. फिर वो अपनी कलम, एक बार जब लिखनी चलती है तो फिर वो सब कुछ हो ही जाता है. तो वहां से ये
0: हाँ
1: मेमोयर्स
0: बिल्कुल
1: की जो है वो शुरुआत हो गई. और बाकी जहां तक
0: जी
1: आपने ये रोटरी आइडल और पुणे पैशन आइकन का जिक्र किया है, तो रोटरी आइडल तो मैं इससे
0: जी
1: बहुत पहले 2023 में ही जीत चुका था सिंगिंग में, और
0: अच्छा
1: पुणे पैशन आइकन में 2024 में जीत चुका था ऑलरेडी. तो वो
0: जी
1: भी, वो मुझे क्यों मिला था उसका भी एक कारण है, क्योंकि मैं, हम लोग सोशल कॉज के लिए गा रहे थे, चैरिटी के लिए गा रहे थे. तो पुणे पैशन आइकन
0: जी
1: करके एक कॉम्पिटिशन पूना में अनाउंस हुआ था, जो 2023 में भी अनाउंस हुआ था. मैंने उसमें नाम दिया लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया उसमें, मुझे लेट हो गया था
0: अच्छा
1: मतलब में. फिर हाँ सॉरी 2022 में भी अनाउंस हुआ तो मैं लेट हो गया था। फिर 2023 में मैंने दोबारा अप्लाई किया, तो मैंने टाइम से अप्लाई किया तो मेरा नंबर आ गया। तो वहां पर उन लोगों ने, मतलब इट वाज नॉट ए टेस्ट ऑफ सिंगिंग एक्चुअली, इट वाज ए टेस्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग फॉर द सोसाइटी विद द
0: जी
1: पैशन दैट यू आर हैविंग। तो आई थिंक ऑन दैट बेसिस आई वॉज अवॉर्डेड दिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई गुड और बैड सिंगिंग, क्योंकि मुझसे भी बहुत अच्छा गाने वाले वहां पर थे, मैं जानता था उन लोगों को, क्योंकि मैं सब बहुत सारे गाने वालों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैं जानता था कि अरे ये तो मुझसे इतना अच्छा गाता है फिर इसको अवार्ड क्यों नहीं मिला। तो देन दे टोल्ड मी ऑन द स्टेज, जब उन्होंने वो अवार्ड अनाउंस किया कि दिस अवार्ड गोज टू मिस्टर चांद माथुर, सिंगिंग कैटेगरी में बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो ही सेड कि ही इज सिंगिंग विद अ पर्पस। तो दैट एक्चुअली स्ट्रक मी कि ओ हो ये रीजन है, बिकॉज दे हैड टेकन ऑल द डिटेल्स फ्रॉम मी, माई यूट्यूब लिंक्स, माई फेसबुक लिंक्स एंड वट एवर आई हैव डन फॉर सोशल कॉज। तो उनका मेरा करीब पौन घंटे का उन्होंने इंटरव्यू, जैसे आप इंटरव्यू ले रही हैं ऐसे उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उस इंटरव्यू मैंने सब कुछ उनको बताया, तो एवरीथिंग गोज रिकॉर्डेड ऑन द रिकॉर्ड्स। तो दैट वॉज द
0: अच्छा
1: रीजन कि आई वॉज गिवन दिस अवार्ड, क्योंकि मुझसे भी बहुत अच्छे गाने वाले थे वहां पर। तो ये तो मतलब ये तो हुआ पुणे पैशन आइकन का। तो इसी
0: जी
1: तरीके के जो और जो बाकी जो अवार्ड्स मिले मुझे, वो सब सोशल इम्पैक्ट की वजह से मिले, क्योंकि मैंने सोशल
0: जी
1: कैटेगरी में जो काम किया, फंड रेजिंग करी, ऑर्फेनेजेस की हेल्प करी, लोगों को खुश करने के
0: जी
1: लिए गाया, तो बाकी जो अवार्ड
0: जी
1: मुझे सोशल कैटेगरी में मिले वो तो भी आपने बोला, वो आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड, देन
0: हाँ जी
1: पुणे महाराष्ट्र आइकॉन अवार्ड, वो सब इसके लिए मिले। तो
0: जी
1: आई
0: जी
1: सो दिस ऑल क्रेडिट, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये एंटायर क्रेडिट गोज टू माइसोर संगम ग्रुप, जिन लोगों ने कदम कदम पे मेरा साथ दिया, जब भी मैंने कहा वो बेचारे गाने के लिए आए, कंट्रीब्यूट किया, गाया, बहुत मेहनत करी, रिहर्सल करी बहुत ज्यादा, तो ये सब अवार्ड उनको जाते हैं, उनको डेडिकेटेड है। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दिस इज
0: बहुत
1: माई
0: बहुत बहुत
1: आंसर टू योर क्वेश्चन। आई होप आई हैव नॉट
0: बहुत खुश
1: मिस्ड आउट एनी
0: करो
1: पॉइंट इन दिस।
0: नॉट एट ऑल. मैं तो उल्टा ये सोच रही थी कि माथुर साहब के आपने डबलिन का बार बार अपने मतलब कोई भी चाहे आपको शिंगल्स डबलिन में हुआ चाहे आपने कोई नया कुछ वेंचर स्टार्ट किया जो कुछ नया प्रोग्राम स्टार्ट किया वो भी आपने डबलिन में
1: से
0: रहकर
1: डबलिन
0: अपने
1: से ही
0: खाली
1: किया था।
0: टाइम में. हाँ तो मैं दोस्तों को अपने ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त हम माथुर साहब से जो बात कर रहे हैं अभी भी वो डबलिन में ही हैं और मैं इंडिया में
1: हाँ
0: लुधियाना में और हमारी बातचीत हो रही
1: ये
0: है
1: भी एक कोइंसिडेंस है,
0: और
1: देखिए
0: आप फिर डबलिन में हैं.
1: जी हाँ
0: तो
1: मैं फिर
0: अब आप
1: डबलिन
0: जब
1: हूँ।
0: अगली बार बात करेंगे तो आप ये भी कह देना कि वहां पे मेरा एसएन रेडियोस पे जो था वो प्रोग्राम भी आया.
1: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर कह दूंगा जरूर।
0: माथुर साहब बहुत मजा आ रहा है वैसे. आपने 75 साल की उम्र में अपना मेमोयर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी ये कोई आसान बात नहीं है.
1: अच्छा इसके
0: बेहतर
1: बारे
0: इस उम्र तक
1: मैं 1 मिनट के लिए आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। इसके
0: जी
1: बारे में,
0: बोलिए
1: मेमोयर्स के बारे में एक खास बात यह है जो मुझे आज ही पता लगी है कि इसको द
0: जी.
1: लिटरेचर टाइम्स से अवार्ड मिला है, आज ही मुझे वो खबर मिली है,
0: ओह
1: और इट हैज बीन सिलेक्टेड इन द टॉप 10 बुक्स एंड टुडे द अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड एंड वेरी प्रेस्टिजियस
0: हाँ
1: अवार्ड। एंड इसकी जो पब्लिकेशन है वो कम से कम 270 प्रिंटेड मीडिया में पब्लिश हुई है।
0: वाह
1: तो
0: वाह बहुत बहुत मुबारक माथुर साहब बहुत बहुत मुबारक.
1: आई वुड लाइक टू यू नो, अगर आप परमिट करेंगी तो मैं इस टॉक के बाद जब भी ये कभी आप स्ट्रीम करेंगी तो मैं उसका लिंक पब्लिश करना चाहता हूँ वहां पर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो अगर आप ठीक
0: जी
1: समझें
0: श्योर
1: तो उस लिंक को आप पब्लिश करिएगा।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल.
1: जी
0: तो
1: थैंक यू।
0: आपने वाकई ये एक बहुत कहने की बात है कि अपनी जिंदगी का सारा निचोड़ आप अपने मेमोयर्स में लिख के आपने ने डाला. बेशतर क्या होता है कि इस उम्र तक आते आते तक हमारे को आधी अपनी जिंदगी की बातें और किस्से जो हैं वो भूल ही जाते हैं.
1: जी हाँ
0: आपने तो 75 साल की उम्र में लिख लिया. मुझे तो अभी भी नहीं याद है कि कितना कुछ मैं जैसे भूली बैठी हूँ. तो लेकिन ये मैं समझती हूँ, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती थी कि जब आप मेमोयर्स लिख रहे थे तो आपको भी ऐसा लगा कि आप अपनी आधी जिंदगी के किस्से भूले बैठे हैं, और जब लिखने लगे तो एक-एक करके पर्ते खुलती गई और आपको याद आते गए, ऐसा हुआ क्या?
1: बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
0: ओ
1: मैं जिंदगी के जिस पड़ाव को लिख रहा था, चाहे वो मेरा बचपन का पड़ाव था या जवानी का पड़ाव था या कॉलेज का पड़ाव था या फ्लर्टिंग का
0: जी
1: पड़ाव था, फ्लर्ट भी बहुत किया हमने कॉलेज टाइम में, तो
0: हाँ
1: सारे किस्से मुझे याद आते गए और मैं लिखता गया। मैंने ये नहीं सोचा कि बाद में लोग सुनेंगे तो पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन वो बस एक
0: अच्छा,
1: एक फ्लो था, वो बनता चला गया बस।
0: अरे वाह,
1: और आप
0: ये तो
1: ताज्जुब
0: बहुत
1: करेंगी
0: इंटरेस्टिंग लग
1: या
0: रहा है। आपने मेमोयर्स बुक जो है वो अब मुझे भी पढ़नी होगी जब आपने
1: हाँ,
0: इतनी
1: जरूर जरूर
0: इंटरेस्टिंग बात बोल दी है
1: पढ़िए।
0: तो
1: और आप ताज्जुब करेंगी ये सुनकर कि हमारी सबसे छोटी जो ग्रैंड डॉटर है, उसने जब मेरी
0: हाँ
1: किताब
0: हाँ
1: पढ़ी तो शी पिक्ड अप ओनली
0: हाँ
1: वन वन पॉइंट फ्रॉम दैट बुक।
0: हाँ
1: तो वो
0: हाँ
1: कहती है, अरे बाबा जी की गर्लफ्रेंड भी थी। माई सन सेड कि तुझे यही बात समझ में आई है किताब में, और कुछ समझ में आया? कहते दिस इज द मोस्ट बेस्ट फर्स्ट थिंग विच आई अंडरस्टूड एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई अंडरस्टूड। सो ऑन ए लाइटर नोट, यू नो, सो दिस इज हाउ इट हैपेंड।
0: बहुत खूबसूरत।
1: बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते
0: तो
1: ना कि
0: आप
1: बाबा जी की भी गर्लफ्रेंड हो सकती है।
0: ना,
1: हाँ
0: वो एक एक एक एक इमेज बन जाती है ना कि बाबा जी तो कुछ ऐसा कुछ कर ही नहीं
1: हाँ राइट राइट।
0: सकते। जो जो कुछ है बस सफेद सफेद ही है, कुछ गुलाबी हो ही नहीं सकता। या तो नहीं बोलेंगे इसको, ये गुलाबी पार्ट है
1: हाँ
0: जिंदगी का,
1: जी
0: और ये हर एक की जिंदगी में होता है, और वो
1: हाँ
0: अलग बात है कि हमारे किसी में दम होता है उसको बता देने का, किसी में नहीं होता। अगर आपने बताया है तो हैट्स ऑफ टू यू।
1: मेरी वाइफ ने जब
0: अच्छा
1: किताब
0: तो
1: पढ़ी,
0: फिर
1: मेरी वाइफ ने जब किताब पढ़ी तो
0: हाँ
1: मुझे बोला भी कि तुमने ये क्यों लिखा। मैंने कहा यार ये सच्चाई है, जो है वो जाने दो,
0: हाँ
1: यू नो इट ऑलरेडी, माय वाइफ
0: जाने।
1: न्यू इट ऑलरेडी। तो बोला ये सच्चाई
0: ओके
1: है, क्या फर्क पड़ता है,
0: जी,
1: शादी शादी
0: शादी
1: तो तुमसे ही हुई है ना।
0: तो तुमसे ही हुई है ना।
1: वो एक दौर था
0: बिल्कुल
1: जवानी
0: सही बोल,
1: का, वो एक जवानी का दौर
0: सही
1: था,
0: बात,
1: आया निकल गया।
0: आया और गया। और आपने अगर इस तरीके से जिया नहीं तो फिर क्या काट दिया।
1: करेक्ट
0: बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आपने लिख भी दिया
1: जी हाँ
0: वाकई। तो आइए फिर इस नोट पे, अब आपने ये जो गजल गा के भेजी है जरा इसके बारे में बताइए, ये क्या है? इस शब के मुसाफिर हैं हम तो, ये
1: जी
0: दुनिया
1: हाँ
0: मुसाफिर खाना है ना, अपनी कोई कहानी है।
1: ये गजल की एक ऐसी स्टोरी है कि हमारे बड़े ब्रदर के एक दोस्त थे, वो अक्सर हमारे घर आया करते थे और ये गजल गाते थे। तो एक बार उन्होंने ये गजल गाई, बहुत साल, मेरे ख्याल से करीब करीब 60 साल पहले की बात होगी, 60 years बिफोर, क्योंकि ये
0: अच्छा,
1: गजल जो है वो mid-50s की है।
0: ओके ओके
1: तो जब मैंने उनसे ये गजल सुनी, पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत अच्छी लगी और तब से इसकी धुन मेरे दिमाग में बैठ गई। तो
0: जी
1: फिर ऐसे ही एक बार मैं बैठा था तो हमारे जो म्यूजिक कंपोजर है उन्होंने कहा

0: मैंने जो गाई है
1: मतलब
0: वो एक
1: यूट्यूब
0: नहीं, यूट्यूब पे मिल जाएगी
1: यूट्यूब पे अवेलेबल।
0: आपको, यूट्यूब पे मिल जाएगी
1: अच्छा
0: आपको,
1: अच्छा
0: लेकिन
1: अच्छा
0: उसकी तर्ज इससे अलग होगी जैसे मैंने गाई है, इस तरीके से नहीं गाई होगी उन्होंने।
1: ओके ओके ओके ओके ओके ओके,
0: जी
1: कोई
0: हाँ जी।
1: बात नहीं, हम आप ही की सुनेंगे और कॉपीराइट आपका हो गया वहां पर तो। तो
0: जी
1: आइए दोस्तों, फिर अब ये फिर हम यही कहेंगे, माथुर साहब की गाई हुई ये खूबसूरत सी गजल सुनते हैं। इस शब्द के मुसाफिर हैं हम तो, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। ठीक है, आइए सुनते हैं।

0: वाकई माथुर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था और आपने साबित भी कर दिया, और मुझे पूरा यकीन है हमारे सब सुनने वाले दोस्तों को भी ये उतनी ही पसंद आई होगी। और वाकई आपने बहुत एक एक अलग से चीज पेश की है, बहुत खूबसूरत।
1: धन्यवाद।
0: माथुर साहब, आप ये बताइए कि आप कितने शहर

0: शहरों में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और कई जगह आप प्रोग्राम्स करते रहे। आपने फिर कल भी आपने बताया था कि आपने कहीं ओल्ड एज होम्स में भी आप जा जाके अपने प्रोग्राम्स करते हैं। और ये बताइए कि ये सारी चीजें आप जब करते हैं तो यहाँ आपके मुख्तलिफ एक्सपीरियंस आपको होते होंगे, तो जब आप इन प्रोग्राम्स में जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी गाई हुई धुनें किसी उदास चेहरे और किसी उदास इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाती होंगी, तो उन लम्हों में आप कैसा महसूस करते हैं अपने ऊपर? कई बार ऐसा होता है हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो अपने ऊपर ही रश्क सा आता है कि हमने वाकई किसी के लिए बहुत कुछ किया। क्या एक्सपीरियंस है आपका इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे?
1: इस बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जैसे मैंने पहले भी एक दो प्रश्न पहले आपसे कहा कि जब मैं कभी ऑर्फेनेज के लिए गाता हूँ या ओल्ड एज होम के लिए गाता हूँ या सैनिकों के लिए गाता हूँ या कैंसर पीड़ित लोगों के लिए गाता हूँ, तो जैसा मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनमें से ही एक हूँ। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था, ये मतलब मुझे लगता है शायद सभी को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आप गाते हैं तो दिल से गाते हैं, तो जो जो भी गीत के भाव होते हैं वो उसको आप गाने में लाने की कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक सफल होते हैं। जो सफल हो जाते हैं वो सुनने वालों को भी पसंद आता है फिर वो। और यही मेरे साथ हुआ कि जब मैंने ओल्ड एज होम में गाया पहली बार, जो अशोक खोसला जी का आश्रम था जहाँ, वहां जब मैंने गाया तो वहां अशोक खोसला जी ने यही कहा कि माथुर साहब, मैंने गाने आपके सभी लोगों के सुने, लेकिन आपने जो गाया वो बिल्कुल दिल से गाया। मैंने कहा सर, हमारे सभी लोग दिल से ही गाते हैं। कहते नहीं, वो तो सब अच्छा गाते हैं, मैं देर इज ए डिफरेंस इन अच्छा गाना और दिल से गाना। ये उनके वर्ड्स थे मेरे लिए। कहते सभी लोग आपके बहुत अच्छा गाते हैं, सभी लोग सुर ताल में गाते हैं, लेकिन आप जो गाते हैं वो दिल से गाते हैं, तो आपकी आवाज में वो बात नजर आती है हमको। मैंने कहा सर बहुत
0: बिल्कुल
1: बहुत आपसे ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ। और फिर जो उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है सुन के, वो दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। जो भी सुनते हैं वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड, आप फिर कब आएंगे दोबारा, बस यही आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे यही अच्छा लगता है बस। तो इसके लिए मैं अशोक खोसला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने, मतलब इतने काबिल और इतने लर्निड सिंगर ने अगर ये बात कह दी तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए।
0: बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है ये, और फिर याद रखने वाला है कि बहुत खूब। माथुर साहब, आप देश के कोने कोनों में और ओल्ड एज होम में आप अपनी आवाज से लोगों को सुकून पहुंचाते हैं। आपकी यात्रा वाकई अद्भुत है, और फिर किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ले आना, ये तो आपकी कला का सबसे बड़ा इनाम है। तो अब जगजीत सिंह साहब की ये अमर गजल आपके इस बात पर बिल्कुल स्टिक बैठती है, आपने जो गाकर भेजी है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है
1: को
0: जिसको
1: छुपा
0: छुपा
1: रहे
0: रहे,
1: हो जी।
0: या और फिर इसके बाद क्या है, आंखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है, क्या
1: क्या बता
0: दिखा
1: रहे
0: रहे
1: हो,
0: हो,
1: क्या दिखा रहे हो
0: क्या
1: जी,
0: बता
1: जी।
0: रहे हो बहुत खूबसूरत
1: मतलब दिल आपका
0: आपने,
1: उदास है
0: बहुत
1: लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं।
0: मुस्कुरा रहे हैं वाकई। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं माथुर साहब की आवाज में ये पुरसुकून सी गजल, आप भी इसका लुत्फ उठाएं।

0: बहुत खूबसूरत माथुर साहब, मैं यही
1: धन्यवाद।
0: सोच रही थी कि आपने ऐसे ही गाई होगी और आपने वैसे ही गाया है इसको,
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: खूबसूरत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: माथुर साहब, अब प्रोग्राम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं, वक्त की सुइयां तो देखो टक टक टक टक चलती रहती हैं, और मेरे मेरे मेरे कमरे की टक टक भी आपको सुनाई दे रही होगी। ये बताइए कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना और फिर निष्काम सेवा ही आपकी जिंदगी की पहचान है, मीन्स मंत्र ऑफ गिविंग। 75 सालों के इस सुहाने सफर के बाद जीवन का आपका सबसे बड़ा फलसफा क्या है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है, ये बताने के बाद फिर आप ये बताइएगा कि SN रेडियोज और रेडियो टांटिया भील के हमारे सुनने वाले दोस्तों के लिए आपका क्या खास और इंस्पायरिंग मैसेज होगा। दो सवाल हैं, आप तसल्ली से जवाब दीजिए।
1: जी आरती जी, फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो मैं समझता हूं वो मेरी तो ये रही है कि जितना आप दूसरों की मदद कर पाए उतना कोशिश करिए। मतलब हर तरह से आप मदद
0: जी
1: ना कर पाए, चाहे आप इन कैश करें या इन काइंड करें या किसी भी तरीके से करें। मैं शुरू से, मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं ये कह रहा हूं क्योंकि मैं गाता हूं और पैसे लोगों के लिए जोड़ता हूँ, इकट्ठे करता हूँ, इसलिए मेरा ये फलसफा है। लेकिन मेरा बचपन से ही यही फलसफा है और शायद ये जो सोच है मेरी वो मेरी मदर से मुझको मिली है। क्योंकि हम
0: जी
1: बचपन में हम बहुत मामूली फैमिली से थे। मतलब हमारे फादर जो थे वो 5 भाई थे और हमारी मदर उनमें सबसे बड़ी थी हमारी फैमिली में। अगर आपको इत्तफाक हो मेरी किताब पढ़ने का तो उसमें मैंने इस सब बातों का जिक्र किया है। तो
0: जी
1: हमारी मदर भी बहुत मामूली फैमिली से थी और हम जो पैदा हुए तो हम भी बहुत मामूली फैमिली से थे। लेकिन हमारी मदर की ये नेचर थी कि वो एक वक्त वो खाना नहीं खाएंगी लेकिन दूसरे को जरूर खिलाएंगी, चाहे उनके पास पैसा नहीं
0: जी
1: होगा लेकिन दूसरे को उधार दे देंगी। तो शायद वही जो जीन्स है वो मेरे अंदर है और मैं बचपन से यही चाहता था। मतलब अनोइंगली और अननोइंगली मैं दूसरों की मदद करने में ज्यादा बिलीव करता हूं। मैंने कहा मैं तो अपना कर ही रहा हूं, अगर मेरी वजह से किसी का
0: जी
1: भला होता है, किसी को खुशी मिलती है, किसी की मदद होती है, तो इससे
0: जी
1: अच्छी बात नहीं हो सकती। ये मुझे किसी ने सिखाई नहीं है,
0: जी
1: ये मेरे जीन्स में ही
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: और अपनी मदर की वजह से है।
0: जी
1: हमारे फादर बहुत ज्यादा मेहनती थे, मतलब उनको तो घर में बैठने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इतने मेहनती थे बेचारे। और हमारी मदर जो थी वो मतलब बहुत काम करती थी घर में, सबसे बड़ी थी घर में। तो शायद उनकी
0: जी
1: जीन्स मेरे अंदर थी। और ये तो प्रोग्राम मैंने गाना तो अभी शुरू किया है, लेकिन जैसे अगर आप मेरी हिस्ट्री को देखें या पिछला एपिसोड अगर आप सुने तो मैंने बहुत पहले से ही डोनेशन शुरू कर दिया था। मतलब जो मैंने एक लड़की थी माँ शांति, उसको मैंने
0: हाँ, आपने बताया।
1: बचपन से मैंने 1,000 रुपये उसके लिए दिए और उसके पहले भी मैं कई बार छोटी मोटी डोनेशन लोगों को देता ही रहता था। अपने वर्किंग वर्किंग टाइम में भी जब मैं भारत फौज में जॉब करता था तब भी किसी ने अगर मुझसे कुछ टेक्निकल हेल्प मांगी या कोई पैसों की मदद मांगी तो मेरे से जो बन पड़ता था मैं उसको दे देता था बिना सोचे समझे। मैं कहा यार ठीक है ले जाओ तुम, कोई बात नहीं सर मैं आपको दे दूंगा वापस। मैं कहा दे दोगे तब भी ठीक है, नहीं दोगे तब भी ठीक है। तो मेरी यही
0: तब
1: अप्रोच होती
0: ठीक है।
1: थी। और कहते ये है कि जब आप देते हो तो भगवान सब देखता है, वो किसी ना किसी रूप में आपके
0: जी
1: पास वापस जरूर आता है, चाहे वो दुआओं की शक्ल में आए या पैसे की शक्ल में आए या कोई और लकी चीज आपकी जिंदगी में हो जाए, वो आपको जरूर वापस मिलता है। तो मैं यही कहता हूं कि आदमी को देने में कभी झिझकना नहीं चाहिए। यू शुड बी ए गिवर रादर देन किसी के आगे हाथ फैलाना, वो गलत है। कोशिश करिए कि आप अपने अपने दम पे ही सब कुछ कर पाए, लेकिन अगर आप ठीक हैं, कर रहे हैं, कर सकते हैं तो दूसरों की मदद करिए। तो मेरी जिंदगी का बस यही एक फिलॉसफी है और इस डायरेक्शन में जो भी मुझसे बन पड़ता है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो या पैसे की मदद हो या फिजिकली किसी की मदद हो या किसी को कहीं पहुंचाना हो, मैं सब करता ही रहता हूँ। अब थोड़ी सी एज हो गई तो अब ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कई साल ब्लड डोनेशन भी किया है।
0: हाँ, वो आपके रोटरी क्लब में तो कैंप्स लगते ही रहते होंगे
1: नहीं
0: ना,
1: वो तो कैंप्स
0: ब्लड
1: औरों से ब्लड
0: डोनेशन।
1: लेने के लिए लगते थे, लेकिन मैंने खुद ब्लड डोनेशन कई बार किया है।
0: अच्छा, ठीक है ठीक है
1: हाँ
0: ठीक है।
1: इस तरह से मेरी
0: मतलब
1: फिलोसफी
0: गिविंग
1: तो,
0: तो यही है ना।
1: हाँ, जो खुशी आपको देने में मिलती है वो लेने में कभी नहीं मिलती।
0: बिल्कुल
1: आप कभी
0: बिल्कुल
1: भी इसको, कोई भी इसको आजमा के देख सकता है।
0: बिल्कुल, ये बात तो है। और दरअसल ना लोगों में इतनी, कईयों में ना समझ नहीं होती, लोगों के पास बहुत पैसा भी होता है मातुर साहब, मैंने देखा है, लेकिन दिल नहीं होता।
1: जी
0: देने के टाइम में हाथ सिकोड़ सिकोड़ लेते हैं, दिमाग भी सिकोड़ लेते हैं, आंखें भी सिकोड़ लेते हैं, दिल तो सिकुड़ा हुआ होता ही है। तो सबके बस की बात नहीं होती।
1: और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे हमारे घर में मेड्स आती हैं काम करने के लिए, तो उनकी जो पैसे से मदद होती है वो तो हमारी वाइफ करती रहती है, लेकिन उनके घर में जब कभी बीमारी होती है तो उसकी मदद मैं करता हूं, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ता रहता हूँ,
0: ओह वेरी
1: और
0: नाइस।
1: तो मैं उनको होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ खरीद कर। मैंने कहा ये तुम खाओ, से ठीक हो जाएगा तुमका। और
0: हाँ हाँ
1: बहुत सारे केसेस मैंने उनके हस्बैंड्स के, उनके बच्चों के मैंने ठीक किए हैं, छोटे मोटे केसेस।
0: हाँ वेरी नाइस।
1: एंड आयरनी इसके, एक हमारे यहाँ एक मेड आती थी जिसके जिसका हस्बैंड उसको बहुत मारता था। इन लोगों में होता है क्लास 4, जो क्लास
0: हाँ
1: होती
0: हाँ
1: है इन लोगों में ऐसे मार पिटाई बहुत
0: डोमेस्टिक
1: चलती है,
0: वायलेंस बहुत
1: डोमेस्टिक
0: होती है।
1: वायलेंस बहुत होती है। तो वो शराब बहुत पीता था, बहुत पैसे खराब करता था, अभी शराब पी के उसको मारता था। तो कह लेंगे अंकल कुछ भी करो इसकी शराब छुड़वा दो। तो मैंने उसको होम्योपैथिक दवाई बताई, उसने वो दी, आप यकीन मानेंगे 3 महीने में उसको शराब से नफरत हो गई। एंड शी इज लीडिंग ए
0: होम्योपैथी
1: हैप्पी,
0: मेडिसिन,
1: या शी इज लीडिंग ए हैप्पी लाइफ नाउ।
0: वाह वेरी
1: जी हाँ,
0: नाइस।
1: तो अभी मेरा तो
0: ये
1: कुछ नहीं
0: तो
1: किया उसमें, मेरे तो सारी थोड़ी सी किताब पढ़ी, थोड़ी नॉलेज गेन करी, उसको दवाई खरीद के मैंने दे दी। मैं तुमको खरीदनी भी नहीं है, मैं तुमको दूंगा। मैंने खुद दवाई खरीदी, उसको दी, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ ज्यादा महंगी नहीं होती हैं, सस्ती होती हैं, तो
0: हाँ हाँ माधुर
1: मैंने
0: साहब,
1: उसको
0: मैं
1: खरीद के
0: आपको
1: दी।
0: बताऊं कि होम्योपैथी मेडिसिन ही, मैं भी बहुत स्टांच बिलीवर हूँ होम्योपैथी की,
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: एलोपैथी की मेडिसिन मुझे तो सूट ही नहीं करती वैसे भी। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव, एक तो पेट में उसका कोई असर नहीं होता,
1: जी
0: साइड
1: हाँ,
0: इफेक्ट्स नहीं होते उसके कोई।
1: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ,
0: तो मगर ये तो आपसे, तो मैं इस चीज का भी अब बहुत फायदा उठाने वाली
1: जरूर जरूर
0: हूँ।
1: उठाइए, जरूर जरूर बताइए, मैं जरूर आपको
0: और
1: जरूर।
0: हमारे सुनने वाले भी सुन लो दोस्तों, कि माथुर साहब अगर कोई होम्योपैथी में कुछ जानकारी हासिल करनी है, कोई मेडिसिन पूछनी है, तो माथुर साहब को कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: ये विद्या ऐसी है कि ये जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही फैलती है।
1: बेशक बेशक जी।
0: और आप अब बताइए कि हमारे SN रेडियोज के हमारे दोस्तों को, और टांटिया भील के हमारे दोस्तों को, दोस्तों के लिए आपका क्या खास और क्या इंस्पायरिंग मैसेज होगा अंतर साहब?
1: आती जी, सबसे पहले तो रेडियो तातिया भील से और SN रेडियो से मैं खुद ही बहुत इंस्पायर्ड हूँ, और मैं SN रेडियो की और तातिया भील की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम ही होगी। क्योंकि जब मैंने पहली बार 2 साल पहले शायद गाया था पहली बार, उसी समय मुझे लगा था कि यार दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो आई कंटिन्यूड सिंगिंग फॉर रेडियो SN एंड तातिया भील, और अब तक मैं करीब आई थिंक इफ नॉट मोर, मैं कम से कम 6 प्रोग्राम दे चुका हूँ अभी तक, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जुड़ा ही रहूँ, एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ करता रहूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे इंस्पिरेशन ज्यादा जब मिली, कि जब मुझे समीर जी ने गाइड किया, जब मैं किताब लिख रहा था उस समय उनकी गाइडेंस मुझे पब्लिशर के बारे में बहुत काम आई, और मैंने उनको एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भी अपनी बुक की उनको भेजी है समीर जी को, और उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि अमेजोन में कैसे डालना चाहिए बुक को, तो लॉट ऑफ गाइडेंस ही गेव मी। एंड उसके बाद उसी समय मुझे पता लगा कि ये जो पूरा SN रेडियो चलता है, इसमें जो भी हम लोग पे करते हैं गाने के लिए, वो आदिवासी चेतना शिक्षा संस्था सेवा समिति को जाता है। तो इन्हीं से सीख कर मैंने उनके लिए प्रोग्राम किया जो 9 अगस्त को प्रसारित हुआ था। मैंने उसका पोस्ट भी समीर जी ने डाला था इस ग्रुप के ऊपर, और वहां से मैं करीब 20,000 रुपये उनके लिए इकट्ठा कर पाया ACSSS के लिए 2 घंटे के प्रोग्राम में।
0: नहीं,
1: तो मैं इसके लिए तो मैं रेडियो SN का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ और रहूंगा, और मेरा यह वादा है कि मैं SN रेडियो सुनना कभी बंद नहीं करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी आज SN रेडियो से जुड़े हुए हैं वो SN रेडियो को कभी ना छोड़ें, भले ही वो दिन में कम सुने, एक हफ्ते ना सुने, पूरा दिन
0: जी
1: उसमें ना बिताए, लेकिन थोड़ी देर जरूर उस पर
0: थोड़ी देर
1: आकर
0: जरूर आए,
1: जरूर सुने,
0: बिल्कुल
1: जरूर सुने। ये
0: जरूर
1: वेरी
0: सुने।
1: बहुत इंस्पायरिंग है। और जो मैंने सिमी जी के इंटरव्यू में जब उनका मैंने विजन सुना, आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस्ड। द काइंड ऑफ विजन विच समीर एंड नितिन हैव गॉट इज रियली वेरी वेरी इंस्पायरिंग, एंड दे आर डूइंग
0: बिल्कुल
1: ग्रेट
0: वाकई
1: ग्रेट थिंग।
0: ग्रेट
1: और
0: ग्रेट।
1: हाँ, मतलब एक तरह से
0: और देखो
1: टीवी
0: दोनों जने अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉब्स में रहने के बावजूद भी
1: बावजूद ये कर
0: जितना
1: रहे
0: भी
1: हैं।
0: टाइम मिलता है,
1: जी हाँ,
0: बावजूद वो कितना टाइम लगा रहे
1: ये
0: हैं दोनों
1: बहुत बहुत बड़ी
0: कितना।
1: बात है। बल्कि मैंने समीर जी को एक वादा भी किया है कि जिस दिन मैं नैनीताल आऊंगा आपसे जरूर मिलूंगा, और मुझे लाइफ में एक बार नैनीताल जरूर जाना है,
0: जाना
1: चाहे मैं वॉकिंग
0: है
1: जैसे
0: कहीं
1: भी कर
0: जाना
1: पाऊं।
0: पड़े।
1: नहीं, उसका रीजन है, क्योंकि शादी के बाद मेरा
0: हाँ
1: हनीमून नैनीताल में ही हुआ था।

0: अरे
1: तो नैनीताल से एक
0: वाह, तो बहुत
1: पुराना, हाँ, तो
0: रोमांटिक
1: नैनीताल से एक पुराना रिश्ता है मेरा
0: यादें हैं नैनीताल से।
1: जी हाँ, तो जब भी नैनीताल जाऊंगा तो समीर जी से जरूर मिलूंगा।
0: हाँ, वो तो है ही।
1: और बल्कि हम तो
0: हाँ
1: पूना में एक रेडियो एक्शन का प्रोग्राम करने वाले हैं फरवरी में, इफ ऑल गोज वेल एंड इफ नितिन एंड समीर
0: हाँ
1: जी एग्रीज, तो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कराओके प्रोग्राम
0: आई नो।
1: लाइक
0: हाँ
1: बैंगलोर इन पूना
0: जी,
1: ऑल्सो।
0: ये
1: तो अब मैं
0: बहुत
1: जब
0: अच्छे,
1: पूना
0: बहुत
1: वापस पहुंच
0: तरह,
1: के उसकी तैयारी में लगूंगा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
1: जी
0: बहुत मजा आया मास्टर साहब आपसे बात करके। आज आपके साथ बैठकर बात करना ऐसे लग रहा है मेरे लिए ये बहुत यादगार और बहुत वैल्यूबल एक्सपीरियंस रहा।
1: जी
0: आपका निष्काम सेवा का, आपका ये मंत्र और जीवन को हंसकर जीने का संदेश हम सभी को बहुत प्रेरित करता है। सफर में धूप और मुश्किलें तो आती ही हैं, पर अपने हौसले से आगे बढ़ते रहना ही तो असली जिंदगी है। तो सुनते हैं फिर दोस्तों, माथुर साहब ने हमें ये कितनी खूबसूरत गजल गा के भेजी है और इस बात के साथ वो कितना मैच कर रही है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी भीड़ सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो।
1: जी
0: किसी
1: हाँ,
0: के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। बहुत कुछ, ये अभी पीछे प्रोग्राम में समीर जी का अनप्लग्ड वर्जन सुना था ना, तब से मुझे ये और भी अच्छे लगने लग गई है। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम की ये आखिरी गजल सुनते हैं माथुर साहब की बहुत खूबसूरत आवाज में। आइए सुनते हैं।
1: इधर उधर कई मंजिल हैं, चल सको तो चलो। बने बनाए हैं सांचे जो ढल सको।

हर एक सफर को है महफूज रास्तों की तलाश, हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चल जाए।

0: वाकई बहुत खूबसूरत माथुर साहब, इतनी खूबसूरत गजल आपने उतने ही अच्छे भाव से कैसे रूहानी तरीके से गाई है, बहुत बहुत खूबसूरत।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो दोस्तों, क्या शाम थी, क्या बातें थी, और क्या अद्भुत हौसले और खिदमत की दास्तां थी। आज चांद माथुर साहब के साथ गुजरा ये एक एक पल हमारे दिलों पर हमेशा के लिए नक्श हो गया है। भारत फोर्ज के अनुशासित सफर से लेकर सुर संगम की स्थापना, फिर 300 दिव्यांगों को प्रोस्थेटिक लेग्स देना, द मेमोयर्स आत्मकथा, और 75 साल की उम्र में समाज के लिए मुफ्त परफॉर्मेंस करने का ये जज्बा, माथुर साहब का जीवन हम सबके लिए एक चिराग की तरह है। माथुर साहब अल्फाज से एहसास तक के इस मंच पर आने के लिए और अपनी जिंदगी की इतनी हसीन और प्रेरणादायक परतों को हमारे साथ बांटने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका मुझे टाइम देने के लिए। और मैं सभी सुनने वालों से बस यही कहना चाहता हूं कि गाते रहिए, रेडियो एसन सुनते रहिए और अपने अपने पैशन को जवान रखिए। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत। और अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका भी दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, जो जिन्होंने आपने आके इस खास शो को अपने प्यार से सरोबार किया है। चलते चलते बस यही कहूंगी कि चिरागों की तरह राहों में जलना सीखो, चिरागों की तरह राहों में जलना सीखो, मुश्किलें कितनी भी हों हंस के चलना सीखो। बात भले ही खत्म हो जाए आज की, बातें भले ही खत्म हो जाएं आज की, पर सुरों की इस महक में हर रोज ढलना सीखो। अपनी दोस्त आरती राय को दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो एसएन और रेडियो टांगिया भी। और अपने अपनों से बहुत मोहब्बत कीजिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। शब खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
2: तो दोस्तों, गजलें खत्म हो जाती हैं लेकिन उनके अल्फाज और एहसास हमारे साथ ही रह जाते हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कुछ नई और कुछ दिल के करीब गजलों के साथ। आरती जी फिर से हाजिर होगी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, एक बारी फिर तो बहुत बहुत स्वागत करूं है तमार सबूनो रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नो यू खेती बाड़ी कार्यक्रम आपुने खेती बाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने अपनी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। किसान भाइयों, आज नो जो अपन खेती बाड़ी नो मुख्य विषय है त्यो है किसान और किसान खेती और मौसम। हाँ किसान भाइयों, आपड़ जो खेती है पूर्णतः आपू अगर देखी ते मौसम पर आधारित है। ये हमने नहीं बारिश नो समय जो है बारिश ने बाद आपू अपनी खेती ने आपू करिए हैं, क्योंकि आपड़ झाबुआ जिले में अगर आपू देखी तो पानी नी घनी समस्या है। और इन्हें हिसाब से अगर आपू देखी तो अपनी जो कृषि है ते मौसम पर अपना कितरो पानी पड़े तिनी पर निर्भर रहे है। और साथ ही पानी ने अलावा भी आपड़ो जो टाड है केवी टाड पड़े केवी गर्मी था है इन्हीं पर भी आपड़ी जो पूरी फसल चक्र है त्यो तिनी ऊपर है साले है। तो किसान भाइयों, आज ना इना कार्यक्रम में आपू विस्तृत थी जानूँ के कहीं ना एवं बिंदु है कहीं नो समय है कि कम आपन मौसम ने पहचान था है अने कहीं ना मौसम में केवी रीतनी फसलें पाक है केवी फसलें आपू पकड़ी सकूँ तिना बारा में आज ना इना कार्यक्रम में आपू चर्चा करूँ जाणूँ समझूँ अने अपना खेतरों में तीनों प्रयोग करूँ। किसान भाइयों, आशा करिए इसे कि इना कार्यक्रम ना बारा में जो भी आपू हमली रहा है तिना बारा में आपू अपना सहयोगी अपना साथी किसान भाई ने भी इनी जानकारी आ लूँ। साथ ही आपू रेडियो टांटिया भील 90.8 FM ना इना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में जे भी जानकारी आपू मिली रही है अगर तीन में थोड़ो भी कई डाउट आपू मालूम पड़े थोड़ी भी कई शंका मालूम पड़े तो आप फोन लगाड़वानू अने आर को संपर्क करवानो अने हमू आप केवी की किसान विज्ञान केन्द्र मध्यम थी तमारा हंगड़ा सवालों ने विशेषज्ञ कन पुगाड़ूँ और विशेषज्ञ मध्यम थी आपू हंगड़ा जवाब आप जितना भी समस्या है जितनी भी संदेह है अपनी खेती ने संबंध में तीनी जानकारी आपू आलवा प्रयास करूँ। तो किसान भाइयों, आज ना इना कार्यक्रम ने आपू शुरुआत करिए जाए कि कम मौसम नो रोल है अपनी इनी खेती पर।
0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: खेती किसानी और मौसम का आपस में गहरा संबंध है। मौसम ने अगर दगा दिया तो किसान का कौशल भी काम नहीं आता। मौसम के सटीक पूर्वानुमान से किसान अपनी फसल की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकता है। अब हमारा मौसम विज्ञान सटीक जानकारी के काफी कुछ समीप पहुंच चुका है। देश के मौसम वैज्ञानिकों की इस सफलता का लाभ तो किसानों को मिल ही रहा है। अब कोशिश ये भी हो रही है कि जानकारी के लिए किसानों को कहीं जाना न पड़े बल्कि जानकारी खुद किसानों तक पहुंचे। ये सब कैसे हो रहा है? मौसम की जानकारी किस हद तक सही साबित हो रही है? किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए नया क्या हो रहा है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ देश के शीर्ष मौसम वैज्ञानिक भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कंदूरी जयराम रमेश यहाँ मौजूद हैं।
3: नमस्कार।
2: साथ ही उनके सहयोगी वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर के सिंह।
4: नमस्कार।
2: उन्हीं के साथ बात संवाद के लिए अंग्रेजी दैनिक मिंट से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार शांतन बेरा भी यहाँ मौजूद हैं।
5: नमस्कार।
2: साथ ही मौजूद हैं किसान नेता सुरेश चंद्र नागर। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हीं के साथ दूसरी ओर बैठे किसानों का भी अपने ही चैनल दूरदर्शन किसान में स्वागत है। तो मौसम विज्ञान और किसान पर बात संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
6: जब करोड़ों किसान और आधे से ज्यादा खेत पानी के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए रहते हो तो मॉनसून का सटीक पूर्वानुमान यक्ष प्रश्न से कम नहीं रहता। सटीक अनुमान से खेती की योजना बनाने और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि तब किसानों को पता होगा कि तापमान कितना रहने वाला है और बुआई कब करना ठीक होगा। ये बहुत पुरानी बात नहीं है जब मौसम पूर्वानुमान को लेकर लोग हंसा करते थे। अगर मौसम विभाग कहता था कि वर्षा होगी तो लोग मजाक में कहते थे इसका मतलब वर्षा नहीं होगी। पर ये धुंधला अतीत अब आदर में बदल चुका है। हमारे वैज्ञानिकों का आकलन पिछले कुछ वर्षों से सटीक साबित हो रहा है। इस बार भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे देश में औसत से अधिक तापमान रहने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1901 के बाद 2016 की गर्मी में तापमान में औसतन 0.9 डिग्री का इजाफा हुआ था। वहीं इस बार तापमान में 1 डिग्री के इजाफे की बात मौसम विभाग ने कही है। 2016 की तरह 2017 भी गर्म रहेगा। तापमान में इस बढ़ोतरी के पीछे ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही अन्य कारण भी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना तो 1875 में ही हो गई थी। इन 142 सालों में विज्ञान ने काफी विकास किया और हमारे किसानों की मदद के लिए सरकार ने सटीक पूर्वानुमान का तंत्र विकसित किया। इस विकास का ही परिणाम है कि अब मौसम विभाग कुछ घंटे पहले ही ये बताने में सक्षम हो गया है कि किस खास इलाके में बारिश हो सकती है और कहां ओले पड़ सकते हैं। अब अगले 5 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान, तापमान आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जिला स्तर तक पहुंचाना संभव हो गया है। किसान SMS के जरिए भी मौसम से जुड़ी हर जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रादेशिक मौसम केंद्र की साइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होता है। फ्री SMS के जरिए मौसम आधारित परामर्श देने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग और कृषि मंत्रालय की ओर से एक पद्धति विकसित की गई है। इसके लिए किसानों को उनके नाम और मोबाइल नंबर सहित फसलों का रजिस्ट्रेशन करना होता है। एक बार रजिस्ट्रेशन करने से किसानों को उनकी विशिष्ट फसल के लिए कृषि संक्रियाओं के साथ साथ मौसम के ताजा हाल SMS के जरिए मिलते रहेंगे। इसके अलावा किसान टोल फ्री नंबर 1800-180-1717 के जरिए भी अपने इलाके के मौसम से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं।
2: तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, हमारे मौसम विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कंदूरी जयराम रमेश हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रमेश, कभी मौसम पूर्वानुमान की हंसी उड़ती थी पर अब अनुमान काफी कुछ ठीक साबित हो रहे हैं, कितना फीसदी सटीक रहा है अनुमान?
3: ये मौसम विज्ञान जो है काफी तरक्की कर रहा है, आगे वाले दिनों में भी तरक्की करते रहेगी। जैसा नया नॉलेज का आविष्कार होगा, वो नया नॉलेज का जो है सर्विस के रूप में कन्वर्ट करने का जिम्मेदारी हमारी है, तो ये काम लगातार जारी रहेगा। अभी जो है मॉडल्स में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं नया नॉलेज जो आता है रिसर्च के थ्रू। अभी पिछले साल के मुकाबले अभी कंपेयर करेंगे तो पिछले साल जो है 24 किलोमीटर 22 किलोमीटर की ग्रिड स्केल में हमारी फोरकास्ट जनरेट होती थी, वो अब जो है 9-12 किलोमीटर की ग्रिड स्केल में हो रही है। फाइन स्केल में 10 दिन तक फोरकास्ट जनरेट करने का क्षमता एक ही साल में बढ़ाया गया है। तो इससे जो है पहले 5 दिन तक हम वर्षा की सूचना देते थे, अब 5 दिन तो सूचना देंगे ही, उसके साथ साथ अगले 5 दिनों का क्या स्थिति रहेगा उसका भी एक आउटलुक दे पाएंगे इस साल से।
2: जी हमें ये भी बताएं डॉक्टर सिंह की पिछले दिनों में ऐसा कितने

0: बदलाव हुए हैं जिनसे जो पूर्वानुमान है वो ज्यादा से ज्यादा सटीक साबित हुए हैं?
1: पिछले 5 सालों में चक्रवात से संबंधित हो या एक्सट्रीम वेदर, जैसे कि आप ओले पड़ना, भारी वर्षा, बहुत तेज हवा का चलना, तो इस सब की भविष्यवाणी में भी सुधार हुआ है। और सुधार इस हद तक कि एक हम लोग कहते हैं फॉल्स अलार्म रेशियो,
0: ठीक है,
1: तो वो काफी कम हो गया है, 10% के नीचे आ गया है फॉल्स अलार्म रेशियो पिछले 5-6 सालों में। मिसिंग रेट, जो मिस कर जाते हैं, वर्षा हो जाती है, उसमें भी काफी सुधार हुआ है। और भारी वर्षा के डिटेक्ट करने की क्षमता भारत मौसम विज्ञान विभाग की काफी बढ़ी हुई है और इसमें काफी सेटिस्फैक्टरी स्किल है, सटीकता काफी अच्छी है। अगर हम कुछ इवेंट्स पर प्रकाश डालें, घटनाओं पर, तो 2015 में जैसे कि सैटेलाइट उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को भी हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं और माइक्रो लेवल तक जानकारी देने की प्रयास की जा रही है। ऐसे ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बनाए गए हैं, जैसे रैपिड सिस्टम है उपग्रह के आंकड़ों को यूज करके। और रुचिकर पार्ट यह है कि 2015 में बंगलौर में क्रिकेट हुआ था, उसमें 4,000 लोगों ने एक दिन में हिट किया था जानने के लिए कि क्रिकेट का उस दिन खेल हो पाएगा कि नहीं। तो वो रैपिड प्रोग्राम को या सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को देख के किया गया था। और तो इस तरह से काफी सुधार की संभावना है और लगातार हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विभिन्न तरह के एक्सट्रीम वेदर के लिए, चाहे डॉपलर वेदर राडार या उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को भी यूज कर रहे हैं। और उसका फायदा सबसे बड़ा यह है कि जब हम स्वचालित यंत्र लगाते हैं तो वो उसी जगह का ऑब्जर्वेशन देता है, लेकिन इनसे स्पेशियल हर जगह का प्रेक्षण मिलता है।
0: जी, तो काफी सारे फायदे हो रहे हैं और इन जानकारियों का लाभ कई तरीके से लिया जा रहा है। डॉक्टर रमेश, हमें ये बताएं कि विदेशों में मौसम के विशिष्ट चैनल होते हैं, कृषि और पर्यटन के लिहाज से तो ये जानकारियां अहम होती है, यहां तक कि हम देखते हैं वहां पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं वो भी इन जानकारियों का खूब लाभ उठाते हैं। तो ऐसे में विदेशों की तुलना अगर हम करें अपने देश से, तो यहां के मौसम विज्ञान की स्थिति को आप क्या पाते हैं?
2: इधर जो है हमारा सोलर रेडिएशन जो है इक्वेटर के पास रहने की वजह से ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं, सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास वाला कंट्रीज में सोलर रेडिएशन का ज्यादा होता है। जो हमारा प्रोसेस जो है सोलर रेडिएशन से रिलेटेड है, सनशाइन होने के बाद, डे सनराइज होने के बाद जो कन्वेक्शन होती है, मॉइस्चर जो है, ऑपरेशन जो है, समुद्र से हो या जमीन से हो, वो सब जो है क्लाउड्स के रूप में बनता है, उसको कन्वेक्शन कहते हैं हम। वो एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय सोलर रेडिएशन, इसलिए ये प्रोसेस जो होता है हमारा वेदर जो है ड्रिवन बाय ए फिजिकल प्रोसेस, सोलर रेडिएशन ड्रिवन फिजिकल प्रोसेस। इसको समझने के लिए हमें यंत्र चाहिए, वो नेटवर्क चाहिए। सो अभी तक उस तरह का नेटवर्क सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, ग्राउंड सिस्टम, उस पूरा प्रोसेस को समझने के लिए। अलग अलग टाइम स्केल में भी ये प्रोसेस डेवलप होते हैं, बिकॉज जो थंडरस्टॉर्म कहते हैं, ओले पड़ने वाला, लाइटनिंग वाला है, बहुत ही लोकली एक ही डिस्ट्रिक्ट का एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस में होता है, सब जगह नहीं होता है। उस स्केल को समझने के लिए उस स्केल का मेजरमेंट्स भी तो चाहिए। जब तक उस टाइप का सिस्टम नहीं बना है वो प्रोसेस को समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं उसको मॉडल में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, कॉर्पोरेट करने के बाद इम्प्रूव आएगा, इसलिए ये प्रोसेस स्लो हुआ है। विदेशों में इस टाइप की सोलर रेडिएशन से ड्रिवन प्रोसेस नहीं है उनका, उनका नॉर्मल एटमोसफियर कंडीशन से ही बदलाव होता है, इसलिए उनका प्रेडिक्शन करना आसान है मुकाबले जो है इक्वेटर के आसपास वाले देशों में करना।
0: बिल्कुल, भारत जैसे देश में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ी है। शांतन जी, ये बताएं कि मौसम की जो सटीक जानकारी है, ये जानकारी खेती और अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है?
3: देखिए, ऑलमोस्ट 52% जमीन जो है, खेती का जमीन जो है, वो मौसम के ऊपर निर्भरशील है। और खाली ओनली, इट्स नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन साउथ वेस्ट मॉनसून, जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है, उस जो 3 महीने का नॉर्थ ईस्ट मॉनसून होता है अक्टूबर टू दिसंबर, तो उस पे भी खेती के डिपेंडेंट है। जैसे इस बार पूरे देश में साउथ वेस्ट मॉनसून नॉर्मल रहा है, मगर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून डेफिशिएंट होने के कारण 5 राज्यों में, खासकर साउदर्न इंडिया में, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में बहुत भयानक सूखा है, तो किसान उसको जूझ रहा है। और अर्थव्यवस्था अगर देखेंगे, इकोनॉमिकल स्टेट देखेंगे, जैसे 2014 और 2015 में डेफिसिट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून था, था 12% और 14% डेफिसिट था, उसमें कृषि विकास दर जो है वो एक तो 2014-15 में 0.2% कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 15-16 में खाली 1.2% बढ़ा है, और इस साल का नॉर्मल मानसून 2016 का नॉर्मल मानसून होने के कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ के 4.2% हो गया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। खाली किसानों का आय इनकम के बारे में ही नहीं, बाकी खेती किसानी से जुड़े हुए जितने कंपनी है, सीड हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, कंज्यूमर गुड्स कंपनी, तो सारे के बहुत सारे
0: सभी इनसे किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं। नागर जी, किसान नेता होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो मौसम पूर्वानुमान है उसको लेकर आपकी क्या राय है?
4: किसानों को इसकी जानकारी पहली बात तो बहुत कम मिल पाती है, किसान इतने जागरूक नहीं हो पा रहा पूरे देश में कि वो किसान चैनल से जुड़ सका हो। बहुत जगहों पर अभी यही पता नहीं है लोगों को गांवों में कि किसान चैनल चल रहा है। इसके लिए भी हमें, हमारी सरकार को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि किसानों तक किसान चैनल कैसे पहुंचे, क्योंकि अब सटीक जानकारी, सबसे अच्छी जो जानकारी दे रहा है वो किसान चैनल दे रहा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि यदि किसान अपनी प्लान, अपनी योजना बनाता है मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार, तो उसका ही नहीं बल्कि देश, किसान को, किसान ही अच्छी पैदावार फसल नहीं प्राप्त करता, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं होती, बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी होती है। मेरा ये मानना है कि इस, जब से ये पिछले 6-7 वर्ष से लगभग सटीक जानकारी होने लगी है और जो किसान जागरूक हैं और पूरी तरीके से जानकारी हासिल करके अपनी अपनी फसल को बचा भी लेते हैं, वो प्राकृतिक प्रकोप से बचा भी लेते हैं, और जो बढ़िया फसल कर सकते हैं मौसम के अनुकूल वो भी कर लेते हैं, तो इससे उनका, किसानों की भी भलाई है और पूरे देश की भी भलाई है।
0: बिल्कुल, तो किसानों की भलाई इस बात से जुड़ी हुई है जो मौसम पूर्वानुमान है वो सटीक हो और उसका फायदा किसान भी उठाए। शायंतन जी, ऐसे में हमने देखा है कि विश्वसनीयता एक बड़ी चीज है, अगर विश्वसनीयता होगी तभी किसान उस जानकारी का लाभ लेंगे, और पिछले दिनों हमने देखा भी किस तरह से जो प्राइवेट फोरकास्टर्स हैं उनके मुकाबले में जो सरकारी संस्था है उसके द्वारा जो पूर्वानुमान दिए गए हैं वो ज्यादा सटीक साबित हुए हैं, तो इससे विश्वसनीयता भी बढ़ी है।
3: हाँ, जैसे 2014, 15 और 16 में IMD का फोरकास्ट बहुत ही अच्छा था, खाली एकमात्र खाली साउथ वेस्ट मानसून के बारे में ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी अनुमान सही रहा है, और इनफैक्ट जो एक ओले गिरने का संभावना रहता है गेहूं का फसल जब पकता है, 2015 में IMD ने पहले से ही बता दिया था ऐसे होने जा रहा है और वो सटीक निकला है, तो इससे किसानों का प्लानिंग में तो खास करके अच्छा ही हुआ होगा।
0: वो जानकारी जो मिलती है उन्हें भारत मौसम विज्ञान विभाग के जरिए उन जानकारियों का वो लाभ ले सकते हैं, और जिस तरह के जोखिम सामने अगर नजर आते हैं तो उससे बचने के लिए पहले से उपाय भी कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से कई चुनौतियों की भी बात हो रही है भारत जैसे देश में, लेकिन विदेशों में ऐसी स्थिति नहीं है, और यहां पर जानकारी के पहुंच की भी बात हो रही है किसानों तक, जैसा कि नागर जी ने इस बात को उठाया, आप बताएं यहां पर कि किस तरीके से ये जो जानकारी है से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है और किस हद तक पहुंचाया जा रहा है?
1: जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जो प्रचलित माध्यम है, जैसे रेडियो हुआ, दूरदर्शन हुआ, दूरदर्शन में DD किसान का भी बहुत बड़ा अहम रोल है, अखबार हैं, और इसके अलावा किसान कॉल सेंटर, इन सब से तो जानकारी किसानों को दी जा रही है अपने फोरकास्ट के बारे में, और फोरकास्ट के आधार पर क्रॉप संबंधित जो भी उनके बचाने के उपाय होने चाहिए उसके बारे में। इसके अलावा सबसे प्रभावी माध्यम जो SMS के थ्रू किसान के मोबाइल पर सूचना पहुंच रहा है, ये पिछले 4-5 सालों में शुरू हुआ है और काफी हद तक ये प्रभावी है। हाँ, एक यहाँ पर जरूर मुद्दा है कि हम क्या सभी किसानों तक पहुंच पा रहे हैं, अभी जो नंबर है, संख्या है किसान भाइयों तक पहुंचने की, वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है, और इस 2 करोड़ संख्या तक किसानों के सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को ये सूचना जारी की जाती है और पहुंचाया जा रहा है।
0: जी डॉक्टर रमेश, विदेशों में जो मौसम पूर्वानुमान है इसकी जानकारी किसानों तक पहुंचे इसके लिए काफी मदद दी जाती है, उस लिहाज से भारत में क्या स्थिति है?
2: भारत में जो इन्फॉर्मेशन है किसानों को पहुंचाने का, वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरी कहते हैं ना, वेदर इन्फॉर्मेशन से क्रॉप के लिए एडवाइजरी भी बनाई जाती है। हमारा 130 सेंटर है, वहां से हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनता है, एक एक सेंटर जो है 4 से 6 डिस्ट्रिक्ट का एग्रो एडवाइजरी बनाता है वेदर इन्फॉर्मेशन से, जो मंगलवार और शुक्रवार का जो हमारा बुलेटिन निकलता है अगले 5 दिनों के लिए, उसके आधारित करके वो क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरीज बनाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का। उससे हम उसी डिस्ट्रिक्ट का जो फार्मर्स डेटाबेस है उसको बिल्ड कर रहे हैं उसी सेंटर में, ताकि उसी सेंटर से उधर से सीधा जो फार्मर्स का डेटाबेस जैसा बिल्ड होता जाएगा उससे हम डायरेक्टली पुश कर सकते हैं फार्मर को। देन उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन फार्मर चाहते हैं, हमारा जो कॉल सेंटर है, IVRS नंबर है, उसके थ्रू आके हमारा विशेषज्ञों से जानकारी और ले सकता है, अधिक जानकारी ले सकता है। हम जो है इसको अभी जैसा हमारा कोलीग ने बताया, पैनलिस्ट ने बताया, 52% से 55% तक वर्षा आधारित सिंचाई देश में होती है, नहर आधारित सिंचाई जो है बहुत कम है उसके मुकाबले। सो इसी एरिया में भी जो न्यूट्रिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, जो सो पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, सीरियल्स है, ये बहुत जरूरी है हमारा संतुष्ट आहार के लिए भी, चावल गेहूं दूसरी जगह से बनने से भी, बट इसकी जो तीनों चीजों का जो है उसकी पैदावार समृद्धि के साथ हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम जो है रेनफेड एग्रीकल्चर का और इरिगेटेड एग्रीकल्चर, कैनाल बेस्ड इरिगेटेड एग्रीकल्चर का, इस दोनों का डिस्टिंक्शन जो है हमारी बुलेटिन में इस साल से लाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि जानकारी
0: कि आगे भी कई ऐसी कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। डॉक्टर रमेश, यहाँ पे पूर्वानुमान की बात हो रही है तो एक अहम पूर्वानुमान पिछले दिनों आया है कि इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे?
2: गर्मी जो है जलवायु परिवर्तन जो ग्लोबली हो रहा है उसका तो असर है, हमारा देश ही नहीं है, सारा देश जो है गर्मी के प्रकोप से झेल रहे हैं। एंड इंडिया मुकाबला देखेंगे ना, अब 2014 में जो IPCC जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो जो है बेस्ट साइंस आधारित किया है, वो 0.86 डिग्री का वार्मिंग हुआ था ग्लोबली। अभी जो है इस साल अंत तक 2016 का अंत तक 1 डिग्री से 0.04 डिग्री की वार्मिंग हो गई है, पूरा वर्ल्ड एवरेज है, बट इंडिया में आप देखेंगे अभी जो है 0.86 से 0.9 डिग्री तक की वार्मिंग हुई है। ये 1901 से 2016 तक का वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग से इंडिया वार्मिंग जो है कम है, ग्लोबली जो 1.04 डिग्री का हुआ है इंडिया में अभी तक 0.86 से 0.91 तक, तो ग्लोबली भी आप कंपेयर करेंगे हमारे ऊपर असर कम है, बट फिर भी हमारे जो देश जो है गर्मी का देश है, समर में हमें बहुत जगह जो है 40 से 45 डिग्री का तापमान सामान्य रूप से रहता है, उसके ऊपर 1 डिग्री भी रहेगा ना बहुत ज्यादा असर करेगा लोगों के जीवन पे और फसलों पे ज्यादातर।
0: डॉक्टर सिंह, यहाँ आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि बताया डॉक्टर रमेश ने कि वैश्विक आधार पर अगर देखें तो कम यहाँ पर जो तापमान में वृद्धि है वो देखी जा रही है, लेकिन फिर भी इसका असर पड़ता है, तो किस तरह का असर यहाँ की फसलों को पड़ने जा रहा है अभी और किसानों को किस तरह से सचेत रहना चाहिए?
1: तापमान बढ़ने से फसलों पर प्रभाव पड़ेगा, फसलों का पूरा अवधि फसल चक्र का कम होता है
0: जी,
1: और तापमान बढ़ने से मौसम में भी परिवर्तन होते हैं तो उसका भी असर पड़ता है। अब फसल पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि माननीय महोदय ने बताया कि जिला स्तर पर हम कोशिश करेंगे कि वहां पर कृषि मौसम विशेषज्ञ एडवाइजरी बनाएं, SMS के थ्रू भेजें, उसमें राज्य सरकार के अधीन जिला कृषि अधिकारी का भी इनपुट जाए, फीडबैक जाए, जो कि सभी जिले स्तर पर किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हमें पता चलता रहेगा कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस तरह का फसल चक्र वो ले रहे हैं, और जो एडवाइजरी में हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो भी चीजें इंक्लूड की जाए, जिसमें कि तापमान के बढ़ने संबंधी या और भी कोई वेदर संबंधी घटना होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें अपने SMS या एडवाइजरी में हम इंक्लूड कर सकें, तो एक काफी एम्बिशियस प्लान है।
0: जी बिल्कुल, यानी कि मौसम संबंधी जो भी जानकारी है वो किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचे और वो उसका लाभ ले सके, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है।
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक नी बाद एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत करूं है तमार सबूनो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM पर। किसान भाइयों आपू खेतीवाड़ी कार्यक्रम हमली रहा है रेडियो टांडिया भील ना खेतीवाड़ी कार्यक्रम में आज नो जो आप विषय है मौसम नी जानकारी। जी हाँ किसान भाइयों, मौसम आप खेती हरू घणो जरूरी है। आपड़ो मौसम नी अगर हमारे किसान भाइयों ने जानकारी थी जाए तो अपनी जो फसल है तीन वगड़वा थी आपू वसाड़ी सकी, तीन समय पर पानी आलवू, समय पर तीनी रख रखाव की कम करवानी, केम के अगर नमी आवी जाए अपनी फसलों में अपनी फसल खराब भी थी सके है। तो इन्हीं सब बातों थी वसवा हरू आप मौसम नी जानकारी होवी घनी जरूरी है। तो किसान भाइयों आज नो जो आपड़ो विषय है तो है मौसम नी खबर। मौसम नी खबर आपुन कहाँ थी मळे, किकम मौसम नी खबर हमळवानी, अने इनसो हूँ हूँ फायदो आपुन थई सके तेना बारामां आपु आज विस्तृतमां जानकारी अने चर्चा करी रहा है। तो किसान भाइयों इना प्रोग्राम ने आगे बढ़ावता जाइन हमळीए हजु महत्वपूर्ण चर्चा ने।
2: किसानों तक मौसम की हर छोटी से छोटी जानकारी पहुंचाने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग का कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग है। इस विभाग का काम फसलों पर प्रतिकूल मौसम के प्रभाव को कम करना और कृषि उपज बढ़ाने में मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करना है। कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग पुणे कई तरीकों से मौसम और खेती से जुड़ी जानकारी किसानों तक पहुँचा रहा है। समाचार बुलेटिनों द्वारा किसानों तक मौसम और खेती से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाई जा रही है। कृषि सलाह से जुड़े ये समाचार बुलेटिन कई स्थानीय भाषाओं में रेडियो के जरिए किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। खेती और किसानों से जुड़े ये समाचार आप दूरदर्शन किसान और आकाशवाणी पर सुन सकते हैं। मानसून के दौरान रोजाना सुबह भी किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसमें जिलों के हिसाब से अगले 48 घंटों के मौसम का हाल बताया जाता है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और उसका खेतों में खड़ी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही

0: ने पानी लगा दिया है उससे पहले जी। तो वो उसकी हवा भी, जो हवा भी बहुत तेज चली है कई दिनों से, उसमें उनको भी फायदा मिलेगा और जो गेहूं जो बढ़िया पकना चाहिए था वो बढ़िया पक भी जाएगा अगर उसने, किसान ने ध्यान दिया। सवाल है कि किसान कितना ध्यान देता है अपनी खेती किसानी पर और मौसम विज्ञान के अनुसार उसका सामंजस्य किसान कितना बैठा पाता है।
1: जी शांतन जी, आपका अनुभव क्या कहता है, किसान कितना इन जानकारियों लाभ है वो ले पाता है?
2: देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जब मॉनसून डेफिसिट होता है, मतलब ओवरऑल जब मॉनसून नॉर्मल होता है मगर कुछ कुछ लोकलाइज्ड पॉकेट्स में बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है। तो जैसे एक जिला में जब हम लोग, मैं जब महाराष्ट्र गया था फॉर इंस्टेंस, तो एक जगह पे बारिश हो रहा है एक ब्लॉक में, उसके बगल वाला ब्लॉक में मतलब एक डेढ़ महीने तक बारिश नहीं हो पाया है। तो हम लोग का जैसे रमेश जी ने जैसे बताया कि हमारा मतलब फोरकास्टिंग कितना लोकलाइज्ड हो पाएगा और कितना जल्दी किसानों के पास पहुंचा जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरशील होगा। और एक बात भी है कि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद, जैसे अभी इतने सारे, जैसे पहले 20% फार्मर्स वर एनरोल्ड इन क्रॉप इंश्योरेंस, अभी 26% किसान इसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ये मॉनसून का डेटा यूज करते हैं। तो ये सेंटर बढ़ने से किसान को मुआवजा मिलने में भी सुविधा होगा।
1: बिल्कुल, एक फायदा ये भी यहाँ पर नजर आता है। चलिए, अब यहाँ पर कई किसान मौजूद हैं, उनके अनुभवों को भी हम जानते हैं और बात करते हैं इनसे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो मौसम पूर्वानुमान है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी खेती किसानी में, उसके अनुसार? चलिए, काफी किसान है, किस तरीके से ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचती है, क्या आप कहना चाहेंगे?
3: मौसम की जानकारी जो पूछते हैं तो कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर से पूछते हैं।
1: ठीक,
3: क्या इसके अलग भी कोई कॉल सेंटर ऐसा है जो मौसम मौसम की जानकारी पूछी जाए?
1: अच्छा, ये जानकारी आप लेना चाहते हैं, आइए पूछ लेते हैं। डॉक्टर रमेश बताएं।
4: ये है हमारा मौसम विभाग का भी फ्री कॉल वाला सिस्टम है, IVRS सिस्टम है, उसको और एक्सपेंड करेंगे ताकि जो हर डिस्ट्रिक्ट का जो फसल का, अलग अलग फसल का जो है जानकारी उसी के अंदर जोड़ा जाए। ये सब हम प्रयास करेंगे इस साल में ताकि किसान कॉल सेंटर के अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी, हमारा स्टेट में जो मौसम केंद्र है उधर से भी आप जानकारी ले सकते हैं, इसका भी प्रावधान करेंगे हम।
1: बिल्कुल, तो ये एक अच्छी पहल होने जा रही है। लीजिए, कुछ आप भी कहना चाहते हैं?
5: 10-11 मार्च में अखबार में आई है कि भाई बारिश होने वाली है, कहीं हल्की कहीं ज्यादा, उसके साथ हवा भी चलेगी। तो कुछ लोग पानी दे रहे थे और मैं सुबह घूमने के लिए जा रहा, फिर शाम को जब टहलने लगा तो मैंने उनसे कहा भाई पानी मत दो, बारिश होगी, अखबार बता रहे हैं। और तो जिन्होंने पानी दे दिया, हमारे जई बहुत बढ़ रही, लड़का हमारा कर लगा पापा हम पानी दे दें, मैंने पानी मत देना, बारिश होगी अखबार बता रहे हो, मौसम बड़ा स्टीक बता रहे हो, जो अखबार में आते हैं उसी के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद में जब अगले दिन में गया तो घर के जो बारिश जो झाई सी चली ना, जिन्होंने पानी दे दिया उनके गेहूं सब लूट गए, उनका नुकसान होगा, अगर मान जाते मैं कह रहा हूँ उनसे भाई पानी मत दो,
1: जी
5: कम से कम ये तो देख लो 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद दे देना, अगर ना 2 दिन में कुछ नहीं हो रहा। और जिन्होंने पानी नहीं दिया उनके खड़े हैं और ठीक पके हैं।
1: तो ये अच्छी बात है, आपने जानकारी का लाभ उठाया। जी,
5: जो वैज्ञानिक जो दे रहे हो स्टीक बात दे रहे हैं अखबार में जो आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है, अगर उस पर चले तो भाई चलिए, हमें उसका ज्ञान नहीं है लेकिन अखबार तो देखते हैं हम, उसमें देख लें मौसम क्या कह रहे हैं, तापमान ज्यादा है या बादल होंगे। तो मेरा मतलब ये, पहले तो हम ये अंदाजा लगाते थे, पहले की बात बता रहा हूँ, जब हम 40 साल पहली बात कर रहा हूँ, चिड़िया रेत में नहा रही है तो हम कह रहे हैं बारिश होगी, ये अंदाजे थे लोगों के।
1: चिड़िया रेत में नहा रही है, विज्ञान ने तरक्की की है तो उसका लाभ भी किसान ले रहे हैं। चलिए, और बाकी किसानों के भी अनुभव जानते हैं यहाँ पे। जी बताएं अपने अनुभव के बारे में।
6: हाँ जी, हमको अनुभव ये है कि हम पहले जो काफी दिन पहले हम बारिश का अनुमान ऐसे लगाते थे जैसे कि हवा चलती थी तो उसमें हमारे बर्तन भी नमी आ जाती और पानी में भी हम टेस्ट जो है कुछ और ही हो जाता था। अभी वैज्ञानिक ने इतना हमको बता दिया कि हम अपनी टीवी पे भी देख लेते हैं और जो हम अखबार पढ़ते तो उसमें भी ये हो रहा है फलाने टाइम पे ऐसे बारिश होने वाली है, तो हम अपने पशुओं को और अपनी फसल पे ज्यादा ध्यान रखते हैं।
1: जी,
6: ये हमने अंदाजा लगाया।
1: बिल्कुल, चलिए, तो वक्त के साथ साथ आप लोगों ने भी काफी तरक्की की है। जी बताए।
7: देखिए, जो जानकारी किसान को दी जा रही है,

0: महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि सब किसानों के पास तो फोन भी नहीं है, सब लोग रेडियो से टेलीविजन का टाइम भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि खेती का जो काम है वो इस तरह का है कि उसमें टाइम टेबल महत्वपूर्ण नहीं है सबके पास में। एक बात ये सही है कि फोन के द्वारा मैसेज भेज दें, बच्चे हैं किसान के पढ़े लिखे बच्चे जो लगे रहते हैं उनसे हमें जानकारी हो जाती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार को ये चाहिए कि सरकार को, जो अभी हमारे वैज्ञानिक साहब बात कर रहे थे रमेश सिंह जी, कि हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कृषि सलाहकार अगर हम एक अपॉइंट कर दें तो वो जाकर के अगर किसानों की मीटिंग लेकर के उस चीज को बताएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा क्रांति होगी।
1: डॉक्टर रमेश कुछ कहना चाहेंगे?
2: या इसके बारे में दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। जो जब बारिश की सूचना अगर दी गई, अगर खरीफ सीजन में तो बारिश तो लगातार आती है, बट रबी सीजन में अगर बारिश की टाइम बारिश का अगर आने का संभावना दी गई, अगर बोरवेल से पंप करके फिर भी आप सिंचाई करेंगे पानी देंगे उसकी जो है खर्चा अलग से ऊपर नुकसान फसल का ऊपर जो होगा वो बताया है महोदय ने, उसके अलावा जो खर्चा जो कर रहे हैं वो भी बच सकता है।
1: जी,
2: पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक एस्टिमेट है 2014 में जो अवॉइड किया है इरिगेशन को बारिश की पूर्वानुमान के अनुसार, उससे लगातार 1400 करोड़ की कम खपत हुई है बिजली का। उतना फायदा तो फार्मर्स को मिला है, फ्री बिजली तो सरकार दे रही थी उधर, बट फिर भी सरकार को इतना तो बचत हुई है। सो अपनी हिसाब से इसका बेनिफिट भी सरकार को मिलेगी अगर अपनी पंप सेट से चलाएंगे, अपनी बोरवेल का पंप से बिजली इस्तेमाल करेंगे, उसका भी बचत होगा, सो डबल बेनिफिट है उसमें। और दूसरा जो है कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार हम जो काम करने जा रहे हैं उसका यही है, वहाँ जो है किसान मेला हो, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट है, इन लोगों के साथ समन्वय करेंगे हम हर डिस्ट्रिक्ट के साथ, तभी उनकी जो हमारी जानकारी सबसे नीचे स्तर तक पूरा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को पहुंचाया जाए, यही हमारा ख्वाहिश है।
1: बिल्कुल डॉक्टर सिंह, कई बातें कई अनुभव के बारे में बताया यहाँ पर किसानों ने, कुछ आप भी उसमें जोड़ना चाहेंगे, ये बातें निकल कर आए।
3: इसमें जैसा कि नागर साहब ने पहले कहा था कि किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, और डॉक्टर रमेश जी ने भी बताया कि जैसे किसान मेला इस सब के थ्रू, तो ये भी एक सभी किसानों तक SMS पहुंचना और किसान उसका सदुपयोग करें, तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग आप कह लें, चाहे फार्मर अवेयरनेस कह लें, किसानों की जागरूकता बढ़ाना बहुत बड़ा काम है जिसको कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलके करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर किसान भाइयों की तरफ से तत्परता होनी चाहिए इसमें हिस्सेदारी लेने की।
1: बिल्कुल, सूचना क्रांति का अहम रोल है इसमें और इसका इस्तेमाल जो है वो किया भी जा रहा है। शांतन जी, ऐसे में आप क्या देख रहे हैं जमीनी स्तर पर कि कितना जो है किसान वो जागरूक हुए हैं और क्या स्तर आपको नजर आ रहा है?
4: देखिए, एक बात तो ये है कि जैसे साउथ वेस्ट मानसून का जो फोरकास्ट आता है वो जून में मानसून शुरू होता है, मगर मार्च तक मतलब अप्रैल में कम से कम किसान को पता लग जाता है, और पिछले 3 सालों में हम लोग देखे हैं कि अप्रैल में मतलब 2 महीने पहले किसान को पता लग जाता है कि इस बार बारिश कैसे होने जा रहा है। अगर मौसम विभाग की तरफ से सूखी फसलों के अनुसार जैसे रमेश जी ने पहले बताया उसका ज्यादातर जानकारी दिया जाए, लोकलाइज्ड फोरकास्ट दिया किया जाए कि यहाँ पे पल्सेस कर रहे हैं, अरहर कर रहे हैं, जो ऑयल सीड्स कर रहे हैं, तो उसमें लोकलाइज्ड फोरकास्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज फोरकास्ट और भी अच्छा मतलब सेग्रीगेटेड फोरकास्ट दिया जाए तो फिर किसानों को और भी उससे फायदा होने जा
1: नागर जी, जैसा कि बताया यहाँ पे डॉक्टर रमेश ने कि किस तरह से बचत हो सकती है किसानों की, बचत होगी यानी कि मुनाफा बढ़ेगा, तो किसानों की आय को जो बढ़ाने का लक्ष्य है उस दिशा में भी ये एक अहम भूमिका सटीक पूर्वानुमान की है।
5: 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे।
1: बिल्कुल,
5: उसका उस आमदनी दुगनी करने का कोई मंत्र नहीं है, उस आमदनी दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री के ये प्रयास है, और उन प्रयासों में एक ये भी है कि पूर्वानुमान सटीक बैठ जाए और उसकी जानकारी प्रत्येक किसान के पास पहुंचे। जो किसान खेती करता है उसके सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए तो निश्चित रूप से किसान की उपज भी बढ़ेगी, किसान खुद अपने आप संपन्न होगा और देश भी संपन्न होगा। मैं कहता हूँ सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी
1: जी,
5: तो अपने आप ही देश की तरक्की होगी।
1: बिल्कुल। तो शांतन जी, आपका आकलन क्या कहता है, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी इससे, और खास तौर पर जिस तरह से इन्होंने बताया है कि जल संसाधन ये सीमित है हमारे पास, उससे किस तरह से उसका संरक्षण कर सकते हैं अगर मौसम पूर्वानुमान का हम सटीक तरीके से इस्तेमाल करें, ऊर्जा की जो खपत है उसे कम कर सकते हैं, ये सब बातें मायने रखती हैं।
4: जैसे 2014 में जब ठीक से बारिश नहीं हुआ था, 14 और 15 में और 16 में मॉनसून मोरलेस नॉर्मल था, उसमें एक साल में 15 और 16 में हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है 252 मिलियन से बढ़ के इस साल का अनुमान है 270 मिलियन टन तक जाने का। मगर ये ऑफ कोर्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छा होगा, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमी में एक रिवाइवल होगा, मगर हम लोग ये भी देखते हैं कि जिस साल बारिश अच्छा होता है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किसान को फसलों का दाम उसके हिसाब से नहीं मिल पाता है, तो ये काउंटर इफेक्ट भी होता है। और लोकलाइज डिस्ट्रिक्ट्स तो है ही, मगर मौसम के पूर्वानुमान से मतलब किसान तो लाभ उठा ही रहे हैं।
1: बिल्कुल। आइए और भी किसानों से यहाँ पे बात कर लेते हैं।
6: जब से मौसम के बारे में पता लगा है तो हमको बहुत बड़ा फायदा हुआ।
1: अच्छा।
6: जैसे कि हम आलू लगाने लगे थे अपना और तो थोड़ी घटा हुई तो मौसम बिगड़ा, तो हमने जो फोन मौसम विभाग वालों से पूछा, उन्होंने कि बहुत तकड़ी बारिश होने वाली है।
1: अच्छा।
6: आप अपने आलू वापस ले जाओ, इतनी तकड़ी बारिश हुई नहीं तो बर्बाद हो जाए, तो बीज खत्म हो जाता। अब जैसे हमें पानी आलू में पानी लगाना तो हम देख रहे हैं भाई मौसम खराब है पैदावार ना, तो बता देते हैं कि पानी मत दो, दो चार दिन में एक दो दिन में बारिश हो सकती है। तो इस विभाग से खुलने से हमें बहुत बड़ा किसानों को फायदा, लेकिन जानकारी हर किसान को नहीं हो पाती।
1: जी, जानकारी हर किसान को नहीं हो पा रही, लेकिन जिन्हें मिल रही है उन्हें फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगी पीछे जो लोग बैठे हैं उनमें कोई अपने अनुभव के बारे में बताएं। जी,
7: अभी हमारे आलू बोते हैं तो मार्च में शुरू में हमने जब खुदाई लगनी थी तो मौसम के बारे में नेट पर देखा और देखने के बाद जब ये पता पड़ा कि तीन चार दिन बाद बारिश है तो जैसे हमारे कोई खेत ऐसे हैं बालू के हैं कुछ ऐसे हैं जिसमें पानी भर जाता, तो पहले हमें मौसम की जब जानकारी होगी तो हमने जो खेतों में पानी की संभावना ज्यादा थी हमने उनको पहले खोदा, तो मौसम से बहुत जानकारी होने से बड़ा काफी लाभ
1: हुआ है आपको भी। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
8: डॉक्टर साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जैसे इन्होंने गर्मी के बारे में बताया कि अभी कुछ पॉइंट करके बताया कि इतनी गर्मी ज्यादा होने वाली है,
1: जी जी।
8: क्या बरसात के बारे में बताओगे, आगे धान की फसल बोने वाली है कि बारिश कितनी होने वाली है या कितने दिन पहले अनुमान उसका लग जाएगा कि जिससे हम धान बोए ज्वार बोए या बाजरा बोए, ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
1: जी डॉक्टर सिंह, आप जवाब देना चाहेंगे इसके बारे में।
9: धान ज्वार बाजरा ये तो खरीफ सीजन के फसल हुए और इनके लिए बरसात की जानकारी अभी देना, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी करता है और उसमें जो मार्च तक के आंकड़े हैं वो पूरे ग्लोब से इकट्ठा किए जाते हैं और लगभग 10 से 15 अप्रैल के बीच में उसको प्रोसेस करके फिर क्या स्थिति बनती है पूरे देश के ऊपर, चार महीने जून से लेकर सितंबर के बीच में क्या स्थिति बनेगी बरसात की, अब 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में विभाग जारी करता है ऐसी भविष्यवाणी। उसमें आपको जरूर मैं ये थोड़ा आगाह करना चाहूंगा कि पूरे देश के लिए वर्षा है, ना कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, जैसे हरियाणा के ऊपर चाहे दिल्ली के ऊपर चाहे वेस्ट यूपी के ऊपर, ऐसा नहीं है। उसका अपडेट जारी किया जाता है जून के शुरू में अपडेट और आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं 15 मई तक, तो उसका फिर से तैयारी की जाती है और विश्लेषण करके जारी किया जाता है। उसमें आपको छोटा क्षेत्र तो नहीं बड़े क्षेत्रवार हिंदुस्तान के ऊपर और चार महीने के लिए फोरकास्ट दिया जाता है और जुलाई के लिए अलग से भी दिया जाता है।
1: जी चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी यहाँ पर मौजूद हैं आप, बताएं अपना नाम और क्या सवाल पूछना चाहते हैं।
10: नाम मेरा विनोद गुर्जर है। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। सभी किसान भाइयों की फसल जो गेहूं की आने वाली है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा अवगत कराएं। 2014-15 में किसान गेहूं से बर्बाद हो चुका है, तो इससे थोड़ा सा
1: प्रमुख फसल है ये और ऐसे में जानना बेहद जरूरी है। बताएं डॉक्टर।
2: अभी अभी जो है 6 और 7 तारीख के पास में एक वर्षा होगी, वो ज्यादातर वर्षा जो है हिल्स में ही होगी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में होगी। हल्की बारिश होगी पंजाब हरियाणा में, बहुत हल्की बारिश होगी, वो भी एक स्पेल होगी, वो भी 6-7 के बीच में, और उसके अलावा 10-12 तारीख जो अप्रैल तक संभावना नहीं है
1: जी। अब जो तापमान है उसमें वृद्धि की संभावना जताई जा रही है, इसका असर क्या पड़ेगा गेहूं के उत्पादन पर?
2: वो तो अच्छी रहना चाहिए, तापमान जो है फसल पकने के लिए अच्छा माना जाता है
1: जी।
2: बारिश जो है उसकी जो हवा जो निकलती है बारिश के साथ वो आने की संभावना कम है। एक ही स्पेल की एक्सपेक्टेशन है 10 से 12 तक अब से लेकर, सो पूरा 14-15 दिन का पहले सूचना है ये
1: जी।
2: कम से कम 6-7 के बारे में 6-7 अप्रैल के टाइम पे एक छोटा स्पेल आने का है, ज्यादातर वो भी हिल्स में ही होगी, प्लेन में पासिंग शावर होगा
1: जी। जी जी बिल्कुल। चलिए और कोई सवाल यहाँ पर पूछना चाहेंगे आप? जी जी
8: पूछना चाह रहा हूँ, पिछले साल गेहूं और भूसा दोनों इतने खराब हो गए, काले पड़ गए, तो अब जैसे टाइम आ रहा फसल कटने का, जैसे भाई साहब ने पूछी है, तो आप बता रहे 6-7 तारीख में बारिश हो सकती है, पिछली बार ऐसा हुआ ना, तमाम गेहूं गिर गया और वो काला पड़ गया, भूस भी बेकार हो गया और अनाज भी बेकार हो गया
2: ना, उस समय तो भारी बारिश थी ना,
8: तो इसलिए हम ये पूछना चाह रहे हैं अब क्या तो कोई ऐसी स्थिति ना पैदा हो, ये बात पूछनी चाहिए। पिछली बार
2: अभी देखिए, अभी अब से 10 तारीख तक आपको बता रहे और 4-5 तारीख को बताएंगे 20 तारीख तक क्या स्थिति रहेगी। पूरा अप्रैल अंत तक तो चलता है आपकी हार्वेस्ट जो है वो देते रहेंगे, हर वीक आपको बताएंगे जरूर।
1: ठीक। नागर जी यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे हैं?
5: नहीं, मैं तो बताना नहीं चाह रहा, मैं तो किसान चैनल से और जो किसानों ने क्वेश्चन किए हैं मैं सबसे बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं बहुत अच्छे जवाब दिए हैं और सटीक जवाब दिए हैं, और मैं समझता हूँ ये ही किसान नहीं, जब ये प्रोग्राम को और पूरे देश के करोड़ों किसान देखेंगे तो वो लाभान्वित होंगे। मेरी तो सबसे यही निवेदन है सभी देश के किसान भाइयों से कि वो सब किसान चैनल को अवश्य देखें और फसलों के लिए सबसे अच्छा जो सटीक पूर्वानुमान आ रहा है उसका फायदा उठाएं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद किसान चैनल को सराहना इसकी करने के लिए जी।
11: अगर जो मौसम विभाग से अगली फसल बोने तक मई में कोई ऐसा जवाब मिल जाए कि मौसम इस तरह का रहेगा इन 4 महीना के अंदर, तो किसान अपनी फसल बदल के बो सकता है। कम बारिश रहती है तो कुछ ऐसी जमीनें हैं जहां पर धान उगा लेते हैं लोग ज्यादा बारिश में, और उनको ये पता लग जाता है मौसम विभाग से कि बारिश कम होगी, तो वो अपनी फसल चेंज करके कोई भी फसल उगा करके अपना जीवन निर्वाह करने का काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बारिश कम होने से जैसे धान की फसल नहीं उगा पाती है, ज्यादा खर्चा आ जाता है, इतनी पैदावार भी नहीं हो पाती है और लास्ट में आकर के वो फसल भी नष्ट हो जाती है
1: जी, जी।
11: तो इसलिए मेरा डॉक्टर साहब से निवेदन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मई तक मौसम विभाग की पूरी जानकारी हो जाएगी या नहीं?
1: जी।
2: पहला जो है अप्रैल की 15 और 20 के बीच में आएगा, जून से अगस्त सितंबर तक कैसा रहेगा, और जो मई की एंड में जो हम अपडेट देंगे ना उसका, वहाँ हम बताएंगे देश का कृषि क्षेत्रों में कम की संभावना है, किस क्षेत्रों में सामान्यता बारिश की संभावना है, किस क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा आने की संभावना है, ये जो है फर्क जो है हम लाएंगे मई की अंत वाला असेसमेंट में, वो भी जून से अगस्त सितंबर तक की 4 महीने की होगी अपडेट, उसके बाद भी हर एक महीने का हम अपडेट देते रहेंगे, उसके बाद जो अभी तक नहीं दे रहे थे हम इस बार से देने का प्रयास कर रहे हैं
1: जी। जी कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं जी?
6: डॉक्टर साहब जैसे हवा चल रही है एक हफ्ते से, तो ये हवा कब तक की उम्मीद है जिस तेजी से चल रही है, जिससे फसल हमारे जैसे पेटा है, मिर्च है, बैंगन है, उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, कब तक किए हैं?
2: अभी ये तो कम हो जाएगी, अभी बारिश हो रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल में, उसकी वजह से ये प्लेन्स में हवा चली है, जब वो बारिश खत्म होने वाली है फिर 6-7 को और एक बार आएगी, तब उसके बाद बढ़ सकता है, बीच में अब से 6 तारीख तक कम हो जाएगी।
6: ठीक है।
1: प्राइवेट बॉस, ये फोरकास्टर की तरफ से अलनीनो की भी आशंका जताई गई है, ऐसी कोई आशंका है क्या?
2: अलनीनो जो है 4 महीने का बारिश का ऊपर असर करता है, अलनीनो अकेला फैक्टर नहीं है इंडिया का जो मानसून का वर्षा है उसको असर करने का। मानसून का वर्षा जो है असर होता है 3-4 ग्लोबल फैक्टर से, एक हमें मेडेनजुलेन आइसोलेशन बोल के कहते हैं, और दूसरा इंडियन ओशन का जो टेम्परेचर है, ईस्ट साइड का वेस्ट साइड का, इंडियन ओशन डाइपोल उसको कहते हैं, ये अलनीनो एक फैक्टर है। एंड देन पूरा यूरेशिया में जितना स्नोफॉल हुआ है अभी जो है मानसून से पहले का विंटर सीजन में, वो भी एक पैरामीटर होता है। एंड देन देश का जो अभी जो गर्मी पड़ रही है, पूरा गर्मी अभी जो गर्मी अप्रैल मई जून मार्च से लेकर मानसून आने तक, मानसून नॉर्थ इंडिया में जो मानसून आएगी जून एंड में और जुलाई की मिडिल तक पूरा राजस्थान तक कवर करती है, तब तक तो इधर गर्मी रहेगी। जो ये गर्मी से क्या होगा, लैंड का और ओशन का जो फर्क है टेम्परेचर का वो ज्यादा होता है, जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वो जो है फर्क जो है टेम्परेचर का डिफरेंस जो है लैंड का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का और समुद्र का, जितना ज्यादा फर्क होगा उतना स्ट्रांग मानसून करंट आएगा। ये सब 4-5 फैक्टर है, ये सब देख के हम 4 महीने का जो बारिश का पूर्वानुमान है ये करते हैं, इसलिए सिर्फ अलनीनो के ऊपर डिसाइड होकर पूरा पूर्वानुमान कभी नहीं बनता है, ये 4-5 फैक्टर कंसिडरेशन करके करता है। बट अलनीनो जो है बहुत कंट्रीज के लिए सोल वेरिएबिलिटी देने का क्षमता रखता है, बारिश के लिए इंडिया के लिए ऐसा नहीं है।
1: ऐसा नहीं, ठीक है। शांतन जी, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, नागर जी आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते
4: हैं। एक सवाल है रमेश जी से, जैसे प्राइवेट फोरकास्टर्स ऑलरेडी एक फोरकास्ट दे चुके हैं जून टू सेप्टेम्बर साउथ वेस्ट मानसून के लिए, तो मतलब मॉडल्स मैं समझ सकता हूँ कि आप IMD और प्राइवेट फोरकास्टर्स जो मॉडल्स यूज करते हैं क्लाइमेट मानसून प्रेडिक्शन का वो अलग है, मगर ये 20 दिन पहले दे देते हैं IMD को, क्यों ऐसा क्यों है कि 1 महीने बाद IMD का फोरकास्ट आएगा पहला फोरकास्ट?
2: ऐसा जो है उनका जो है, अभी दिसंबर में भी हम 9 महीने के लिए मॉडल चलाते हैं, हर महीना जो है हम भी मॉडल चलाते हैं अगले 9 महीने के लिए, ऐसी देखेंगे तो दिसंबर से जो मॉडल चलाया हमने वो भी हमारा अक्टूबर तक प्रिडिक्शन है, उसमें भी जून जुलाई अगस्त सितंबर है। सिमिलरली जनवरी में जो चलाते हैं वो भी 9 महीने नवंबर तक चलाते हैं, बट उसकी जो एनसेम्बल फोरकास्टिंग बोल के कहते हैं हर महीने का 4-4 दिन का गैप में हम मॉडल चलाते हैं अगले 9 महीने के लिए। सो एक सिमुलेशन से हम असेसमेंट नहीं बनाते, मल्टीपल सिमुलेशन से बनाते, उसका सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस असेस करते हैं, उसके साथ साथ मार्च के अंत तक ग्लोबली क्या क्या पैरामीटर्स चेंज हुआ, जैसा अभी बोला यूरेशियन स्नो कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च तक जितना स्नोफॉल हुआ पूरा यूरेशियन कॉन्टिनेंट में दैट हैज ए स्ट्रांग बेयरिंग ऑन मानसून। सो इसीलिए ये सब ग्लोबल पैरामीटर्स भी मॉनिटर करनी है, उसके साथ साथ हमारा सिमुलेशंस भी करनी है पब्लिक डोमेन में हर एक का, अमेरिका का मॉडल भी अवेलेबल है जनवरी से जून जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, फरवरी मार्च लाइक दैट हर महीने का बेस्ड रेनफॉल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो जो है पब्लिक डोमेन का इन्फॉर्मेशन लेके अपना असेसमेंट करके वो सामने ला रहे हैं। बट हम जो है पूरा ग्लोबल पैरामीटर्स मॉनिटर करेंगे एंड रोबस्टनेस ऑफ द सिमुलेशंस को असेस करेंगे, उसके बाद सही जानकारी देने का प्रयास हम करेंगे। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है IMD की 6,000 की मैन पावर है, हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी 200 लोगों की साइंटिस्ट है, एंड देन नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग बोल के नोएडा में सेक्टर 62 में है, वहाँ 70-80 वैज्ञानिक जो है सिर्फ मॉडलिंग के ऊपर ही है। ये इतना जो नॉलेज बेस है इसका तो मुकाबला प्राइवेट ब्रॉडकास्टर का फोरकास्टर का नहीं हो सकता। जो हम जो देंगे बहुत रोबस्ट वेल कैलिब्रेटेड असेसमेंट देश को देंगे, हमारा मैंडेट वही है। हम डिले जरूर
1: इसका असर दिख भी रहा है कि जो भविष्यवाणियां हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की वो सटीक साबित हो रही है। जी नागर जी बताएं।
5: हाँ, मैं डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता हूँ, जो किसान भी पूरे देश का पूछना चाहेगा कि कितने किलोमीटर तक आपकी सटीक मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिल जाती है यदि SMS करता है किसान, तो उस कितने किलोमीटर तक आप बता सकते हैं, या पूरे एक ब्लॉक की बता सकते हैं, या पूरे जिले की बता सकते हैं, उस विषय में किसानों को थोड़ा लाभान्वित करने का कष्ट करें।
2: अभी जो है कंपटीशन होता है हमारा 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर ग्रिड पे
5: जी,
2: हाँ वो जो है उस स्केल पे हम फोरकास्ट बता सकते हैं। 12 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट से नीचे ही होगा, हो सकता है ब्लॉक से थोड़ा बड़ा हो कुछ,
5: ब्लॉक समझिए
2: वो 12 से 12 तक की हमारा क्षमता है। अब जैसा हमारा कंप्यूटर्स आएंगे उसको और फाइन रेजोल्यूशन में ले जाएंगे। अब अगले एक दिन के लिए, दो दिन के लिए अगर आपको चाहिए स्पेशल इन्फॉर्मेशन, वो 3 किलोमीटर में भी देने की प्रयास हम कर रहे हैं।
5: अच्छा।
2: बट वो 2 दिन से ज्यादा नहीं होगा उसका। अच्छा। उसकी जो टाइम है
5: ये भी बहुत बहुत अच्छी जानकारी,
2: वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है। हाँ। बट वो कोशिश करेंगे हम अगले 2-3 दिन जो है 3 किलोमीटर की स्केल में हम दे, उसके बाद जो है 12 किलोमीटर वाला स्केल में दे, इस तरह की प्रयास मिक्स करके देने का प्रयास भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। बट वो जैसा सक्सेस मिलेगा उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा ना हमको, पिछले मानसून को चलाना है, उसके बाद वेरीफाई करना है, उसका स्किल एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, ये सब जारी है। हम करने की चेष्टा तो कर रहे हैं, हम जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं है वो सर्विस के लेवल में लाएंगे
1: नहीं। बिल्कुल, आपका प्रयास सराहनीय है और इसी तरह से और विज्ञान प्रगति करते जाए, किसानों का भी लाभ इससे उन्हें भी होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं, किसान काफी देर से सवाल पूछना चाहते हैं। जी
12: डॉक्टर साहब, मैं देवेंद्र त्यागी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो बिजली पड़ती है, कड़कती है, इससे जान माल का काफी नुकसान होता है, भैंस पे भी पड़ जाती है, आदमी इंसान पे पड़ जाती है, क्या इसके बारे में इससे पढ़ने से पहले कोई जानकारी मिल सकती है क्या?
2: यही है, इसमें भी वो आंधी से रिलेटेड ही है ये भी। आंधी में बारिश नहीं होती, इसमें बारिश के साथ थंडर भी होता है और लाइटनिंग डिस्चार्ज भी होती है, ये सब जो दोनों रिलेटेड चीजें हैं, दोनों पे अब रिसर्च चल रही है।
13: किसान साथियों, हम आशा करिए हैं कि यू आज नो कार्यक्रम जो हत्यू तीन माँ आप घनी करी महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें हमली है और तमुने इन्हीं जानकारी थी लाभ मिलो है। तो किसान भाइयों, आज ने जो अपनी चर्चा हती मुख्यतः अपने जो चर्चा करी है पानी नी ऊपर चर्चा करी, अपना मौसम ना ऊपर चर्चा करी है, घना खरा किसान भाइयों भी अपना अपना सवाल पूछा है। तो अलग अलग प्रकार नी जो मौसम नी जानकारी जो अपन अपना रेडियो ना माध्यम थी अपन मळे है, अपन टीवी कार्यक्रमों नी माध्यम थी अपन मळे है, बाकी समाचार पत्रों नी माध्यम थी अपन मळे है, आजकल सोना मोबाइलो मा भी अपनो जो मौसम नी जानकारी अपन मळी रही है। तो इन्हीं पर आप जो पेलखाना मौसम में रमणे ना मौसम में घणो फरक आयो है, केम के अगर आप मोबाइलों में देखी आप पूछी से सोरान की नी सोरा देख खरो पानी आवी रोक नहीं आवी रो, तो इन्हीं पर घनी खरी जानकारी जो पेलखी हती ना हाव हती तीनमा घणो अंतर आवी रो कि अगर थोड़ी सटीकता आवी रही है। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं आपन जो मौसम नी जानकारी मिली रही है इन जानकारी थी आपन घणो फायदो मिलो है, केम के आप जानिए है कि मौसम थी अगर जो आपनु धान बारतो आप हुकाड़िए, वगर हुकाड़ेलू धान आप घर में घाली नहीं सकी, तो अगर जो भी धान आप हुकाड़ियों है तो तीन मैतू गालवा हारो जो अपनो कसरू कुट्टू है, तो डगरान खवाड़वा हारो अगर तीना ढंग थी आप अवेर नहीं करिया तो त्यू खा त्यू सारू है त्यू उल्लई जा है तो तीन फिर डगरा खाई नहीं सके, तो कहीं ना कहीं आप किसान भाइयों घणो नुकसान थी जाए है। तो तीन ती वसवा हारू मौसम की जानकारी जी आपन मिली रही है ये घनी खरी फायदेमंद जानकारी है, ये बात किसान भाई भी जाने है और इन पर आगाड़ी भी चर्चा था है। अगर थोड़ी हजू इन पर जो संभावनाएं है जो आपन मिले है तिनमा थोड़ो हमने 19-20 नो फर्क है, लेकिन अगर थोड़ो हजू इन पर जो रिसर्च चाली रही है तिने बाद थोड़ी हजू आपन सटीकता मड़वा लागी जाए। तो किसान भाइयों, कहीं ना कहीं मौसम की जानकारी थी आपू अपना फसल ने भी वसाड़ी सकी, आपू अपनी फसल में कई नी फसल लगाड़ी है तीना बारा भी आपू जानकारी ली सकी। तो आज ना इना कार्यक्रम में बस इतरू से तमार थी, फिर काल मुलाकात था है इना समय पर, इतरे बड़े लारो हमारी हाथे रेडियो टाटिया भी 90.8 FM नी हाथे झाबुआनी आवाज पर।
14: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
13: नमस्कार किसान भाइयों, आप हमली रहा है रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM नो यू खेतीवाड़ी कार्यक्रम आपन खेतीवाड़ी थी जोड़ेली महत्वपूर्ण जानकारियों ने आपड़ी तक पुगाड़वानो प्रयास करे है। तो किसान भाइयों, आप रोज हाजे 6-8 वागे तक इना कार्यक्रम ने हमली से अने आशा भी करी है कि इना कार्यक्रम ना माध्यम थी तमे घनी खरी महत्वपूर्ण जानकारियों हासिल करियो है, अने घणा खरा किसानों अपना सवाल भी मोकलाया है, तीन थी अमू यू मानी ये है कि अपना किसान भाई कहीं ना कहीं हमारा इना कार्यक्रम से लाभ ले रहा है। तो किसान भाइयों, आज फिर हम तुम्हारी अगाड़ी प्रस्तुत है, उपस्थित है एक अजू नवू बेहद नवू प्रोग्राम लेने। आज नो अपन प्रोग्राम है कूड़ा थी सुनू बनावानू प्रोग्राम। हाँ किसान भाइयों, की कम आपू जो अपन कसरू है, जो आपू जाता फेंकी दिए हैं, अगर आपू तिना कसरा ने व्यवस्थित रूप थी नाखवा शुरू कर दी, व्यवस्थित रूप से तिना कसरा नो आपू मैनेजमेंट करवा शुरू कर दी, तो आप यू कसरू से जो आप अधिकतर जो अपने रुपया में जो अपने क्षेत्र में जितनी आखिर लागत लागी रही है, जितना रुपया लागी रहा है, तीन आपू कम करी सकी, ना केवल तीन आपू कम करी सकी लेकिन तीन आपू वेसी भी सकी। जैम कि अपने किसान भाई जाने हैं अपने गोबरी खाद कितनों लाभकारी है, हमारे किसान भाई घना खरा किसान भाई असल तरीके से जाने हैं ना आजकल वाकिफ से कि खातर वालों खावाती बीमारियों आवी रही ने अपन अगर पेलखाना जो लोग हता जो गोबरी खातर ने इस्तेमाल करते ला और हर घेरों में डगरा होतेला है रेतेला रेतेला। तो किसान भाइयों, समय इतना नहीं बदलो है, अब हमें भी ये संभावना है कि आप मनक जो है अपने खेतर में जो अवशेष नकली रो है तिंतु भी आप एक डगरू तो आराम था पाड़ी सकें, लेकिन आर के मुन जरूरत है कि जो दवाइयों आप सारू मारवानी दवाइयों नाखी रहा है, फसलों ने मोटी करवा हरू दवाइयों नाखी रहा, हर जगह आप दवा नाखी नाखी अपनी फसलों ने मोटी करी रहा है, तो तेज दवा खाई खाई आप शरीर भी कमजोर अने बीमार थातु जा रू है। तो किसान भाइयों, आर की आप जरूरत है कि हमोन आपड़ो रख रुख बदलवानी जरूरत है। तो किसान भाइयों, आज ना कार्यक्रम में आपू जानिए कि कम तरीके थी आपू अलग अलग कचरा नो उपयोग करीन उपयोगी खाद की कम बनावी सकी, ली विस्तृत जानकारी इना कार्यक्रम में।
1: एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े किसी गंभीर मुद्दे को मंथन के जरिए दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय है जैविक खाद यानी कचरे से सोना। हरित क्रांति से पहले देश में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग खेती में अभी जितना नहीं होता था। खेती का तरीका काफी कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित थी, लेकिन समस्या ये थी कि इस तरह की खेती में उपज काफी कम होती थी। इतनी कम उपज देश की बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने में सक्षम नहीं थी। ऐसे में हरित क्रांति की जरूरत हुई। इस क्रांति ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन जल्द ही इसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने मिट्टी और पानी को तो प्रदूषित किया ही, उपज को भी जहरीला बना दिया। इसलिए अब ऐसी खेती की बात की जा रही है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हो लेकिन उपज के मामले में कोई कमी ना हो। जैविक खेती ऐसी ही तकनीकी है। इस तरह की खेती में कंपोस्ट खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है। आज के वाद संवाद में हम कंपोस्ट खाद की उपयोगिता और इसके महत्व पर चर्चा करेंगे। जैविक खाद एक तरह से प्रकृति के लिए तेरा तुझको अर्पण जैसी ही है। इस पर बातचीत के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व कृषि राज्य मंत्री डॉक्टर सोमपाल शास्त्री, साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शिवाधर मिश्र, कृषि मंत्रालय में उप आयुक्त डॉक्टर एएस राजपूत और वरिष्ठ कृषि पत्रकार एसपी सिंह। आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। खास बात यह है कि आज हमारे साथ दूर दराज से आए किसान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैविक खाद यानी कचरे से सोना, ये सोना कितना खरा और कितना खोटा है, इस पर वाद संवाद शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।

0: कंपोस्ट एक तरह की जैविक खाद है जो पौधों, पशु अवशेषों, अपशिष्ट यानी कचरे से तैयार की जा सकती है। अपशिष्ट में गोबर, फसल अपशिष्ट या बूचड़खाना अपशिष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बिना छटाई का घरेलू कूड़ा करकट या सीवर साफ करने वाली इकाइयों से निकलने वाली गाद भी कंपोस्ट खाद बनाने के काम आती है। इन सब चीजों को धीरे धीरे सड़ाकर कोई भी किसान कंपोस्ट खाद तैयार कर सकता है। कंपोस्ट खाद मुख्य रूप से 6 तरह की होती है। ग्रामीण कंपोस्ट गोबर या खेती के कचरे से तैयार की जाती है। शहरी कंपोस्ट शहर की गलियों से निकलने वाली गंदगी और कूड़ेदान के अवशेषों से बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से तैयार होती है। नडेप कंपोस्ट मिट्टी, फसल अवशेष और गोबर से बनाई जाती है, जबकि संवर्धित कंपोस्ट रॉक फॉस्फेट या यूरिया के संवर्धन से तैयार की जाती है। अब सवाल उठता है कि कंपोस्ट खाद जरूरी क्यों है? दरअसल इसके कई फायदे हैं। इसमें 12-15% के बीच कार्बन होता है, जो पौधे की बढ़वार के लिए बेहद जरूरी है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में ज्यादा देर तक नमी बनी रहती है, जिससे पानी की बचत तो होती ही है, पौधों को लंबे समय तक पानी भी मिलता रहता है। कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से उर्वरक का पौधों पर असर बढ़ जाता है। ये मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है, यानी मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाता है। इससे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या और उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये कूड़ा करकट जैसी बेकार और प्रदूषण फैलाने वाली चीज को भी उपयोगी बना देता है।
1: तो रिपोर्ट में देखा आपने कि कंपोस्ट खाद किस तरह से तैयार किया जा सकता है और उसकी क्या उपयोगिता है। आइए चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले पूर्व कृषि राज्य मंत्री डॉ. सोमपाल शास्त्री जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हरित क्रांति जो समय की मांग थी, उस समय रासायनिक खाद थी और उसका इस्तेमाल भरपूर किया गया, लेकिन इसकी कीमत किस हद तक मिट्टी और पानी ने चुकाया है और कितना नुकसान हुआ है इससे?
2: जिस समय मैं कृषि मंत्रालय का प्रभार संभाल रहा था, उस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत की गई थी
1: जी।
2: उसमें ये बात आई थी सामने कि जितने हरित क्रांति के तथाकथित अधिक उत्पादन के क्षेत्र हैं भारत के, उसमें 16 मिट्टी में उपजाऊ तत्व पाए जाते हैं, जिसमें 9 मुख्य हैं
1: जी।
2: जिसमें पहला नाइट्रोजन, फिर फास्फेट, उसके बाद पोटाश, उसके बाद मोलिब्डेनम, फिर सल्फर, फिर जिंक, फिर फेरोन, फिर मैग्नीशियम और बोरॉन
1: जी।
2: ये 9 के 9 दीर्घकालीन दृष्टि से उनमें गिरावट आई है।
1: अच्छा।
2: और नत्रजन की, नाइट्रोजन की अधिकता हो गई है। उसके कारण एक तो ज्यादा कीड़े और परजीवी फसलों को और उनके ऊपर बीमारियां लगने लगी। दूसरे, उससे सारी जितनी भी खाद्य श्रृंखला है जो आपने बात कही, उसमें विषैले तत्वों के अवशेष इतनी मात्रा में हो गए, तरह तरह की बीमारियां आने लगी
1: जी।
2: तो मिट्टी की जो प्रोफाइल थी, जो उर्वरकता थी, जो तत्व उसमें आवश्यक थे उत्पादन के लिए, वो घटे और नाइट्रोजन की बहुतायत हो गई, फास्फेट की भी हुई। वैज्ञानिक कहते हैं कि नाइट्रोजन तो नुकसान करती है पर फास्फेट नहीं करती, परंतु ये भी मिथ है, ये भी गलत है।
1: अच्छा।
2: फास्फेट के जो रेजिड्यू हैं, जितना वो दिल के ऊपर और शरीर की संरचना के ऊपर उनका दुष्प्रभाव पड़ता है, वो नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। नाइट्रोजन के कारण आपके जोड़ों के दर्द बढ़ना, आपकी कार्टिलेज स्टिफन होनी, आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस, आपके किडनी, गुर्दे और लीवर, सब चीज उससे खराब होती है। और ये बीमारियां ज्यादा आने के कारण कीटनाशक और परजीवी नाशक, जो रासायनिक विषैले पदार्थ हैं जिसे स्प्रे करके डालते हैं
1: जी।
2: आप आश्चर्य करेंगे कि सरसा, अबोर, फाजिलका, फरीदकोट, भटिंडा और गंगानगर, हनुमानगढ़ का जो इलाका है और उधर नागपुर का जहां कॉटन कपास उगाई जाती है, 27-27 स्प्रे करते थे उनके ऊपर। और मालवा का जो रीजन है पंजाब का, जो सबसे تندرست مانا جاتا تھا ہندوستان میں پنجاب کا علاقہ. ایک ایک گاؤں میں 250 سے 500 کینسر کے مریض ہیں, اور ایک ریل ہے جو بھٹنڈا سے بیکانیر جاتی ہے, اس کو وہاں کینسر ٹرین کا نام دیا جانے لگا. یہ بات سب جانتے ہیں. تو یہ اتنے سارے اس کے دشپربھاؤ ہوئے ہیں, اس سے جتنا جلدی باہر آیا جائے گا. ایک سمے لگا تھا کہ اس سے فصل کا اتپادن بڑھا, پرنتو فصل کے اتپادن کے ساتھ زہر کا اتپادن بھی بڑھا.
1: بالکل.
2: اس کے ساتھ پانی بھی پردوشت ہوا. اس کے کارن جو سوکشم جیوک سنرچنائیں تھی, جو مائکروبس تھی, جو ان उत्पादक पदार्थों को खाकर और बारीक करते हैं, वो पौधे में ऊपर चले जाते हैं, उनकी संख्या भी घटी है. वो सब मर गए इन जहरीले पदार्थों से. तो ये इतने दुष्प्रभाव हुए हैं, बड़ा भयावह स्थिति पैदा हुई है. उससे जितना जल्दी बाहर निकला जाए उतना बेहतर
1: है.
2: और एक बात आपने जो कही कि उत्पादन कम होता था, ऐसा नहीं है. तंजौर का और उत्तर भारत का, अल्बर्ट हार्वर्ड की एग्रीकल्चर टेस्टामेंट ऑफ इंडिया पढ़ के देखिए आप, इतना उत्पादन विश्व में कहीं नहीं होता था. अगर जैविक सामग्री जमीन में जितनी आवश्यक है, जितनी आपने निकाली, और फसल चक्र आपका उचित है, जिसमें कभी दलहन की फसलें, कभी अनाज की फसलें, कभी गन्ने की, कभी कपास, ऐसे अदल बदल के और खेत को खाली करके रखें, तो कम लागत में इससे बेहतर और ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन हो सकता है. ये बड़ा भारी वैज्ञानिकों ने गलत फहमी फैला दी है कि इससे उत्पादन घटेगा.
1: बिल्कुल. तो खाद्यान्न की जो जरूरत थी उसे देखते हुए श्रीवादर जी, रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ एक वक्त पर, कब ऐसा महसूस किया जाने लगा कि अब बहुत हो गया, दुष्परिणाम बहुत ज्यादा अब सामने आने लगे हैं और अब जैविक खेती का रुख किया जाए?
3: सबसे पहले ये देखा गया कि पहले शुरू शुरू में जब हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया तो लगा कि बहुत तेजी से पैदावार बढ़ रही है और ये लगातार टिकाऊ रहेगी. लेकिन 80 के दशक के बाद ये देखा गया, 80-90 के बीच में, कि धीरे धीरे जो हम जितनी नाइट्रोजन या जितनी भी ये उर्वरक डालते थे उसके तुलना में उससे दूनी भी डालने पे उतनी उपज नहीं बढ़ी. इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. मतलब हम जितनी पहले डालते थे, लागत लगाते थे, उससे दोगुनी लागत लगाने पे भी हमें उतनी बढ़ी हुई उपज नहीं मिली,
1: नहीं मिल पाई.
3: तो तब से हमें लगा कि ऐसा क्यों हुआ. उसमें जो जो मुख्य कारण ये था कि हमारे किसान भाइयों ने 2-3 तरीके के ही पोषक तत्व प्रयोग किए. ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रयोग किया.
1: बिल्कुल.
3: उसके बाद फास्फोरस कहीं कहीं प्रयोग हुआ और पोटास भी कहीं कहीं किसान भाई प्रयोग करते थे. अब पौधे को तो 16-17 तत्व चाहिए. अब 17 आजकल हो गए हैं एसेंशियल. पौधे को तो उतने चाहिए ही चाहिए. और हमारी जमीन में जो मौजूद थे उस नाइट्रोजन और उसकी तो भरपाई आपने कर दी, अलग से दे दिया. लेकिन जो बाकी पोषक तत्व थे वो भी तो जमीन से निकले, तो माइनिंग हुई, मतलब जमीन में कम हो गए और धीरे धीरे जो संतुलन था एक वो बिगड़ता गया. तो हमारा जो पोषक तत्वों का जो जो पौधों को मिलते थे संतुलित रूप से, वो मिलने बंद हो गए और उससे ये उपज घटनी शुरू हो गई. क्योंकि 16 में से अगर एक भी पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में नहीं मिलेगा तो उपज घटेगी. तो इसके कारण घटने लगा और गुणवत्ता में भी कमी आने लगी.
1: तो एसपी सिंह जी, जैसे कि बता रहे हैं श्रीवादर जी, 80 के दशक के बाद दुष्परिणाम जिस तरह से सामने आने लगे, उसके बाद के सरकारों ने किस तरह का प्रयास किया है इस दिशा में कि जैविक खेती को अब बढ़ावा दिया जाए?
4: अभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया एलेबोरेट किया और सोमपाल जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से पुराने इतिहास को पूरा दोहराया. और खेत की स्थिति क्या है, मिट्टी की, सॉयल का हेल्थ किस तरह से डाउन गया है, मिट्टी कैसे बीमार हुई है, इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो सबसे पहला काम किया कि कैसे खेत की सेहत सुधारी जाए.
1: बिल्कुल.
4: इसलिए पहले उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की बात है. पहले इसकी जांचो, पता करो कि इसमें क्या है क्या नहीं है. आज का जो चर्चा का विषय है कि इसमें कंपोस्ट खाद की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है. बाकी चीजें उन लोगों ने बता दिया है. भाई तीन चीजें प्रमुख होती है मोटा मोटी, नत्रजन, पोटास और फास्फोरस, जिसका प्रयोग किसान भाई खूब जोर शोर से करते हैं. डॉक्टर साहब ने कहा कि बढ़ रहा है रासायनिक खादों का प्रयोग, बढ़ने के बाद भी हमारा प्रोडक्टिविटी हमारी घट रही है, बढ़ नहीं रही है जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए. पहले अगर हम 10 किलो डालते थे कोई चीज तो उससे प्रोडक्शन अगर हमारा 100 किलो होता था और आज हम जब डालते हैं तो प्रोडक्शन 1/3 भी नहीं होता. उसकी वजह यही है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे हम आप किसानों को समझने के लिहाज से बताएं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई दवाई अगर हमें किसी इलाज के तौर पर देता है तो उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर विटामिन की गोलियां भी दी जाती हैं, विकासूल की, फला की, ढेका की, इसलिए दी जाती है ताकि वो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है बॉडी के अंदर खत्म हो रहा है वो उसको हो जाए। यही स्थिति कमोबेश जमीन की भी हुई है। जमीन के अंदर से अगर आप पर हेक्टेयर या पर एकड़ 12 टन 20 टन आप निकालते हैं, आप भूसा, अनाज, जितना चीजें निकलती हैं उसी रेशियो में उसमें जाना चाहिए। हो क्या रहा है कि हम अपनी खेती काटते हैं, खेती काटने के बाद उसमें से जो निकलता है उस रेशियो में ना हम गोबर डालते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें कार्बन की कमी आ रही है। अब आप देखिए कि जो सबसे बड़ी कमी आई कार्बन, कंपोस्ट की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है पूरे इस रीजन में, जिसमें पहली हरित क्रांति आई उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब, इन स्टेट्स में सन 70 से पहले 1970 के पहले तक 0.5% कार्बन कंटेंट हुआ करता था। कार्बन मीन्स वही गोबर की खाद, ये जो कंपोस्ट खाद की जिसकी बात की, जिसके चलते 17-18% तक कार्बन मिलता है। कार्बन घट के आज की स्थिति में यह हो गया है कि 0.2% तक, अलार्मिंग मतलब यह खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। आज देश का सबसे उपजाऊ इलाका कहा जाता है पंतनगर का इलाका। आज स्थिति में अभी डॉक्टर मंगला राय से बात कर रहा था आज सवेरे ही, इस पर चर्चा करने से पहले, डॉक्टर साहब इसमें क्या हुआ है, तो बोला पंतनगर की स्थिति यह हो गई है कि वहां पर 0.7-0.8% तक कार्बन कंटेंट हुआ था, आज वो घट के हो गया है 0.5%। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे नॉर्दर्न रीजन में, सॉरी ईस्टर्न रीजन में हरित क्रांति की घोषणा की गई है, तो इसके लिए क्या होगा? तो उन्होंने कहा साहब वहां का कंटेंट 0.5% से आगे नहीं है और ये अलार्मिंग पोजीशन है। किसी भी हाल में अगर मिट्टी को स्वस्थ बनाना है तो 2% तक,
1: ऐसे में
4: 2% तक कार्बन कंटेंट होना चाहिए। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ेगा, और वो तब बढ़ेगा जब आप कंपोस्ट खाद डालेंगे और जो उसके निकाला जाता है जितना मिट्टी से उसी रेशियो में आप मिट्टी में डालेंगे।
1: बिल्कुल, तो इसके लिए किसानों को प्रेरित करना होगा राजपूत जी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो जैविक खाद है उसका इस्तेमाल करें। इसके लिए सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है और आर्थिक सहायता भी क्या किसी तरह की मिल रही है इसके लिए?
5: जी मोनालिसा जी, बहुत अच्छी बात है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, जैसे कि शास्त्री जी ने बताया, इससे पहले कि मैं क्या क्या आर्थिक लाभ किसानों को दिए जा रहे हैं, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात है। संस्कृत में अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम वनोधम, यत्र तत्र दुर्लभ अस्तु, इसमें इसका सार छुपा हुआ है। संसार में ऐसा कोई, इसका जरा सा मैं भावार्थ बताऊं आपको, संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसे मंत्र ना बन सके, संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसके अंदर औषधि गुण ना छुपे हों, इसी तरह से संसार में ऐसा कोई किसान या ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ना छुपी हों। हमारे किसान भाइयों ने खुद बहुत सारे काम, अगर आप देखें तो जैविक खेती के लिए बहुत सारे काम किए गए। मैनेजमेंट की जरूरत है, जैसा कि सर ने बताया, जैसा कि बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां भी हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको लेके स्कीमें बनाई। जैसे खास तौर पे आप बात कर रहे हैं, हम जिसके सिटी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं हम, जो तो सिटी कंपोस्ट के लिए 1500 रुपए पर टन की प्रावधान है। इसके अलावा और

0: के और इस तरह के कुछ आईटी केस बॉटनिकल एक्सटेट के लिए भी हम लोग उनको फंड यानी कि सहायता राशि दे रहे हैं। फिर अभी मिशन आर्निंग वैल्यू चेन डेवलपमेंट में भी पूरा किसान के प्रोडक्शन से लेके उत्पादन से लेके उस सब के लिए प्रावधान रखा गया है
1: जी। यानी कि सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। शास्त्री जी हमें बताएं जरा, जिस वक्त आप कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे उस दौरान किस तरह के प्रयास इस दिशा में हुए और तब से लेकर अब तक आप कितनी प्रगति इस क्षेत्र में देख रहे हैं की हुई है?
2: दो मुख्य प्रयास हुए थे उस समय। एक तो हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जैविक कृषि की आवश्यकता, उसके लिए तकनीकी उपाय और उनको आर्थिक दृष्टि से लाभ कर कैसे किया जाए, उसके लिए एक समिति बैठाई थी, उसकी रिपोर्ट आई
1: जी।
2: वो कुंवर जी भाई यादव एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिका पढ़कर आए थे, गुजरात के रहने वाले थे, उनकी अध्यक्षता में, और उस रिपोर्ट को लिखने में मैंने भी अपना बहुत सक्रिय सहयोग दिया था
1: जी।
2: वो रिपोर्ट आई, उसमें एक संस्तुति की गई थी कि एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान की हमारी जो व्यवस्था है आईसीआर सिस्टम, उसी के तहत एक केंद्र स्थापित किया जाए जिसमें हमारे अधिकारी भी रहे हैं। उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग
1: जी,
2: जैविक कृषि का राष्ट्रीय केंद्र जो गाजियाबाद में स्थापित हुआ है। मेरा मन उसको गाजियाबाद में स्थापित करने का नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिकों की भी ये प्रवृत्ति हो गई कि वो भी बाबुओं की तरह काम करें, मुझे क्षमा करेंगे आप दोनों। हम चाहते थे कि वो कहीं दूर किसान के खेतों के बीच में हो, इतनी जमीन हो कि उसमें वो प्रयोग वहां करके दिखाए, वहां जाइए, एयर कंडीशन रूम बने हुए, बिल्डिंग्स बनी हुई है, और अगर प्रयोग की बात करें तो सिवाय टीवी के और वो दूसरे की प्रस्तुति के कोई व्यावहारिक वहां उसका प्रयोग नहीं है। तो फिर भी वो एक बना, 100 करोड़ उसके लिए निर्धारित किया गया। मैं फिर योजना आयोग का सदस्य बना, वहां भी उसको हमने समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया। वो केंद्र काफी अच्छा काम कर रहा है, सभी राज्यों को उसमें ला रहा है, राज्य सरकारों की इसमें, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में इस विषय के ऊपर प्रतिबद्धता रही है सभी स्तरों के ऊपर, उनके जो आनुषंगिक संगठन है उसमें भी और पार्टी में भी, ये एक सुखद बात है। परंतु कोई बहुत विशेष प्रगति अभी नहीं हो पाई।
1: अच्छा,
2: जैसे शहरी कूड़े की बात है तो एक छोटी बात आपको बताऊं, जब मैं उपाध्यक्ष था सरकारी योजना आयोग का मध्य प्रदेश शासन का, तो उस समय ने प्रस्तावित किया था कि भोपाल जैसे शहर में, और उसकी भी एक तो जहां सरकारी अधिकारी रहते हैं चार इमली और एक बहुत पॉश कॉलोनी है अरेरा, उन दो में हम प्रयोग करें,
1: ठीक है,
2: कि डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को घर के स्तर के ऊपर छांट दें
1: जी।
2: उसमें जो डिग्रेडेबल मटेरियल है जिससे खाद बन सकता है, उसका एक सप्ताह या महीने में हमको अंदाज हो जाएगा कि यहां से 50 टन रोज निकलता है, 30 टन रोज निकलता है। उसके शहर के बाहर जो परती जमीन पड़ी है पहाड़ी, जहाँ कुछ कोई चीज पैदा नहीं होती, वहां गड्ढे बनाए जाएं, और इस तरह के अब आजकल हमारे पास जैविक पदार्थ हैं कि 15 से 30 दिन में उसका खाद डिकम्पोज होके बन जाता है, तो उसको रिले में डालें, तो शहर के सारे कूड़े का प्रबंध हो गया, और किसानों को वहां छोटा 50, 51 या 100 रुपया का एक टोकन ले और वो वहां से भर के ले जाए।
1: अच्छा,
2: तो वो जगह भी ये जो कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं दिल्ली में, गाजीपुर में आपने देखा, बादली में देखा है, सारा पानी खराब कर दिया, इसका स्थायी निदान हो जाएगा और किसान की रासायनिक उर्वरक के ऊपर निर्भरता न्यून हो जाएगी, और खेती में ये जो 16 तत्वों की चर्चा की मिश्रा जी ने, आपको आश्चर्य होगा कि गोबर की खाद अकेली ऐसी है जिसमें 17 के 17 तत्व उतने ही मात्रा में अनुपात में पाए जाते हैं जितनी जमीन को आवश्यकता है, और किसी रासायनिक की जरूरत ही नहीं है।
1: बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो खुद जैविक खाद बनाते हैं, आइए उनसे भी जरा बात कर लें। हमें बताएं कि आप में से कौन कौन जैविक खाद बनाते हैं खुद? बहुत अच्छी बात है, और किस तरह बनाते हैं, क्या है आपका अनुभव, कुछ बताएं।
3: मैंने वर्मी कंपोस्ट के द्वारा जैविक खाद
1: तैयार किया है
3: और एक बार नेडप के द्वारा भी किया है।
1: अच्छा,
3: नेडप में ज्यादा हमें जो मिलती है उस ऑर्गेनिक जो तत्व है उसके नेडप के द्वारा जो तैयार खाद करी जाती है उसमें ज्यादा तत्व मिलते हैं।
1: अच्छा, ये कैसे आपने किया, जानकारी कहाँ से मिली, क्या कोई प्रशिक्षण भी लिया?
3: हाँ जी, कृषि विभाग के द्वारा प्रशिक्षण लिया था जिला स्तरीय, और उन्होंने ही हमें राज्य से दूसरी जगह भी भेजा है जहाँ पे हमने प्रशिक्षण लिया है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर और भी किसान मौजूद है, उनका भी अनुभव हम जान ले जी, बताएं।
4: नेडप तो करते हमने जो है 2009 में
1: जी,
4: हमने राइस में हमारे में दिक्कत आई थी बहुत ज्यादा, मतलब धान की फसल में, तो उसमें जो बकाने रोग

0: हमारे वहाँ,
1: अच्छा,
0: तो हम पूसा NCIPM से मिले, उन्होंने हमारे वहाँ पे जो है गए और हमने कुछ किसान इकट्ठे किए तो उस बकानी रोग का हमें समाधान बताया।
1: अच्छा।
0: तो उस टाइम को हमको ज्ञान नहीं था, तो एक तो उनने हमें ढेचा के लिए कहा।
1: अच्छा।
0: आज हम, मेरा गांव बम्बावड़ है गौतम बुद्ध नगर में, 60-70% मेरे गांव में ढेचा की खेती होती पहले।
1: अच्छा।
0: और उसकी जुताई करके और जब राइस लगाते हैं और एक भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल,
0: एक तो हमको ज्ञान होगा और पहले हमको पता नहीं था कि वैसे ही आता धुंध, दुकानदार हमको दे देता पोटली बांध के और हम स्प्रे कर देते।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है हमें, और इसी तरह से आपके अनुभवों से भी मुझे उम्मीद है कि जो बाकी किसान हमारे ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें भी लाभ मिलेगा। साथ ही ये चर्चा जो हमारी है उसे भी हम जारी रखेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हमारे साथ।
2: कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव, सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव, मसालों की मंडी में कैसी है बयान, कब गरमाएगा गेहूं का बाजार, कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान, मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखिए दूरदर्शन किसान पर।
1: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर हमारा विशेष कार्यक्रम वाद संवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो विषय हमारा है वो है जैविक खाद यानी कचरे से सोना। आइए इस विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद है, साथ ही कई किसान भी हैं। शिवादा जी, हमें ये बताएं कि जैसे ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि यहां पर मौजूद किसानों से प्रशिक्षण की भी बात आई, तो जैविक खाद इस तरह की खाद है जिसे किसान खुद भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण की बात आती है, तो किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं किसानों को?
3: देखिए, जहाँ तक प्रशिक्षण का सवाल है, पहले तो मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड ये बताना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई बहुत सारे बना रहे हैं
1: जी,
3: लेकिन आज भी आप किसी भी गांव में घुस जाइए और गांव के से जब शुरुआत करते हैं तो आपको एक बेतरतीब तरीके से गोबर के कूड़े के ढेर, जिन पर पॉलीथीन फैली हुई है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, और आज भी मिलेंगे, और हमारे किसान भाई उसमें से ही उठा के और उसको खेत में सीधा डालते हैं, आधी सड़ी हुई आधी गैर सड़ी हुई। जो सड़ी हुई खाद होती है डिकम्पोज्ड होती है और थोड़ा बहुत असर करती है, और बाकी जो डालने के तरीके होते हैं फैलाने के, उसमें भी होता है कि ऐसे डाल दिया, धूप उस पे पड़ती रही और 2-3 दिन में सारा का सारा उसमें नाइट्रोजन निकल गया और उसके बाद कह रहे हमने तो खाद डाली थी इसका कोई असर नहीं हुआ
1: जी।
3: और आधी कच्ची खाद पहुंच गई, उसे कहीं दीमक लग रही है और सारे रोग लग रहे हैं, तो ये ना तो हमारा नुकसान ही हो रहा है, साथ साथ जो हाइजीनिक कंडीशन, जो साफ सफाई का है, जो मक्खियां और बीमारियां सब कुछ फैलती हैं। तो हम किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि थोड़ा सा तरीका बदलें, उसको डालने का सही तरीका बनाएं। आजकल मैं बताना चाहूंगा, गड्ढे के अलावा, जो गड्ढे में पहले डालते थे साल भर पड़ा रहता था, पानी की बरसात हुई, न्यूट्रिएंट सारे लीच होके नीचे चले गए, तो उसकी जो गुणवत्ता थी वो भी उतनी अच्छी नहीं रह जाती थी। लेकिन आजकल एक नई तरीका निकाला है जिसको हम बिंडरो मेथड या बायवी तरीके से रैपिड कंपोस्टिंग, बहुत त्वरित कंपोस्ट बनने वाला जो होता है तरीका, इस तरीके में हम पूसा इंस्टीट्यूट में, पूसा अनुसंधान संस्थान में, छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए, बहुत बड़ी लेवल पे जो म्युनिसिपैलिटी का वेस्ट है उसको सबको किस तरीके से मैनेज करें, पूरा बायवी विधि से होता है। ना गड्ढा बनाने की आपको जरूरत है, ना कोई विशेष तैयारी की जरूरत है, आपको सीधा सरफेस प्लेन एरिया आपको चाहिए, उसमें आप 2.5 से 3 मीटर ऊंची और इतनी चौड़ी, जितनी आपके पास जगह हो उतनी लंबी लाइनें लगा लें, उस लाइनों की उल्टाई पलटाई करें बार बार, और साथ में एक माइक्रोबियल कंसोर्सियम आता है जिसमें हम कहते हैं कई तरीके के जीवाणु होते हैं जो कि सड़ाने में सहायक होते हैं, उनको डाल देते हैं शुरू में ही और वो अपना काम करते रहते हैं। वो बायवी वे से ये 30 से लेके, जैसा शास्त्री जी ने अभी बताया था, जिनका इनकी पहले की परिकल्पना थी वो अब साकार हो रही है, कि वो 30 से लेके 90 दिन के बीच में किसी भी तरीके का खेती वाला जो भी पैदा हुआ अवशेष है वो सारा का सारा सड़ा के अच्छी खाद बनाई जा सकती है, और उसमें जो न्यूट्रेंट है, जो पोषक तत्वों की मात्रा जो आम कंपोस्ट हम गड्ढे में बनाते थे उससे भी थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि लॉस होने का टाइम कम मिलता है।
1: ठीक है,
3: तो इस तरीके के साथ में बर्मी कंपोस्ट भी कई तरीके लोग बताते हैं कि इसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर पक्का हो कच्चा हो, हमने इस तरीके का बताया कि किसान के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेड़ की छाया है, हम उसमें भी वर्मी कंपोस्ट अच्छी बना सकते हैं।
1: अच्छा,
3: तो कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाली खाद कैसी बनाए, इस तरीके की हमारे पूसा संस्थान में भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और भी बहुत जगह जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और भी अगर आपको चाहे तो बहुत सी जगह आपको मिल जाएंगी सीखने के लिए।
1: जी राजपूत जी, मैं चाहूंगी कि आप भी इसमें कुछ जानकारियां और जोड़ दें, प्रशिक्षण की कितनी आवश्यकता है, क्या कुछ कोशिशें चल रही हैं। साथ ही जैसे कंपोस्ट यूनिट की बात बताई है शिवादर जी ने, बहुत आसान है इसे बनाना, तो किसान खुद भी अपने स्तर पर ऐसा करके लाभ भी कमा सकता है।
4: सबसे पहले तो जो मिश्रा जी ने बात बताई
1: जी,
4: मैं बोलना चाहूंगा कि किस खाद क्या है ये पहले किसान भाई जान लें।
1: अच्छा,
4: हम सबको जानने की जरूरत है। गर्म है तो खाद नहीं, खाद है तो गर्म नहीं।
1: अच्छा,
4: बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। हम सोचते हैं कि हम डाल रहे हैं खाद, लेकिन हम डालते हैं बीमारियां
1: जी,
4: तो उसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमारे एनसीओएफ ने भी और हमारी दूसरी एजेंसियां आईसीआर वगैरह ने, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सारी लेटेस्ट मेथड अभी आ गई हैं। जैसे कि आपको बताऊं, आपके पास कितना भी गोबर है, सबसे पहली बात खेती करना है तो गाय होना ही चाहिए, गाय से मतलब गाय बैल भैंस सब होना चाहिए। तो एक बहुत बहुत छोटी सी परिकल्पना है जिसको लेके अभी काफी मंत्रालय में भी बहुत सारा इस पे काम चल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि बिना गाय के तो खेती अधूरी है, तो ये गोबर होगा, और गोबर मान लीजिए कितना भी है आपके पास, क्वांटिटी की कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए 50 किलो है, 60 किलो है, तो उसकी कैसी खाद बनाए। मैं अभी एक दो मिनट में इनको बताना चाहूंगा कि खाद जहां भी आती है आप उसको समतल कर लीजिए गोबर की खाद को, और उसमें 60 डिग्री पर आप किसी बांस से किसी लकड़ी से उसमें होल कर दीजिए, और फिर उसमें आप करके देखिए, इतना अच्छा फायदा मिलेगा आपको, इतनी बढ़िया कंपोस्ट तैयार मिल जाएगी। हमारे पास जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, लिक्विड होता है, इसके अलावा हम जीवामृत बनाना सब जानते हैं, हमारे किसान भाई सब जानते हैं कि जीवामृत कैसे बनता है। अगर जीवामृत, और मैं तो कहूंगा कि गौमूत्र से अच्छी कोई खाद नहीं संसार में, अगर कोई अच्छी खाद है तो गौमूत्र है। उस गौमूत्र के को और जीवामृत को मिला के उन जो जो छेद आपने किए हैं होल 60 डिग्री पे, उसमें आप जो है उसको डाल दीजिए। एक होल में लगभग 200 ml के आसपास जो भी आएगा उसमें आप जीवामृत डाल दीजिए। गौमूत्र है तो गौमूत्र डाल सकते हैं आप, आप लाइन से डाल सकते हैं, एक रो में आपने गौमूत्र डालिए, दूसरे में आप जीवामृत डालिए, तीसरी में आपके पास में हमारी जो राख होती है गांव घर की, उसमें पोटेशियम उससे मिलता है। ये जैविक खेती का एक अनुसंधान करके ऐसा हम लोगों ने डेवलप किया है, इसमें साइंटिफिक वैलिडेशन भी हो रहा है। तो ये सब करके 40 दिनों के अंदर, जैसा कि सर ने बताया, 40 दिनों के अंदर इतनी बढ़िया खाद किसान भाई बना सकते हैं, और आपको कहीं फैलाने की भी जरूरत नहीं है। आपका मान लीजिए खेत है, तो कुछ उस खेत में आप अलग अलग जगह पे, और गाय को आपको खेत पे रखना चाहिए एक शेड बना के, गाय बैल भैंस को कुछ आपको घरों में नहीं रखना चाहिए, वहां रखिए, तो ताकि गोबर आपका वहीं खेत पे रहे, लाने की जरूरत नहीं, वहां पर आप अलग अलग जगह पे रखिए और उसको इस तरह से समतल करके, और वहीं पर आप 8-10 एरिया मान लीजिए एक एकड़ में करना है तो आप 4-5 जगह पे करिए, फिर उसको फैलवा दीजिए वहीं पे। इतनी बढ़िया खाद आपके उसमें पहुंच जाएगी जमीन में अपने आप, और फिर उसमें केचुए भी आ जाएंगे, उसमें अपने आप अच्छे, जैसे हम कहते हैं अगरबत्ती लगाते हैं तो अच्छी चीजें आ जाती हैं, ऐसे अगर हमारा गोबर की खाद पहुंच गई तो सारे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो सर ने बताया कि बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म जीव बहुत बड़ा काम करते हैं। आप कहते हैं कि जैसे बात थोड़ा गाय की आ गई, इसलिए मैं बताऊंगा कि जो सबसे अच्छी खाद होती है वो गाय की, देसी गाय की क्यों होती है, आप जरूर पूछना चाहेंगे कि गाय की ही क्यों होती है, क्योंकि गाय के सीकम में जो कहते हैं कि 34 करोड़ देवताओं का वास होता है, वो 34 करोड़ देवता एक्चुअली ये सूक्ष्म जीव होते हैं
1: जी,
4: जो उसके जो किसी दूसरे जानवर में नहीं होते, तो इसलिए
1: तो ये कई फायदे हैं इस तरह से जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। शास्त्री जी, आप ये बताएं कि ये एक मानसिकता बदलने की भी बात हो जाती है, हम चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं कि बहुत सारे फायदे होते हैं जैविक खाद से, लेकिन एक आदत पड़ी हुई है लोगों की कि वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी उपज आ जाएगी, तो ये जो आदत पड़ी हुई है ये कैसे आदत बदलेगी और ये कितना आसान है?
5: आदत डाली किसने? आदत डाली वैज्ञानिकों ने, आदत डाली अधिकारियों ने, पहले उनकी आदत बदलने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, माफ कीजिए मैं एक भद्दा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। 70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है फर्टिलाइजर के ऊपर एक साल के अंदर। अगर इतना पैसा आप जैविक खेती के लिए दे दें और ये सब्सिडी खत्म कर दीजिए, किसान को आदत पड़ी है 360 रुपए का एक यूरिया का कट्टा मिलता है, उठा के उसे फेंक देते हैं, फसल उससे काली हो जाती है, देखने में उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है फोलियर वो अच्छी लगती है, तो हमें भी आसान काम हुआ हुआ है। उसी का केवल अगर 15 या 10 किलो यूरिया पानी में घोल के स्प्रे करें तो वो उससे बेहतर काम करेगा। किसान की आदत बदलने के बजाय जो नीति निर्धारक हैं और ये जो कॉरपोरेट सेक्टर है जिसमें सारे फर्टिलाइजर के उत्पादक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सरकारों से पैसा चो रहे हैं, ये पहले इनका जो हित है जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे, जब तक सरकार की और नीति निर्धारकों की आदत नहीं बदलेंगे, किसान की आदत बाद में बदलेगी नहीं तो विलंब से बदलेगी। सरकार की नीति की समीक्षा हम यहाँ कर रहे हैं, तो पहले सरकार की नियत और नीति बदलने की जरूरत।
1: सिंह जी, आप इस विमर्श को किस तरह से देखते हैं?
6: देखिए, सरकार की नीतियां और सरकार के काम जो पहले से हरित क्रांति, देखिए हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी इस देश को? कटोरा लेके भीख मांगते थे हम देश देश घूम के अनाज के लिए और लाइन में लग के अनाज लेते थे। वही हरित क्रांति जो हरित क्रांति उस समय लाई गई, हमारे वैज्ञानिकों ने लाया तो पूरे देश ने ताली बजाई और खुशी जताई, और डॉक्टर सोमपाल शास्त्री जी भी उस कतार में रहे होंगे ताली बजाने वालों में। लेकिन मैं कहता हूं कि इनका बिल्कुल ये कहना है कि उस समय संतुलन बनाने में गलती हुई। जितना प्रयोग होना चाहिए, जिस अंधाधुंध प्रयोग किया गया, एक शब्द यूज कर रहा हूँ, अंधाधुंध दोहन किया गया उस मिट्टी का, उस जमीन का, संसाधनों का,
1: कमी रही कि इसके दुष्परिणाम
6: मैं बता रहा हूँ, दुष्परिणाम उसका यही हुआ कि जब हम दोहन किसी चीज का ज्यादा करेंगे और इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, करेंगे क्या? देखिए असंतुलन किस लेवल पे हुआ, सिर्फ संसाधनों का नहीं हुआ, मिट्टी का हुआ, पानी का हुआ, यही नहीं, आप दाल और तेल, खाद्य तेल, आज स्थिति है कि हम लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं सिर्फ उसी असंतुलन के चलते, क्योंकि सारा का सारा जोर हमने अपने किसानों पर इस बात के लिए दिया कि साहब गेहूं और चावल पैदा करो देश भर में, और गेहूं चावल पैदा करने के चक्कर में जिस पंजाब और जिस हरियाणा में मोटे अनाजों की, दलहन की, तिलहन की खेती हुआ करती थी और बाकायदा फसल चक्र के तौर पर खेती होती थी और मिट्टी की उपजाऊपन को, उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की क्षमता थी उस मिट्टी में, आज वो मिट्टी बांझ होती जा रही है, वहां की पैदावार घट रही है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बढ़ाए नहीं बढ़ रहा है। तो हरित क्रांति के दौरान जब उसे ठीक है उस समय की जरूरत रही होगी, और आज जितने डॉक्टर साहब बैठे हैं और ये हमारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और अधिकारी बैठे हुए हैं कृषि मंत्रालय के, मैं इनसे जानना चाहूंगा, जरा समझिए एक्सटेंशन के नाम पर क्या हुआ। यहां हम ज्ञान दे रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब और ये सारे लोग, मैं सबसे जानना चाहूंगा ये सारे ज्ञान, सारी जानकारी क्या किसानों तक पहुंची है? बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कि कुछ ही किसी स्टेट के, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक ये जानकारी हो।
1: ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं।
6: देश में जानकारी होगी,
1: लैंड टू लैब टू लैंड की बात तो कहीं नहीं जाती है, लेकिन ये गैप का जो शिकायत है वो लगातार आती रहती है।
4: ऐसा है, हमारा पूरा एक एक्सटेंशन डिवीजन है इसके लिए, हर एक मंत्रालय में अपना एक डिवीजन होता है, सर को पता है और आपको भी पता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट इनको पता होना चाहिए, होगा कि एक पूरा एक डिवीजन होता है, वो यही काम करता है, मैंने जो कुछ भी नई स्कीम्स आ रही हैं वो सबको उनको किसानों तक लैब टू लैंड पहुंचाने का काम, वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। हमारा काम तो किसी पर्टिकुलर स्कीम को लेके उसको बनाने का काम हम देखते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम देख रहे हैं, पर हमारा जो एक्सटेंशन डिवीजन है वो आपको डिटेल में बताएंगे, इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, वो काम चल रहा है इस पर।
1: बिल्कुल शिवाधर जी, आपका भी मैं जरूर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इतने वैज्ञानिक है, लेकिन शिकायत यही रह जाती है कई बार कि जो लैब टू लैंड का जो गैप है वो पूरा नहीं हो पा रहा।
3: जहां तक तकनीकी जानकारी का सवाल है, हम कह रहे हैं कि बहुत हद तक पहुंची हुई है हमारे किसान भाइयों के पास। इनमें से कौन सा किसान भाई ऐसा है जिसे ये पता नहीं कि जैविक खेती या जैविक पदार्थ प्रयोग करने से, जैविक पोषक तत्वों का प्रयोग करने से ज्यादा फायदा है? सबको पता है, लेकिन उसके कई ऐसी भी समस्याएं हैं जिससे कि प्रयोग नहीं कर पाते हैं।
1: जैसे कि
3: गोबर की खाद बनाना, आजकल जब प्रेशर है कि हम ज्यादा पैसा कमाएं, इनका एक होड़ लगी हुई कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ऐसी फसलें उगाएं जिसमें तुरंत पैसा मिल जाए।
1: बिल्कुल।
3: तो उसमें दूसरी बात, जो श्रमिकों की कमी है, खेती के लिए श्रमिकों की संख्या पहले क्या थी, आज क्या है, और आज उसकी रेट क्या है, पहले क्या रेट थे, इन दोनों को देख ले तो 50 किलो का कट्टा यूरिया का डालना बहुत आसान है, खुद ही जाके डाल आएगा। लेकिन जब गोबर की खाद जब 50 किलो की जगह जब हमें 5 टन या 10 टन डालनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें बुग्गी भी चाहिए होगी, ट्रैक्टर भी चाहिए होगा, हमें 4 आदमी भी चाहिए होंगे, वो कहाँ से आए?
1: तो इसका कुछ व्यवहारिक समाधान बताएं।
3: उसका व्यवहारिक समाधान ये है कि हमारे सब किसान भाई एकजुट होके इसके दूरगामी परिणाम को अगर ध्यान में रखें तो धीरे धीरे उसे फसल चक्र में भी अपनाएं, तुरंत लाभ पे ना जाएं, हमें अगली जनरेशन को अगली पीढ़ियों को क्या खिलाना है उस पे जाएं।
1: जैसे एक सोच ये भी है कि अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे तो जो उत्पादकता है वो घटती है, क्या ऐसी भी कोई बात है क्या?
3: नहीं, ऐसा इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैविक खाद का प्रयोग अब जैसे हम जमीन में डालते हैं, अब ऐसा एकदम जैसे आप दे रहे एलोपैथिक दवाई से एकदम आयुर्वेदिक दवाई पे आ जाएं, मैं एक सीधा सा एक उदाहरण ले रहा हूं।
1: अच्छा,
3: तो एलोपैथिक में कहते हैं एकदम असर होता है, इसमें जो यूरिया में और जिसमें भी ये फर्टिलाइजर तुरंत उपलब्ध होती है पौधों को, तो सीधा असर एकदम काली फसल दिखाई देने लगती है। और इसमें धीरे धीरे इम्मोबिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं, पहले शुरू शुरू में थोड़ा कम रिलीज होता है, बाद में एक स्तर आ जाता है जबकि प्रचुर मात्रा में सभी कुछ उपलब्ध होने लगता है। तो उस गैप को आप चाहें कि यूरिया वाला एकदम असर दिखाई पड़े, वो तुरंत नहीं दिख सकता, उसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा मात्रा डालनी पड़ेगी जो कि आजकल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी फसल अवशेष हैं उन सबका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रयोग होने लगा है, और उनको हम जानवरों के चारे के अलावा भी बाकी और चीजों की जगह बेच रहे हैं, और कुछ किसान भाई तो जल्दी में जला भी देते हैं जिसकी बहुत अच्छी खाद बनाई जा सकती है, लेकिन वो भी श्रमिक ही उसके पीछे कारण है।
1: पर्यावरण को नुकसान हो रहा वो अलग बात है, लेकिन क्या अनुभव है किसानों का?
5: एक विषय छोटा सा, ये सारा किसान की अर्थव्यवस्था जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। जैसे आपने कहा लागत ज्यादा आती है, परंतु अगर आप जैविक खेती की उत्पादन देखें, मान लीजिए गेहूं जो है वो 12 क्विंटल हुआ, दूसरा खाद डालने से 14 हुआ, तो इससे अगर 14 आप करेंगे तो इसमें लागत कम आएगी दूसरे के बजाय, और लंबी अवधि में इसकी लागत रासायनिक खेती की ज्यादा रहती है जैविक खेती के मुकाबले में। पोषक तत्व तो बेहतर आते हैं, पानी कम लगता है। अगर आप रासायनिक खाद डालेंगे तो पानी आपको गेहूं में 5 से 6 चाहिए, देसी खाद डालेंगे तो 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 में काम हो जाएगा, तो उससे जल स्तर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो भी एक सवाल है। फिर विषैले तत्वों के अवशेष है, उससे जो शरीर के, जैसे पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जहां मनुष्य का स्वास्थ्य पूरे भारत में सबसे बेहतर माना जाता था, केवल जिंक के कमी होने से डायबिटीज इतनी हो गई गांव में, जिसको कोई जानता नहीं था मधुमेह को, वो जिंक जो है वो गोबर के खाद डालेंगे तो कम नहीं होगा। और कितने भी आप सॉयल हेल्थ कार्ड बना लें, हिंदुस्तान में कभी नहीं हो सकता कि एक एक चीज नाप के आप इतना जिंक डालना, इतना बोरोन डालना, इतना मॉलिब्डेनम डालना, इतना सल्फर, आप देसी खाद डालिए सब अपने आप जितनी जरूरत है सब पड़ जाएगी, पानी की आवश्यकता घट जाएगी, उत्पादकता बढ़ जाएगी, किसान का प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: में समस्या आती है किसान के सामने जब हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, एक रासायनिक खाद के द्वारा प्रयोग किया हुआ प्रोडक्ट है हमारा और हमने जैविक से किया है और रेट जब जाते हैं तो हमें दोनों के बराबर मिलते हैं, उसका हमें जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती, उसके ऊपर सरकार
1: ठीक है। दो महत्वपूर्ण सवाल आपके निकल के आए हैं, एक तो वक्त लगता है, सूक्ष्म जैविक टीका भी विकसित की गई है ताकि कम समय लगे, जहां तक मेरी जानकारी, अगर आप इसके बारे में और भी विस्तार से बता सकें।
2: देखिए ऐसा है कि जो एक भ्रांति है मुझे लग रहा है कि उपज बहुत ज्यादा कम हो जा रही है, आप जैसे रासायनिक खादों से, रासायनिक खाद का मैं ये कह रहा हूँ कि प्रयोग जब करते हैं तो एकदम असर दिखाई, इसका असर नहीं दिखाई देता हो, और हम जो पहली साल या दूसरी साल या तीसरी साल अगर भरपूर मात्रा में हम उनका प्रयोग करेंगे खादों का, जैविक खादों का, तो ऐसा नहीं कि उपज में बहुत कमी आएगी, उपज उतनी ही रहेगी। आप इस चीज को ध्यान रखिए, ये एक भ्रांति है, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा उपज कम हो जाएगी, मैं ये कहता हूं कि अगर सड़ी हुई खाद नहीं डालोगे, अगर सही तरीके से उसका प्रयोग नहीं करोगे, तो हो सकता है आपके खेत में जाके वो सड़ने में जो बैक्टीरिया वगैरह वो काम करते हैं उसे सड़ाने का, तो सारी एनर्जी उधर लग गई, तो जो न्यूट्रिएंट रिलीज एक होता है कि पहले सड़ता है उसके बाद उसमें से पोषक तत्व निकलते हैं,
1: तो सही विधि जानना भी बेहद जरूरी है,
2: तो आपके पास जानकारी तो पूरी उपज मिलेगी।
3: मैं इसमें जोड़ रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो मुझे सरकार के अंदर हो रहा है, मैं उसकी थोड़ा सा आ रहा हूँ। किसान ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, निश्चित रूप से प्रोडक्शन कम होता है डॉक्टर साहब जो भी कहें, लेकिन पहले दूसरे तीसरे साल में घटता है, चौथे पांचवें साल पे वो आता है। सरकार ने एक योजना अभी शुरू की है, उसमें क्या है कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल पर हेक्टेयर में 20, 15 और 10,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है उस किसान को, लेकिन तब दी जाएगी जब वो किसान क्लस्टर बना के कम 50 किसान एक साथ हो, और एक निश्चित है कि भाई 50 किसान हो या एक निश्चित रकबा हो खेत का, इतने लोग क्लस्टर बना के अगर आएंगे तो उनको इस तरह की सुविधा दी जाती है और उन्हें बैंक से बेहतर मतलब रियायती दर पे उनको लोन भी उपलब्ध हो रहा है, उन किसानों के प्रोडक्ट को एक ऐसे डेडिकेटेड मार्केट के लिए वो सरकारी तौर पर इन्होंने व्यवस्था कर रहे हैं। अब ये कितनी कारगर होगी ये तो आने वाले दिन बताएंगे,
1: बताएंगे, क्योंकि बाजार और मूल्य इसकी भी चिंता है जो वाजिब है।
4: जहाँ तक जैविक खेती के उत्पादों की बिक्री की बात करें, अपन मार्केट की बात करें
1: जी,
4: तो अभी सरकार ने कुछ बहुत अच्छी स्कीम, अभी एक मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग लेके आए हैं, उत्पादन से लेके वैल्यू एडिशन से लेके उसका सर्टिफिकेशन भी करा रहे हैं, और उसको जो एजेंसियां हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनके माध्यम से एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा कुछ प्राइम अच्छी लोकेशंस जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर और आपके दिल्ली, आपका चेन्नई, इस तरह की मेट्रो सिटीज में इनके आउटलेट्स भी खोले जा रहे हैं, कुछ मॉल्स में अभी इवन हमने एक कृषि भवन में भी एक शॉप खोल रहे हैं, अभी उसका उद्घाटन किया जाएगा, उसमें सिक्किम या जिस तरह के और भी, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वहाँ हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जैसे, जहाँ पर पूरा जैविक ही होता है, जहाँ कोई केमिकल नहीं डाला जाता, उन सब के प्रोडक्ट्स को वहां पर डिस्प्ले किया जाएगा, उनकी मार्केटिंग भी की जा रही है। पर एक बात मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, हर पूरे हिंदुस्तान के नॉर्थ केबल जैविक नॉर्थ ईस्ट के आप एफपीओस बनाइए, एफपीओस का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जैसे आपने बताया क्लस्टर्स, जब आपके 100-500 हजार किसान मिलके कोई काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो क्वांटिटी में ज्यादा आता है, बल्क में आता है, और जब बल्क में आता है, जब आपके पास बल्क में जब कोई प्रोडक्ट आएगा तो मार्केट चल के आता है। जैविक खेती करने वाले किसानों को मैं ये कहूंगा कि आपका मार्केट आपके घर चल के आता है, आपको मंडी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे शास्त्री साहब बैठे हुए हैं जो जैविक खेती करते हैं, उनके खेतों पर लोग जाके पहले से बुकिंग करा देते हैं।
1: बिल्कुल,
4: ऐसे बहुत सारे किसान हैं, मैं जानता हूं आपके यहाँ बुलंदशहर में है कुछ किसान, जैसे मिस्टर त्यागी करके हैं, ऐसे बहुत सारे किसान हैं, करीब 1,000-1,200 किसानों को तो मैं बाई नेम जानता हूँ, जो जिनके पास लिस्ट होती है उनको बाजार में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। हर आदमी को गेहूं चाहिए, हर आदमी को फल चाहिए, हर आदमी को सब्जियां चाहिए, उनके पास लिस्ट पहुंच जाती है और वो हमें भरोसा होता है।
1: साथ साथ किसानों को शास्त्री जी थोड़े मार्केटिंग के गुर भी सीखने होंगे अच्छा मुनाफा कमाने के लिए जैविक उत्पाद से।
5: सबसे बड़ी कठिनाई है कि किसान के उत्पादन का जो विपणन है मार्केटिंग, उसकी जो पहली व्यवस्था थी वो शोषण पर आधारित थी। व्यापारी उससे खरीद लेता था, मनमाने दाम पे बेच देता था। कृषि उपज मंडी का कानून लाया गया था उस शोषण से किसान को मुक्त करने के लिए, परंतु हो क्या रहा है कि वही व्यापारी आज सरकार का लाइसेंस लेके किसान का शोषण कर रहे हैं।

0: आज भी छूट नहीं है किसान को सब जगह। अगर मेरा गांव जमुना के ऊपर है, मैं अपना गन्ना जमुना के पार हरियाणा के मिल को दे दूं तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। अगर अपनी मंडी के बाहर ले जाके बाहर बेचूं तो मंडी टैक्स की चोरी में गिरफ्तार हो जाऊंगा। एक तरफ सारी सरकारें दम भर रही हैं कि हम वैश्वीकरण कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का किसान एक मंडी से दूसरी मंडी के क्षेत्र में ले जाकर बेच नहीं सकता।
1: ये नाम इस दिशा में एक सराहनीय पहल है कहना पड़ेगा केंद्र सरकार की तरफ से, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना।
0: वो जो एक इटली उस पे किया है, किसान के पास इतना साधन नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि बल्क जब तक नहीं होगा, न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा न राष्ट्रीय व्यापार होगा, उसके लिए आप खोल दीजिए, वो स्वतः ठीक हो जाएगा। जब तक आप सब चीज में कंपटीशन कर रहे हैं तो किसान में क्यों नहीं कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, कहा भी जाता है एकता में बल है, तो इसमें भी सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। जब सब किसान सामूहिक तौर पर आएंगे और इस तरह से अगर प्रयास करेंगे तो उसका फल भी जरूर अच्छा मिलेगा।
2: किसान भाइयों, आज नाना खेती बाड़ी कार्यक्रम थी, आप ये घनी खरी महत्वपूर्ण जानकारी ने जानियो है, तो मुझे जानियो है कि कम आपड़ जो जैविक खातर है तिनी बनावानी अलग अलग विधि कहीं है। जरूरी नहीं मिले कि आप रासायनिक खाद ही आप प्रयोग करिए, बाकी जो आपड़ घेर में पशु है तिना थी भी, आपड़ सब्जियों ना कचरा थी भी, आपड़ फसलों ना कचरा थी भी, और भी अलग अलग जो आपड़ मानिए कि आपू अपना झाड़ू ना पैडा है तिनाती भी आपू जो खातर बनावी सकी, तो ये विधि आपू जानवानी जरूरत है। विधि अगर आपू जानी गया तो आरंभ था इना तीनों प्रयोग करें नापड़ जो रासायनिक खाद नी जो समस्या है तिनता आपू वसी सकी। तो किसान भाइयों, आज ना इना कार्यक्रम में बस इतनुज, तमारती फिर काल मुलाकात था है इना समय पर। इतरे बने लारो हमारी हाथें रेडियो टाटिया भील 90.8 FM नी हाथें झाबवानी आवाज पर।

0: गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को। आज के कलाकार प्रोग्राम में फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो टैलेंट, जो कलाकार, जो गायक है, उनका नाम है प्रवीण कुमार आरेकर।
1: नमस्कार सभी सुनने वाले श्रोताओं को, प्रवीण कुमार आरेकर का प्यार भरा नमस्कार। समी सर, थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को, और आपसे मैं गुजारिश करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
1: जी सर, समी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा पूरा नाम प्रवीण कुमार आरेकर, और मैं तारापुर बोईसर, जो गुजरात बॉर्डर पर है, आपने सुना ही होगा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जी हाँ, मुंबई से आगे है 100 किलोमीटर, वहीं पे रहता हूँ। और म्यूजिक मेरा पैशन है, और बिजनेसमैन हूँ। मेरे रिजॉर्ट्स हैं बोईसर तारापुर में, और डहानू वहाँ पे मेरे रिजॉर्ट्स हैं। बिजनेस करता हूँ, लेकिन म्यूजिक से बहुत जुड़ाव है बचपन से।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। तो दोस्तों आइए शुरू करें प्रवीण जी के पहले गीत से, सुनते हैं।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं प्रवीण जी, और चलिए अपने छुटपन में चलते हैं, अपने बचपन में चलते हैं। जब आप बच्चे थे तो तब क्या सोचते थे कि बड़े होकर क्या बनूं, क्या बनना चाहते थे आप?
1: ये भी एक कहानी है
0: जी।
1: बचपन से फिल्मों के प्रति मेरा लगाव बहुत था। बचपन से ही एक्टर बनने के ख्वाब सपने देखता था, क्योंकि और बहुत कोशिश भी की मगर कुछ बन नहीं पाया, लेकिन ख्वाहिश आज भी है कि एक्टर बनूं।
0: क्या बात है, बहुत खूब, ये बड़ी अच्छी बात है। अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, हमें उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए, बच्चे बने रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं प्रवीण भाई की ही आवाज में।

0: दोस्तों, अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नंबर है 9656517317। ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्रवीण भाई। तो प्लीज हमें बताइए, आपके फेवरेट टीचर कौन थे, कौन हैं और क्यों?
1: इसमें भी एक कहानी है। सभी को टीचर अच्छे लगते हैं, कोई मैथ्स के टीचर अच्छे लगते हैं, किसी को हिंदी टीचर अच्छे लगते हैं। मुझे जो मेरे फेवरेट टीचर थे वो अच्छे लगते थे पीटी टीचर।
0: वाओ, ओके।
1: पीटी टीचर के खेल के प्रति भी लगाव था, और जो हमारे पीटी टीचर थे शिंदे सर, वो मुझसे इतना प्यार करते थे कि हमेशा जो मेरे अंदर, एक्चुअली वहीं से शुरुआत शिंदे सर की वजह से हुई। जब भी पीटी के क्लासेस होते थे तब मुझे वो फ्री टाइम में कुछ गुनगुनाने कहते थे कि आजा प्रवीण, आजा कुछ गीत सुना हमें। इसलिए अच्छा। मेरे फेवरेट टीचर शिंदे सर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जो हम प्रवीण जी के ही फेवरेट टीचर शिंदे जी को डेडिकेट करना चाहते हैं। बहुत खूब।

0: बहुत ही प्यारा प्यारा गीत।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
0: प्रवीण जी, आगे बढ़ते हैं। आप गीतकार हैं, आप गायक हैं, सिंगर हैं, तो जाहिर से बात है आपका कोई पसंदीदा गायक तो होंगे, कौन है वो?
1: जी, जो मेरे फेवरेट और चहेते, सभी के चहेते हैं, वो रफी साहब, मोहम्मद रफी साहब और अभी के सोनू निगम जी,
0: क्या
1: दोनों
0: बात
1: से
0: है।
1: बहुत ही प्यार करता। और एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं भी आज भी जो भी कुछ गा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रफी साहब की वजह से। एक द्रोणाचार्य और मैं एकलव्य हूँ, उनको सुन के ही मैं हर गीत गा पा रहा हूँ। जो आज मैं कुछ जो भी प्रोग्राम्स करता हूँ, शोज करता हूँ, सभी का क्रेडिट रफी साहब को जाता है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी साहब। एकलव्य मेरा भी रोल मॉडल है, एकलव्य से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। एकलव्य के ऊपर वेल इंसिडेंटली मैंने एक किताब भी लिखी हुई है, एकलव्य एक अकेला योद्धा। तो मैं मानता हूँ एकलव्य कि अपने टीचर की मूर्ति बनाकर सारी की सारी शिक्षा लेता रहा और प्रवीण बना उसमें, प्रवीण बना उसमें, क्या बात है। तो आप भी मोहम्मद रफी को देखकर प्रवीण हो गए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं प्रवीण जी की आवाज में, जो एक प्रवीण गायक हैं, ये प्यारा सा गीत।

0: बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। आपकी जिंदगी में सबसे पहली बार आपने खाने की क्या चीज बनाई थी, आपको याद है, और वो कैसी बनी थी?
1: ये भी एक अभियान, जो सुन रहे हैं श्रोता उनके लिए भी एक ये अच्छा एक जोक बन सकता है। पहली बार मैंने गुस्ताखी की थी बनाने की, और बनाने गया मैं, कड़ी होती है, दही की कड़ी बनती है,
0: जी हाँ जी हाँ,
1: वो बनाने की कोशिश की और सबको सरप्राइज देने वाला था।
0: ओके।
1: लेकिन गलती से छाछ की जगह बटर मिल्क की जगह मैंने दूध डाल दिया था, और वो कड़ी बन गई अलग ही, कुछ दही कड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत
1: फंस गया था, फंस गया था।
0: बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। दरअसल आप कुछ अजीब सी बात हो रही है साहब, आप सारे की सारी बातें मेरे मन की कह रहे हैं। आपने पहले एकलव्य की बात करी, फिर आप कढ़ी की बात कर रहे हैं, तो कढ़ी मेरी फेवरेट फेवरेट डिश है खाने में।
1: कढ़ी
0: ओके ओके ओके, नहीं नहीं चिंता ना करें सर, चाय शायद रूप रंग ठीक नहीं होगा लेकिन टेस्ट बहुत जोरदार होगा उसका, आई एम श्योर। तो चलिए दोस्तों, हो जाए एक प्यारा सा गीत, एक टेस्टी सा गीत प्रवीण जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं प्रवीण जी। आपकी हॉबीज क्या हैं, थोड़ा बताइए ना उनके बारे में।
1: हॉबीज एक्चुअली अभी जो मैंने जो कहा कि फर्स्ट मेरी डिश खराब हो चुकी थी दही कड़ी, लेकिन आज हॉबीज में नंबर वन पे है खाना बनाना।
0: अरे वाह,
1: इस तरह से खाना और बिजनेस ही मेरा रिजॉर्ट का है तो शेफ तो होना ही चाहिए, क्योंकि हर काम खुद को आना जरूरी होता है ऑनर को। तो आज अच्छी कुकिंग सीख गया हूँ। हॉबीज में नंबर वन कुकिंग है और सेकंड पे क्रिकेट। क्रिकेट से बहुत प्यार करता हूँ।
0: क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं।
1: जी जी जी जी,
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आपने सुना कि प्रवीण जी की हॉबी है कुकिंग, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए दोस्तों एक प्यारा सा गीत सुनते हैं प्रवीण जी की आवाज में ही।

0: बहुत बढ़िया प्रवीण जी, आप कुछ खेलते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, बिल्कुल फन, इसमें कोई गहराई आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना तो ये सिर्फ आपके दिल की इच्छा जानने का सवाल है कि अगर आपको 24 घंटों के लिए गायब कर दिया जाए, इनविजिबल कर दिया जाए, अदृश्य कर दिया जाए, तो क्या करेंगे उन 24 घंटों में आप?
1: क्या क्वेश्चन है, वाह
0: जी,
1: आप भी मेरे दिल की बात जानते हैं। समीर जी
0: बताइए।
1: अच्छा, तो ये सवाल तो ऐसा कि एक दिन के लिए अगर मैं गायब हो जाऊं, किसी को दिखाई ना दूं, तो सबसे पहले काम में जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था मुझे कि बचपन से क्या बनना चाहते थे, तो मैं एक्टर बनना चाहता था और एक्टिंग में अमिताभ बच्चन जी जैसा कोई नहीं। तो पहले काम वही करूंगा कि छुपके से जाके अमिताभ जी के दर्शन कर लूंगा और उनसे मिलने के बाद जो सबसे संगीत के कॉन्सर्ट होते हैं जिनके टिकट्स लेना हमारे बस में नहीं होता, उन कॉन्सर्ट में जाकर पूरा कॉन्सर्ट देखूंगा संगीत का कि कैसे होते हैं ये कॉन्सर्ट बड़े।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आप एक बार तो अमिताभ बच्चन साहब से मिल के आ जाएंगे और इसके बाद आप जो संगीत के कॉन्सर्ट्स है उसमें घुस के आप संगीत सुन के आएंगे।
1: जी जी
0: भाई, सच में यार प्रवीण जी, मुझे आपके ये दोनों जवाब बहुत प्यारे लगे,
1: शुक्रिया।
0: कई बार ऐसा होता है हमारे पर सामने जब ये सवाल आता है तो हमको ऐसा लगता है कि हम दुनिया ठीक कर देंगे, क्राइम हटा देंगे और गरीबी हटा देंगे। मेरा मानना यह है कि अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया तो ये सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी।
1: अपने आप ठीक हो, सही बात।
0: हमें कोई बहुत लंबी चौड़ी काम नहीं करने हैं, लेकिन हम पर्सनली अपने लिए जब तक हम खुश नहीं होंगे तब तक दुनिया को क्या खुश कर पाएंगे।
1: यस, परफेक्ट।
0: तो अगर आप अमिताभ बच्चन से मिलेंगे या उस कॉन्सर्ट में घुसेंगे तो जाहिर सी बात है आप खुश हो जाएंगे ना।
1: यस,
0: तो ब्यूटीफुल आंसर,
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, आपने सुना प्रवीण जी का बहुत ही क्यूट और बहुत ही सच्चा जवाब। तो चलिए एक गाना भी सुनते हैं प्रवीण जी की आवाज में।

0: बहुत खूब प्रवीण जी, आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या रही है? बेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट इन योर लाइफ?
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल आपने पूछ लिया है। एक्चुअली बहुत सालों के बाद जो ख्वाहिश थी दिल में, संगीत से जुड़ी हुई ये बात है। कुछ कोरोना के बाद में मैं एज अ गुरु टीचर बन चुका हूँ संगीत का। एक्चुअली मैं अनट्रेंड सिंगर हूँ और जो भी मुझे कुछ आता है उससे मैं कोरोना के बाद में फ्री टाइम में क्लासेस स्टार्ट किए थे। आज इस मीन्स अभी की बात है, 10 दिन पहले एक यहाँ पर हमारे यहाँ पर कराओ के आइडल था कॉम्पिटिशन।
0: ओके,
1: उसमें मेरे तीनों स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज मेरे स्टूडेंट्स को मिला है। इससे बड़ी उपलब्धि एक गुरु के लिए और कुछ नहीं हो सकती। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब
1: कि मैं संगीत से जुड़े होने के बाद ये सबसे बड़ी तोहफा मिला है मेरे स्टूडेंट्स से मुझे, कि तीनों विनर आइडल था कराओ के आइडल, उसमें मेरे स्टूडेंट्स ही विनर हुए।
0: बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात। मैं समझ सकता हूं साहब, किसी भी टीचर के लिए, किसी भी शिक्षक के लिए, अगर वो सचमुच जेन्युइन शिक्षक है, अगर वो सचमुच गुरु है, तो उसके स्टूडेंट्स अगर चमक जाएं, आगे बढ़ जाएं और दुनिया के सामने उनकी प्रतिभा साफ साफ दिखाई दे, तो गुरु के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होती। मुझे
1: बहुत बड़ी
0: उपलब्धि। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मुझे याद है एक फिल्म पीछे आई थी लक्की अली की, सुर नाम से।
1: यस यस सर,
0: जिसमें वो खुद सिंगर था और उस वो एक लड़की को स्टूडेंट बनाता है, उसको सिखाता है, और वो लड़की बहुत टैलेंटेड होती है और आगे बढ़ते हुए लकी अली उसका एक गाना चुरा लेता है और उसको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन इवेंचुअली वो ये रियलाइज करता है कि ये एक गुरु का काम नहीं है, मैं गलत कर रहा हूं। फिर लड़की को स्टेज के ऊपर लाता है और उसको गाने पर मजबूर कर देता है, खुद गायब हो जाता है और जंगलों में नाचता है, खुशी से नाचता है कि मेरी स्टूडेंट आज कमाल कर रही है।
1: बड़ी के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल सही कहा आपने साहब, बिल्कुल सही कहा। आपकी बात सुन के मुझे वो फिल्म याद आ गई। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी बात के बाद एक बहुत ही प्यारा सा गीत भी सुनते हैं प्रवीण जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए प्रवीण जी, और कुछ खेलते हैं, मजे करते हैं। फर्ज कीजिए कोई एलियन, कोई अंतरिक्ष से आया हुआ प्राणी आपके घर के बाहर हो, तो क्या आप उसे मिलना चाहेंगे और क्या पूछेंगे उससे आप?
1: क्या सवाल है समीर सर। जी अगर अंतरिक्ष से कोई आए
0: जी,
1: तो सच कहता हूं मैं मिलूंगा और उन एलियन से पूछूंगा कि क्या भाई तुम्हारे ग्रह पर भी हमारे, हम पृथ्वी पर जो इंसान है उनके जैसे मतलबी लोग होते हैं क्या?
0: ओके ओके ओके,
1: जरूर पूछूंगा मैं एलियन से और उसके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा कि सही में हम पृथ्वी पर जिस तरह से इंसान आज एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, अपना अपनों से लड़ रहे हैं, बेगानों की तो बात ही है, अपनों से भी लड़ते हैं, तो सच में इंसानों जैसे मतलब ही होंगे वहां पर।
0: ओहो क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात। जाहिर सी बात है मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जब वो एलियंस अंतरिक्ष से आए हुए प्राणी हमारे धरती पे आए हुए होंगे तो वो हमसे ज्यादा ही एडवांस्ड होंगे, हमसे ज्यादा ही प्रगतिशील होंगे, तो उनके पास कुछ शायद बेहतर जवाब होगा इस बात का, हम शायद कुछ सीख पाए उनसे।
1: जी
0: बहुत खूब, तो चलिए दोस्तों एक गीत भी सुनते हैं और अपने को साफ सुथरा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं।

0: बहुत ही प्यारी गायकी प्रवीण जी। आगे बढ़ते हुए बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम अपने प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ कहिए उनसे, कुछ बात कीजिए अपने दिल की।
1: जी, अभी जो हमसे जुड़े हुए श्रोता हैं, म्यूजिक लवर्स हैं
0: जी,
1: वो तो म्यूजिक लवर हैं इसके लिए आज हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे ये कहूंगा कि अपनों से प्यार करें, अपने जीवन से प्यार करें और संगीत से ऐसे प्यार करते रहिए, क्योंकि संगीत ये है जो एक दूसरे को जोड़ते हैं और अपनी जिंदगी को संवारते हैं। हम सुख में हो दुख में हो संगीत सुनिएगा और अपनी जिंदगी को बढ़ाइएगा। शुक्रिया सर।
0: बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारा संदेश प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका आभार, आपसे बातें की, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आपके दिल की बातें सुनी हमने, आपके गीत सुने, सीरियसली अमेजिंग, हम सबको बहुत लुत्फ आया। थैंक यू सो मच प्रवीण जी।
1: शुक्रिया, थैंक यू समीर सर एंड नितिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।
1: होले होले धीरे धीरे कोई गीत मुझको सुनाए, मन में दबाए।
0: आइए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड आप ही के सबसे प्यारे प्रोग्राम आज के कलाकार का मैं लेकर हाजिर हूं। मुझे पूरा पूरा विश्वास है दोस्तों, 2.5 साल गुजर चुका है, आज के कलाकार अब तक तो आपके दिलों में बहुत गहरा उतर चुका होगा। मुझे लगता है आप किसी भी हालत में 9 PM to 10 PM आप कहीं नहीं जाते होंगे। और इसी वजह से आज हमारे साथ जो प्रतिभा मौजूद हैं, जो टैलेंट मौजूद है, जो गायिका मौजूद है, वो सोने पे सुहागा है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी गायकी सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं ना, आपका आनंद कई गुना और बढ़ जाएगा। हमारे साथ है ईरानी गोस्वामी जी। ईरानी मैम, आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, आभार है, थैंक यू है। आइए हमारी आज की कलाकार जी, हमारे आज के कलाकार फैमिली से मिलिए और थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप?
2: मैं कलकत्ता से हूँ और अभी हम बैंगलोर में सेटल हो गए इधर ही। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम अ म्यूजिकल फैमिली। माय फादर वाज पेशे में तो इंजीनियर थे वो, बट ही हैड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ म्यूजिक एंड ही वाज अ सितारिस्ट, सितार बजाते थे वो एंड तबला भी। और मेरी मम्मी भी वोकलिस्ट है एंड हम लोग सब म्यूजिक से जुड़े हुए हैं एंटायर फैमिली। मेरे भाई थे, अभी अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं है दुनिया में, तो ही वाज आल्सो ब्रिलियंट सिंगर। एंड मेरी जो फूफी थी, शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उनका नाम श्रीमती इला बसु है। शी इज आल्सो फेमस सिंगर कलकत्ता के, वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे ही हम लोग म्यूजिकल परिवार से हैं और मैं बहुत छोटे से म्यूजिक सीख रही थी। और पहले तो थोड़ा बहुत तालीम ले लिया था मैंने अपना फूफी के पास, फिर मम्मी, एंड बाद में जाके आई हैड लॉट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम डिफरेंट गुरुज। आई हैड, मेरा पहला गुरु तो मेरी मम्मी है, फूफी एंड मम्मी। उसके बाद मैं तालीम ली थी श्री आभास बासु से, जो पंडित हरिहर शुक्ला के डिसाइपल थे। एंड उसके बाद आई टुक लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम श्री सलील चौधरी जी, फेमस कंपोजर श्री सलील चौधरी।
0: शी इज एन अर्डेंट फॉलोअर ऑफ म्यूजिक एंड शी लव्स टीचिंग। और बस हमारे साथ आज एक बहुत बड़ी गोस्वामी फैमिली जो कि म्यूजिकल फैमिली है वो जुड़ी है। हम सबको उनका आशीर्वाद चाहिए होगा, उनके गीत, उनके संगीत को हमें सुनने की इच्छा है। तो चलिए अब भी शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम को और ईरानी मैम के गाए हुए इस प्यारे से गीतों का आनंद उठाएं और फिर वापस आएं। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं जो मुझे गोस्वामी मैम से पूछने हैं। आइए पहले ये गीत सुनते हैं।

0: बहुत खूब गायकी। ईरानी मैम, नंबर वन, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं दिमाग में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये गोस्वामी का मतलब क्या होता है?
1: गोस्वामी, एक्चुअली आई एम मैरिड इनटू दिस गोस्वामी फैमिली। मेरा मेडन नेम एक्चुअली लाहिरी है, जो बप्पी लाहिरी है ना, वो लाहिरी। हाँ हाँ, तो आई माय फादर वाज श्री आर एन लाहिरी एंड आई गॉट मैरिड इनटू दिस फैमिली। मेरा हस्बैंड का नाम है कर्नल जयदीप गोस्वामी। तो अभी गोस्वामी का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास गोस्वामी जी थे, जो भक्त थे।
0: ठीक है जी।
1: हाँ, और तो मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं है। गोस्वामी लोग श्री कृष्ण भक्त होते हैं एंड भजन पूजन करते हैं, इतना ही पता है हमें।
0: ओके, दोस्त, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ईरानी मैम से ही बात करनी है, लेकिन दोस्तों, जितना मुझे पता है और जितना मैंने कुछ गोस्वामियों से बातचीत की है, उसका मतलब होता है गो स्वामी, यानी कि गायों के स्वामी।
1: हाँ,
0: तो ये जो गोस्वामीज हैं, ऑफ कोर्स श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी गायों के आसपास बड़े घूमते थे, उनको पालन करते थे, जो भी है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये भी पता चला कि ये जो गोस्वामीज हैं, ये बहुत कम हैं, और ये आपस में सब लोग जुड़े हुए हैं, वेरी वेल कनेक्टेड। देर आर एन नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली गोस्वामीज। मुझे ठीक से याद पड़ता है, कोलकाता में ही एक डॉक्टर है जिनके साथ मेरे अच्छे दोस्ताना है, उनका नाम है चंचल गोस्वामी। नाउ हाउ ब्यूटिफुल इज दैट, चंचल गोस्वामी, नॉटी गोस्वामी, हाउ? बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए दोस्तों, फिर अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ईरानी मैम से बात करने के लिए, और पहले हम ईरानी मैम के इन गीतों का आनंद उठाएं, उसका लुत्फ उठाएं, और फिर वापस आएं ईरानी मैम से बात करने के लिए।

0: और दोस्तों ये जो अगला गीत हम पेश कर रहे हैं ईरानी मैम ने उनको मलय सरकार साहब के साथ गाया है, जो कि एक बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही एक्सपर्ट सिंगर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मलय सरकार साहब को भी हम अपने आज के कलाकार में सुन पाएंगे। तब तक इस गीत को सुनते हैं।
1: नमस्कार।

0: बहुत खूब, अमेजिंगली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो ईरानी मैम, एक बिल्कुल हल्की फुल्की बात करते हैं आपको समझने के लिए। देखिए, आपके विचार हमने जाने, आपकी गीतों को हमने जाना, आपकी इंटरेस्ट को हमने जाना कि किस तरह से आपको पसंद है, आप कहाँ से आती हैं, क्या फैमिली है आपकी, एवरीथिंग ऑलमोस्ट। अब मुझे ये बताइए, बिल्कुल ही हल्की फुल्की बात, म्यूजिक के अलावा बताइएगा प्लीज। म्यूजिक तो आपका मेजर पोर्शन हो ही गया जिंदगी का। म्यूजिक के अलावा आपका फेवरेट फेवरेट मी टाइम, आजकल एक बड़ा टर्म चला है बहुत ही प्यारा, मी टाइम।
1: मी टाइम, यस यस, या
0: वो क्या है?
1: म्यूजिक के अलावा मेरा मी टाइम है, दो है बोल दे
0: बिल्कुल। तो
1: एक है पेंटिंग एंड एक है एम्ब्रॉयडरी। आई डू अ लॉट ऑफ एम्ब्रॉयडरी एंड पेंटिंग भी करती हूँ मैं बहुत।
0: That is so beautiful. That is amazing. दो बहुत ही जबरदस्त कलाएं, पेंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, क्या बात है, amazingly beautiful. तो ईरानी मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको इन्वाइट करूंगा, दो प्रोग्राम हम और बनाते हैं आपके साथ, एक पेंटिंग पर और एक एम्ब्रॉयडरी पर। बोलिए, आर यू रेडी? हमारे मेरी टीम में बहुत ही एक अच्छी आरजे हैं, उनका नाम है तनुषा, और दूसरी दूसरी आरजे है इंद्रानी जी, जो कि तिनसुकिया में है, आसाम में।
1: अच्छा।
0: I mean, I can request them कि वो आपसे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करें, बहुत मजा आएगा।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल,
0: ठीक है ना।
1: थैंक यू।
0: आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इन गीतों का आनंद लें एंड वापस आए इंद्रानी, सॉरी ईरानी मैम के पास।
1: या
0: सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया ईरानी मैम, मजेदार तो बातें हुई और बिल्कुल कोलकाता के श्याम बाजार के चित्रंजन रसगुल्ले जैसे मिठास हमें सुनाई दिया, बहुत खूब।
1: थैंक यू सो मच।
0: बस अब चलते चलते आज की जो फैमिली आपसे जुड़ी है उनसे थोड़ा बात कर लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको बताइए अपने दिल की बात, उन तक पहुंचाइए, कुछ संदेश दीजिए, मीठा वाला संदेश।
1: हाँ डेफिनेटली, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ दिस टीम। आई एम वेरी लकी टू बी हियर आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड आप लोगों को इतना ही सिर्फ बोलना है कि आप में जो फन है, आप लोग जो जो आप लोग में जो टैलेंट है उनको कभी मरने नहीं दीजिए। दिस इज व्हाट आई विल टेल यू, प्लीज उनमें आप जिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो समीर जी ने बोला मी टाइम, वो मी टाइम को जबरदस्त रखिए प्लीज। हाँ हाँ, उसको एकदम यू शुड नॉट यू नो लेट योर ड्रीम्स डाई। आप लोगों के ड्रीम्स उसी में है। कोई अगर आर्टिस्ट होगा, गाने का आर्टिस्ट होगा, गाना गा सकता है, तो प्लीज बी इन टू म्यूजिक। जो लोग पेंटिंग कर रहे हैं उनको आप प्लीज बी इन टू पेंटिंग एंड क्रिएट फैब्यूलस थिंग्स, क्रिएट योर बेस्ट। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर यू नो लिसनिंग टू मी। And thanks a lot to Nitin ji and Samit ji for this wonderful program that they are bringing up. It's really fabulous. I'm so lucky and I'm thankful to Nitin ji and Samit ji for giving me the chance to come here on this platform. And you know, mera awaaz sunne ko, mera mujhe khud hi sunne ko mila. So I'm really, really thankful and grateful to Samit ji and Nitin ji. And I wish them all the best, wish them fabulous good luck and may your dreams come true. Thanks a lot, both of your dreams come true. God bless you.
0: Thank you so much Irani ma'am, thank you so much. Aap se baat karke hume bhi bahut acha laga aur hum intezar karenge aapke do aur pyare pyare programon ki. Thank you so much.
1: Thank you Sumit ji, thank you Nitin ji, thank you.
0: तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कलाकार जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता, हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में।

0: रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज में आपका स्वागत है। आप हैं आपके दोस्त आरजे समीर के साथ भक्तिमय दिव्य दर्शन में। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुनते रहें रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम।
1: सन 1884 की बात है। कलकत्ता में उन दिनों चैतन्य लीला नाटक की धूम मची हुई थी। बड़ी संख्या में लोग वो नाटक देखने जा रहे थे और उसकी काफी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ भक्तजन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित इस नाटक को दिखाने के लिए नाट्य गृह में ले गए। विनोदिनी दासी नामक नगर वधु ने चैतन्य लीला में सजीव अभिनय किया। स्वामी रामकृष्ण उसके अभक्तिपूर्ण अभिनय को देखकर अभिभूत हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। नाटक की समाप्ति के बाद जब विनोदिनी ने दर्शक दीर्घा में स्वामी रामकृष्ण को बैठे देखा तो वो भागी भागी उनके पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके गदगद हो गई। स्वामी जी ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारा अभिनय बहुत प्रभावी है, जीवन उसी के अनुरूप ढालो तो कल्याण हो जाएगा। विनोदिनी दासी एक महान सिद्ध संत के आशीर्वाद स्पर्श से सुदबुद खो बैठी। उसका जीवन बदल गया। जीवन पर्यंत वो भक्ति और साधना में लगी रही।